0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है
1: रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रसभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम इसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए सजा और सख्त किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ अब कोई आरोपी अपने विवाहित होने या धार्मिक स्थिति को बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2026 के बीच पुलिस ने चाकू, तलवार या अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राष्ट्रसभा में कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में इन घटनाओं में 697 लोग घायल हुए और 40 लोगों की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पर हमला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसके सहयोगी हूती गुट ने सऊदी अरब की बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी। ये तनाव अमेरिका के नए हमलों, सेना को हो रहे नुकसान और मीडिएटर्स के जरिए लगातार जारी कूटनीतिक बातचीत के बीच बढ़ा है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान उत्तर पूर्व में बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा। रात के दौरान हल्के बादल घिरे रह सकते हैं। हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:44 पर सूर्योदय, शाम को 5:49 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
4: भोर की बेला, ताजगी भरी शुरुआत।
1: बुधवार 22 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6:04 होने को है। रेडियो मॉरिशस पर भोर की बेला इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। भोर की बेला इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आपका साथ हम देने वाले हैं दिन के 11 बजे तक। सुप्रभात आप सभी को, जहां कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ क्षणों में जो है हम बढ़ने वाले हैं कार्यक्रम सनातन धारा की ओर और फिर उसके बाद चंद खूबसूरत भावगीत आप सुन पाएंगे और रेडियो मॉरिशस पर। और 6:30 समय होगा पूरा समाचार का। कहते हैं कि रिश्तों में एक दूसरे को सम्मान देना बहुत आवश्यक होता है। रिश्तों में एक दूसरे को जब हम नीचा दिखाते हैं तो रिश्तों में ना ही विश्वास रहता है, ना ही रिश्ते में अपनापन रहता है। क्योंकि जब हम अपने रिश्तों में हमेशा शक करते रहते हैं तो प्रेम के लिए रिश्तों में कोई जगह नहीं बचती है। जब हम अपनों से बात नहीं करके औरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जब हम औरों से बात करते हैं और अपने ही लोग जो हमारे करीब हैं उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो जीवन में हम कितना भी आगे बढ़ ले, जीवन में हम हमेशा अकेले ही रहते हैं। क्योंकि आपके अपने ही हैं जो आपका साथ देंगे। बाहर वाले आज आप तरक्की कर रहे हैं तो बाहर वाले आपका साथ दे रहे हैं। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आपको आपके अपने ही काम आएंगे। बाहर वाला तभी आपका साथ देगा जब आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, जीवन में कुछ हासिल कर रहे हैं। और अगर आप अपने घर वालों को ही सम्मान नहीं देंगे तो फिर बाहर वालों को सम्मान देने का क्या मतलब है। कहते हैं ना कि सभी चीज़ों की शुरुआत हमारे खुद के जीवन से होती है, हमारे स्वयं के जीवन से होती है। तो चलिए सबको सम्मान दीजिए, क्योंकि यही है जो जीवन में हमें आगे ले जाता है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हर कोई करता है, उन बातों पर अमल करना, उन बातों को अपने ही जीवन में लागू करना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए इसी के साथ हम सनातन धारा इस कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में, जिसे हम सुनेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी से।
5: आइए सुनिए श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।

मलयाम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय, धार्मिक कार्यक्रमों का स्वरूप कैसा हो। दैनंदिन जीवन की भागदौड़, थकान और ऊब को मिटाने के लिए मनुष्य को मनोरंजन की भी आवश्यकता है। इस बात से सनातन संस्कृति भी इनकार नहीं करती, परंतु मनोरंजन का स्वरूप कैसा हो, इस विषय में यह आग्रह अवश्य करती है। मनोरंजन का शब्द का अर्थ मन को रंगना। बदरंग हो चुके दीवारों और मकानों पर रंग रोगन चराने का जिस तरह उन्हें पुनः नया सुंदर और टिकाऊ बना दिया जाता है, उसी तरह मनोरंजन भी ऐसा होना चाहिए जो तनाव, निरसता और जड़ता से भारी हो चुके मन को पुनः उद्गामी कर दे, उसे नवीन उल्लास, उत्साह और चेतन से भर दे। और यह उद्देश्य तो तभी पूर्ण हो सकता है जब मनोरंजन उस परम चेतना के महास्तोत्र में खोजा जाए। इसीलिए हमारी संस्कृति में पूर्व त्योहारों का प्रचुर मात्रा में समावेश है। वर्ष के प्रायः सभी महीनों में पर्व त्योहार आते ही हैं, और सभी पर्व त्योहार में ईश्वर उपासना का सामवेश निरपदवा रूप से होता ही है, क्योंकि परमात्मा को

भुलाकर जो भी किया जाता है वह हमारी संस्कृति में निरर्थ और निंदनीय ही समझा जाता है। पर्व त्योहारों में से कुछ तो व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर अपनी अपनी आस्था सामर्थ्य या परमात्मा के अनुसार मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, दीपावली आदि। कुछ अन्य धार्मिक उत्सव सामाजिक या सार्वजनिक स्तर पर मनाए जाते हैं, जैसे गणेश उत्सव, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, हनुमान जयंती, होली आदि। हमारे चर्चा का विषय यह सार्वजनिक स्तर पर होने वाली धार्मिक उत्सव ही है। अत्यंत खेद की बात है कि पिछले कई वर्षों से धार्मिक उत्सवों में धर्म पूर्ण उपेक्षित हो गया है और मनोरंजन प्रधान हो गया है, या यूं कहें कि अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को उभारने का, हुडंड मचाने का और मनमाना अभद्र आचरण करने का माध्य और अवसर बन गए हैं। धार्मिक उत्सव धर्म रूप परमात्मा के सगुण सकार रूप को जो देव या देवियां हैं उनके उत्सव ही धार्मिक उत्सव होते हैं। परंतु देव या देवी के रूप में प्रतिष्ठित धर्म रूप परमात्मा को ही जिसमें उपक्षित कर दिया जाए वह धार्मिक उत्सव कैसा? धार्मिक उत्सव की परंपरा हमारी संस्कृति में बनी ही इस उद्देश्य से है कि निरंतर व्यवहार में रहने से आई हुई मलिनता उत्सव के बहाने ईश्वरीय चिंता से जुड़कर भाव भक्ति से धूल जाए और व्यक्ति नवीन ऊर्जा से भरकर फिर कर्तव्य कर्म में लग जाए। अगर इस उद्देश्य का स्मरण रखकर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए तो उनसे समुचित लाभ आज भी उठा जा सकता है। इसके लिए कार्यक्रमों के वर्तमान स्वरूप में पूर्णतः परिवर्तन करना अपेक्षित है। हम सार्वजनिक कार्यक्रमों पर ही यह विचार इसलिए कर रहे हैं कि अवांछित और अशोभनीय बातें उन्हीं में होती है। उत्सव का आयोजन करने के लिए जो समिति बनाई जाती है उसमें समाज के वरिष्ठ भद्र और दृष्टवान सज्जनों का समावेश हो, जो युवा पीढ़ी को ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन और महत्व समझा सके। कार्यक्रमों में पुरुष, महिला, बुजुर्ग, बच्चे आदि सभी वर्गों का उत्साहपूर्वक सहभाग हो। यह नहीं कि कुछ गिने चुने युवा कुछ भी करते रहे और बाकी लोग उदासीनता पूर्वक घरों में बैठे रहे और बैठे बैठे उनकी आलोचना करते रहे। आयोजन के पूर्व सब युवा और बच्चे मिलकर कार्यक्रम स्थल की खूब अच्छी तरह साफ सफाई और सजावट करें। बड़े बुजुर्ग वहां उपस्थित रह करके उनका सहयोग और मार्गदर्शन करें। इससे सबका उत्साह बढ़ता है और वातावरण तैयार होता है। कार्यक्रम स्थल पर सुंदर प्रवेश द्वार बनाया जाए जिससे केले के स्तंभों, आम पल्लवों के तोरण आदि से सुशोभित किया जाए। जिस मंच पर उत्सव मूर्ति प्रतिष्ठित करनी है उसकी विशेष सुंदर सजावट की जाए।
युवतियों यह काम अधिक कुशलता पूर्वक कर

0: सकती है। कार्यक्रम स्थल का जल से संचयन करके यथास्थान सुंदर रंगोलियां डालियों का काम भी बच्चियां करें। ये सारी चीजें मंगलकारी प्रतीक है और वातावरण में सात्विकता निर्माण करती है। सारी सजावट खूब श्रद्धापूर्वक देव या देवियों की प्रसन्नता के लिए करें जिनका उत्सव मनाया जाता है। प्रथम दिन बाजे गाजे के साथ सब लोग मिलकर देव या देवियों की मूर्ति आदरपूर्वक लाकर प्रतिष्ठित करें। उस कार्यक्रम में भी सब लोग स्नान किए हुए और शुद्ध वस्त्र पहने हुए हों। संभव हो तो ब्राह्मण द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराएं, अथवा सब लोग आंखें मूंद कर हाथ जोड़ करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक देव से प्रार्थना करें कि हे अपने धाम से यहाँ पधारें और हमारे मूर्तियों में स्थान ग्रहण करें। इस क्रिया को आवाहन करना ऐसा कहते हैं। इसके बाद ही मूर्ति देव स्वरूप होती है, अन्यथा केवल मूर्ति ही रह जाती है। आवाहन के बाद मूर्ति का षोडश उपचार पूजन जल गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा आदि से करें। फिर सब मिलकर के शंख घंटा आदि से ध्वनि के साथ आरती करें। जितने दिन देव प्रतिष्ठा हो प्रतिदिन इसी प्रकार पूजन और दोनों समय आरती नैवेद्य होना चाहिए। समाज की सात्विक परिवारों को यह दायित्व सौंपा जा सकता है कि देव के नैवेद्य के लिए बारी बारी से पवित्रता पूर्वक भोजन बनाकर भोग लगाएं। प्रतिदिन देव की प्रसन्नता के लिए ताज़ा फूलों का हार मिष्ठान आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। नित्य पूजा के साथ ही स्तुति स्तोत्र अभिषेक यज्ञ आदि भी करना चाहिए। गणेश जी के लिए गणेश यज्ञ गणपति, अथर्वशीष्ट दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा सप्तसती नवचंडी यज्ञ आदि, हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा सुंदरकांड या रामायण का सामूहिक पाठ आदि आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से धर्म कार्यक्रमों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: L'habitude qui jamais pousse en zé, mon tea time avec Farmland.
4: Ah ben oui, madame Sheila, ou toujours bien smart.
3: Et comme au son du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Farmland.
4: Mmh, ou fais-moi faire.
3: Astère avec Farmland Hot Chocolate, la vie encore plus tamame. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
4: Astère avec Farmland, nous gagnons encore beaucoup plus.
3: Farmland, ça même nous. Smart choice.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
5: भोर की बेला, ताजगी भरी शुरुआत।
6: चलिए, कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है। थोड़ी देर पहले अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं। चलिए, अभी से लेकर 6:30 बजे तक चंद खूबसूरत गीत आपके लिए यहाँ पर हम चलाने वाले हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा समय भी आ जाता है, ऐसे हालात भी आ जाते हैं जब आप अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन अकेले होना अपने आप में कमज़ोरी नहीं है, आपकी ताकत होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो अपने जीवन में फैसले ऐसे होने चाहिए

कि हर एक फैसला हमें और भी मजबूत बनाए, हर संघर्षों का सामना करने की शक्ति हमें मिले, और अपने आप पर विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तब जाकर ईश्वर पर भी विश्वास कर पाते हैं।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: चलिए यहाँ पर आपको हम बिल्कुल अकेला नहीं पढ़ने देंगे, यहाँ पर खूबसूरत गानों के साथ, अच्छे अच्छे प्रोग्रामों के साथ हम आपका साथ यूं ही देते रहेंगे। भोर की बेला इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अगले गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं 6:30 बजे के पूरे समाचार की ओर। आशा करते हैं कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे से बीते, आज का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए और आपके जितने भी अरमा हैं, जितने भी सपने हैं, जितने भी इच्छाएं हैं सभी पूरे हो जाए। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में, तो ऐसे ही जुड़े रहिए रेडियो मॉरिशस के साथ। धन्यवाद, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिला इस वक्त ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रीय सभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम उसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। सार्वजनिक संस्थाओं और सरकारी कंपनियों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार उन पर बढ़ता कर्ज राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा है। कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल ने कल एमवी अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामले पर प्रेस को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम इसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए सजा और सख्त किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही अब कोई आरोपी अपने विवाहित होने या धार्मिक स्थिति को बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। सरकार सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी कंपनियों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जता रही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार उन पर बढ़ता कर्ज राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा है और वित्तीय अनुशासन बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। जून 2026 के आखिर तक 5 सरकारी संस्थाओं पर कुल 18.6 बिलियन रुपए का कर्ज था, जबकि 20 सरकारी कंपनियों पर कुल 48.9 बिलियन रुपए का कर्ज बताया जा रहा था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई सार्वजनिक विभाग पुनर्गठन योजनाएं तैयार कर रहे हैं। मंत्रालयों और सार्वजनिक एजेंसियों के अंतर्गत अपव्यय और अक्षमताओं की पहचान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता पर एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। सांसद रविंद्र जगन्नाथ के एक प्रश्न पर कल प्रधानमंत्री ने ये जानकारियां दी, उनको सुनते हैं।
3: The House will recall that the state of the economy document prepared by the Ministry of Finance.
4: प्रधानमंत्री डॉ. नरेंद्र मोदी ने कहा, सदन को स्मरण होगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दस्तावेज में कई अर्ध सरकारी निकायों तथा सरकारी कंपनियों की चिंताजनक वित्तीय स्थिति को उजागर किया गया था। इन संस्थाओं पर लगातार बढ़ता भारी ऋण तथा इनके कारण सरकार पर बढ़ती संभावित वित्तीय देनदारियां, खासकर उनके पेंशन फंडो में संचित उच्च बीमांकित घाटे के कारण देश के सार्वजनिक वित्त की स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया कि कई वर्षों तक अपर्याप्त वित्तीय निगरानी और ऋण पर बढ़ती निर्भरता ने सरकारी वित्त पर भारी दबाव डाला। इसलिए बजटीय अनुशासन बहाल करने, सुशासन को मजबूत करने तथा इन संस्थाओं की वित्तीय क्षमता और लचीलापन बढ़ाने के लिए निर्णायक सुधारों की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार जून 2026 के अंत तक 5 अर्ध सरकारी संस्थाओं पर कुल 18.6 बिलियन रुपए का ऋण था। इनमें से 15.4 बिलियन रुपए कमर्शियल बैंकों से तथा 3.2 बिलियन रुपए अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में अर्ध सरकारी संस्थाओं का ऋण दुगने से अधिक बढ़ गया। ये दिसंबर 2014 के अंत में 6.2 बिलियन रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 के अंत तक 15.9 बिलियन रुपए हो गया। केवल पैसे दिए जा रहे थे, कोई नियंत्रण नहीं था।

0: कोई वित्तीय दायित्व नहीं था। इस वृद्धि का मुख्य कारण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय आवश्यकताएं थी, जिसका ऋण 3.4 बिलियन रुपए से बढ़कर 10.3 बिलियन रुपए हो गया। इसी प्रकार एसटीसी का ऋण 1.1 बिलियन रुपए से बढ़कर 5.3 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। अर्ध सरकारी संस्थाओं और सरकारी कंपनियों के ऋण में हुई ये महत्वपूर्ण वृद्धि पूर्ववर्ती सरकार में पूर्ण वित्तीय अनुशासन की कमी और सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को नियंत्रित करने में उसकी प्रणालीगत विफलता के परिणामों को दर्शाती है। ऋण के इस संचय ने सार्वजनिक वित्त पर दबाव बढ़ाया है, प्राथमिकता वाले निवेशों के लिए उपलब्ध बजटीय गुंजाइश को कम किया है और राज्यों को वित्तीय जोखिमों, खास रूप से संभावित देनदारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। इस प्रकार प्रश्न के भाग एक के संबंध में वर्ष 2020 से सरकार को मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों को उनके ऋण भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कुल 14.4 बिलियन रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ी। यदि सुप्रकाश बैंक गोल्ड स्कीम के ग्राहकों को भुगतान करने के लिए लगाए गए धन को ध्यान में रखा जाए तो एमएसएम के शासन के दौरान कुल 11.5 बिलियन रुपए की सार्वजनिक धनराशि लगाई गई। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पुराने बीएआई समूह को समाप्त करने के जानबूझकर लिए गए कठोर निर्णय के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनके सुशासन मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बचाव योजना के लिए सार्वजनिक धन का एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर लिए गए उनके फैसलों का सार्वजनिक ऋण पर सीधा प्रभाव पड़ा, यही सच्चाई है।
1: One single rupee from public funds would be injected into any bailout activity. Blinded by the political vendetta, their action led to a direct hit on the public sector debt.
2: जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2024 के बीच पुलिस ने चाकू, तलवार या अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राज्यसभा में कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में इन घटनाओं में 697 लोग घायल हुए और 40 लोगों की मौत हुई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि कुछ खतरनाक हथियारों के बनाने, बेचने और व्यक्तिगत रूप से रखने पर देश में पहले से ही कानून के तहत रोक या नियम लागू हैं। उल्लंघन पर 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस जोखिम वाले इलाकों में नियमित रूप से खास ऑपरेशंस चलाती हैं। इस साल जनवरी से जून महीने के बीच खतरनाक हथियार रखने के 65 मामले दर्ज किए गए। राज्यसभा में कल पीएमक्यूटी सत्र के दौरान ही प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि भारत की तरफ से प्राप्त ग्रांट से 19 मिलियन रुपये रोड्रिग्स में मूल ढांचा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट परियोजना के लिए निर्धारित किए जा रहे हैं। ये रकम भारत की तरफ से 2022 में दी गई कुल 400 मिलियन रुपए के ग्रांट का हिस्सा है। इसमें शामिल परियोजनाएं और उनके पूरा होने की तारीख की सूची कल सभा में पेश की गई। अभी तक 18.4 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। भारत ये फंड रीइंबर्समेंट के आधार पर जारी करता है। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कल एमवी अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामले पर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने पिछले हफ्ते उतारे गए 547 मवेशियों की स्थिति पर जानकारियां दी, जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार शुरुआती वेटरिनरी जांच से पता चला है कि पर्याप्त चारा न मिलने के कारण समंदर में इंतजार के दौरान एक जानवर की मौत हो गई थी। शनिवार को खास ट्रकों के जरिए और सख्त सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जानवरों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। और एक और संवेदनशील पहलू खून के सैंपल के साथ जुड़ा है, जिसके प्रारंभिक नतीजों की पुष्टि अब दक्षिण अफ्रीका की एक रेफरेंस लैबोरेटरी से की जानी है। कृषि उद्योग मंत्री ने कहा कि इस स्तर पर किसी नतीजे त तक पहुंचना

0: मुश्किल हैं। उनके अनुसार इस मामले में बायोसुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात है। शैलिनी अबन, सुमेर अकबर अली।
1: Et si le gouvernement pas agir à juste respect du welfare des animaux,
2: अगर सरकार पशुओं की भलाई के पक्ष में कदम नहीं उठाती और दूसरे खतरों को कम करने का फैसला लेकर जानवरों को क्वारंटीन में नहीं भेजती तो पता नहीं क्या होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य के निदेशक के मुताबिक काफी वक्त से इन जानवरों को खाना नहीं मिला और पानी की भी समस्या थी। अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पशुओं में बीमारी का कोई संकेत नहीं है, लेकिन अभी दक्षिण अफ्रीकी प्रयोगशाला के ब्लड टेस्ट नतीजे से पुष्टि करनी बाकी है।
1: Les analyses de sang qu'ils pouvaient faire en Sud-Afrique, les là, tout capable, prolongent avec cette.
0: असल में जुलाई महीने की शुरुआत में एमवी अपेक्स जहाज को मॉरिशस के समुद्री इलाके में 300 किलोमीटर की दूरी पर रहने का आदेश दिया गया था। बाद में परिहार्य परिस्थितियों और जानवरों के कल्याण के आधार पर उसे मवेशियों को उतारने की विशेष अनुमति दी गई, इस शर्त पर कि आयातक सभी स्वच्छता संबंधी शर्तों का पालन करने की लिखित जिम्मेदारी ले। तेविन सेतानेन मामले की जांच अभी भी सस्पेंडेड है। कल क्यूबिप की अदालत में सेंट्रल सीआईडी के इंस्पेक्टर सी बालक ने एक बयान में बताया कि पुलिस अभी भी टेलीफोन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हासिल करने के लिए जज के आदेश का इंतजार कर रही है तथा कथित मेनलो पार्क मामले में तेविन सेतानेन पर आईसीटीए के तहत अस्थायी आरोप दर्ज है। पिछले साल जनवरी महीने में डीपीपी दफ्तर में दायर की गई मांग अभी भी लंबित है। जांच में हुए विकास का जायजा लेने के लिए मामले को अगले 5 नवंबर के लिए स्थगित किया गया है। ज्यादा आसान और तेज होने के कारण ऑनलाइन खरीदारी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनती जा रही है। हालांकि इसको लेकर कई जोखिम पाए जाते हैं। जनता की तरफ से प्राप्त कई शिकायतों, जरूरी सावधानियों और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट अब ऑनलाइन खरीदारी के नियमों पर फिर से गौर कर रही है। जनता से ऑनलाइन खरीदते हुए कुछ विशेष सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। नियमा की रिपोर्ट पर सुमेर अकबरेली का विवरण।
2: जब हम एक ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और अगर हमें कोई मसला है तो अगले दिन ही अधिकारी व्यापारी का पता लगा सकता है। ताजदार यानी व्यापारी के पास एक बिजनेस एड्रेस होना चाहिए ताकि जब अधिकारी या कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट के अफसर उनके व्यवसाय में जाना चाहें और समस्या के बारे में पता लगाना चाहें और जांच करना चाहें तो वो एक स्थल पर जा सकते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं तो आप अपनी बैंकिंग जानकारियां ना दें। ये भी आश्वासन होना चाहिए कि आपको कहां कौन सा सामान बेहतर दाम में मिल रहा है। लोग शिकायत करने के लिए हॉटलाइन 185 पर हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं या हमें ईमेल भेज सकते हैं। याद रहे, खरीदारी के सभी सबूत होना चाहिए।
0: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसके सहयोगी हूती गुट ने सऊदी अरब की बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी है। ये तनाव अमेरिका के नए हमलों, सेना को हो रहे नुकसान और मीडिएटर्स के जरिए लगातार जारी कूटनीतिक बातचीत के बीच बढ़ा है। चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान उत्तर पूर्व में बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी। अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा। सरल प्लेटों पर

न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, शहरी इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:44 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:49 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां, एक बार फिर राष्ट्रीय सभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और शाम तक उसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन पारित करता है। सरकार सार्वजनिक संस्थाओं और सरकारी कंपनियों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है। वित्त मंत्रालय के अनुसार उन पर बढ़ता कर्ज राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए खतरा है। कृषि उद्योग मंत्री ने कल एमवी अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामले पर प्रेस को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादिया हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड प्लान मानियो में, रॉयल रोड प्लान मानियो में 74 साल की 74 इयर्स ओल्ड श्रीमती शांति मोहन जो देवरानी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके भतीजे श्री प्रकाश मोहन के मकान रॉयल रोड प्लान मानियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडिया 3 PM। रॉयल रोड कॉन्डेमास पावे में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड श्री रोहित गुंजो जो और के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले टैक्सी चालक थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री दिग्विजय हीरो गुंजो के मकान रॉयल रोड कॉन्डेमास पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुवालों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडिया 3 PM। सिबालक लेन ग्लेन पार्क में 72 साल के 72 इयर्स ओल्ड श्री मोहन सोमरा जो देव तातो नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके बेटे ऋषि सोमरा के मकान सिबालक लेन ग्लेन पार्क वाकवा से उठाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड डिओ शेते आउज में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती राजवंती रामबन पैदाशी नाम जगर सिंह जो राजवान नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके पति श्री धनेश रामबन के मकान रॉयल रोड लियो शेत्याउज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाली देवपद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। एवेन्यू डोडो लेस्पेरांस पीतों में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धर्मनवती सुब्बरायन पिताशी नाम रामुदु जो लक्ष्मी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री सिगान सुब्बरायन के मकान एवेन्यू डोडो लेस्पेरांस पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कारो मोतें लेस्पेरांस पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। लतापी रोड बुजे वैद्य में लतापी रोड बुजे

जेमी 50 साल के 50 years old श्री संजीव रामजतन, श्री संजीव रामजतन जो बॉब नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान लतापी रोड बुजेविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। मोजॉग गली बाची मारे में 79 साल के 79 years old श्री गोइन सामी सामीनादेन, श्री गोइन सामी सामीनादेन जो मुगो नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री सामी सामीनादेन के मकान मोजॉग गली बाची मारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौज आपकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड सेंट जूलियन विलेज में, रॉयल रोड सेंट जूलियन विलेज में 75 साल की 75 years old बीबी अफरोज करीमन, बीबी अफरोज करीमन जो अफरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 10 बजे, इनका जनाजा सुबह 10 बजे इनके भाई जनाब डॉक्टर अब्दुल महबूब करीमन के मकान रॉयल रोड सेंट जूलियन विलेज से उठाकर पहली नमाज जनाजा के लिए सेंट जूलियन विलेज की नूर मदीना मस्जिद ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए बोबुआ लालमाटी का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुडे 10 AM। बयाश मोतालोंग में, बयाश मोतालोंग में 77 साल की 77 years old श्रीमती सीता रघुबर, श्रीमती सीता रघुबर जो इंदिरा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी बहन श्रीमती सोनी रघुबेर के मकान बयाश मोतालोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू दी 11 AM। सीमेटियर रोड मोचीदा में, सीमेटियर रोड मोचीदा में 73 साल के 73 years old श्री राम गुगोन, श्री राम गुगोन जो चंद्रसेन नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे श्री केविन गुगोन के मकान सीमेटियर रोड मोचीदा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिजिन कौंदेमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM। स्कूल लेन त्यारूज में 67 साल के 67 years old श्री कृष्णा मेनन मुथुसामी, श्री कृष्णा मेनन मुथुसामी जो गोविंद नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके मकान स्कूल लेन त्यारूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू दिया 10 AM। माता बदल रोड बोनाकय में 47 साल की 47 years old श्री सूरज लक्ष्मण जो दीपक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और बस चालक थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पिता श्री भन्नू लक्ष्मण के मकान माता बदल रोड बोनाकय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदे पपाई में, नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदे पपाई में 70 साल के 70 years old जनाब नासीम अकबर अली जो नासीम नाम से ज़रा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनकी बीवी मिसेस आशा अकबर अली के मकान नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदी पापाई से उठाकर दफनाने के लिए वहीं का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टू दिया 2 PM। नंबर 23 डॉक्टर प्यारो स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में, डॉक्टर प्यारो स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में 55 साल के 55 years old श्री धीरज रामधनी जो चीकी हुई नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे लाशा पहला दौत मुआपेची तरबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 1 PM। रेजिडेंस सत्यावती पाइडेगाडू गांधी रोड लेस्पिरांस कॉटे

0: Humilité Amie, résidence Satyavati, Padigadu, Gandhi Road, l'espérance quartier Humilité Amie, 50 Sal Ke, 50 years old, Sri Veera Murugan, Sri Veera Murugan, जो वीरा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 12:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे, इनकी पत्नी श्रीमती कामिनी रेशमा मुरुगन के मकान रेजिडेंस सत्यावती पादिगादू गांधी रोड डिस्पेंस कॉचे मिलते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लगेमा सैन पिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू दे एट हाफ पास नून। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: La Global Healing Foundation vous invite pour son prochain événement Hanuman Katha, The Ultimate Devotion. Une session de Kundalini Awakening and Healing à Rivière des Anguilles, à côté du collège Rivière des Anguilles SSS, en face de la gare. Les prières se tiendront du samedi 25 juillet au jeudi 30 juillet par le Guru Sri Suraj Bihari. Vu la grande foule qui est attendue pour cette unique célébration, vous êtes prié de vous rendre sur les lieux à 19h15 précise pour vous assurer d'une place.
1: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूरोपियन चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग मैच शुरू हो गए हैं। आज से ओमोनिया निकोजिया कारत अल्माती, लेव्स की सोफिया क्रालोवा और इग्नाशिया टीम खेलेगी एनके सेलिए के खिलाफ। कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफायर्स भी जारी हैं। दूसरी ओर कई क्लब फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्रेंडली मैच शुक्रवार को फ्राइडे को खेला जाएगा रोजनबर्ग के खिलाफ। लिवरपूल संडे सुबह खेलेगा संडरलैंड के खिलाफ, ये यूएसए में है। लिवरपूल का नया मैनेजर चाहता है कि मार्क अलिस्टर और अलिसन लिवरपूल के साथ रहे। एंटोनी इराओला इन दिनों प्री सीजन के लिए शिकागो में है। उसने कहा कि वो अपने बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ काम करना चाहता है। इराओला ने स्वीकार किया कि लिवरपूल को एक दो और साइनिंग करनी होगी, खासकर डिफेंस में। कोनाते चला गया, वैन डाइक का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल पूरा हो जाएगा। मार्कुस राशफोर्ड को साइन करने के लिए टोटनहम हॉटस्पर, चेल्सी और आर्सेनल लाइन में है, पर खबर है मैनचेस्टर यूनाइटेड उसे किसी प्रीमियर लीग राइवल के साथ नहीं बेचना चाहता। वैसे ट्रांसफर बाजार में कारोबार जोर पकड़ने लगा है। ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर फी 117 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी ने एस्टन विला से मॉर्गन रॉजर्स को साइन किया। यूएसए से वापस आकर रॉजर्स ने मेडिकल पूरा किया और 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आर्सेनल भी रॉजर्स के पीछे था और ट्रांसफर फी से पीछे हट गया। अब द गनर्स बॉकोला और क्रूपी के पीछे है। इधर इतना ही नहीं, चेल्सी बोर्नमुथ से एलेक्स स्कॉट को भी साइन करना चाहता है। 64 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का बिड रिजेक्ट कर दिया गया, नॉट फॉर सेल। स्कॉट के कॉन्ट्रैक्ट में केवल 2 साल बचे हैं, पर वो नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहता। शुरू में आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टोटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर सिटी भी एलेक्स स्कॉट को टारगेट कर रहे थे। इसी तरह बोर्नमुथ जूनियर कोपी को भी नहीं बेचना चाहता। और अंत में साइकिलिंग की बात कर लें। टूर दे फ्रांस में टाइम ट्रायल में इवनी पोएल की जीत हुई। लीडर पोगाचा अब इवनी पोएल से 4 मिनट 32 सेकंड आगे हैं। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ

0: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
4: बुधवार 22 जुलाई घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 7:07 होने को है। रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात स्वीकार करें। चलिए यहाँ पर इस म्यूजिकल प्रोग्राम के साथ हम आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए। अच्छे अच्छे गाने आपके डेडिकेशंस के जरिए अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में, चलिए जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि एक से भले दो, दो से भले तीन, तो ऐसे ही हमारा रेडियो मॉरिशस का ये परिवार अपने आप में इतना बड़ा है कि क्या कहें। यहाँ पर कोई भी कभी अकेला महसूस ही नहीं करता है और एक दूसरे का साथ देने के लिए तो हम हैं ही, और साथ में हैं अच्छे अच्छे गाने तराने। तो चलिए 2 घंटों का ये जो सफ़र है बहुत ही यादगार होने वाला है। चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं चिंतन से, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर जमन की प्रस्तुति में।
5: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
6: बाहरी सौंदर्य सुचतुर चित्रकार के चित्र में भी देखने को मिल सकता है, परंतु मन का सौंदर्य कवि की वाणी में ही मिलता है।

0: continuez causer, riez, pantaser, se dépiler, danser, amuser, rêver, vibrer. Zodi, nous encore plus confiants pour dîmer. Côte sac nouveau technologie qui nous peut amener pour faire sac mauricien vivre l'expérience encore plus mighty serré. Et c'est qu'ici, nous pour la même à ce côté. Zodi, dîmer, vive-li avec mighty.
1: चलिए यहाँ पर सवेरे सवेरे यहाँ पर जो है कहते हैं ना कि एक अच्छा विचार हमारे पूरे जीवन हमारे पूरे दिन की जो है दिशा को बदल देता है। सवेरे सवेरे किसी के साथ की हुई एक अच्छी बात पूरे दिन हमारे मन में रहती है और वही अच्छी बात हमारे मन को खुशी देती है। सवेरे सवेरे किसी से मुस्कुराने से मुस्कुरा कर मिलने से ये मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर पूरे दिन रहती है। वहीं अगर सवेरे सवेरे किसी से हमने गुस्से में बात कर लिया, किसी को कुछ भला बुरा कह दिया, तो उसका बुरा असर भी हम पर होता है। तो निर्भर हम पर करता है कि हम अपनी सवेरे की शुरुआत करते कैसे हैं, अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से, अच्छे बर्ताव से, या फिर नकारात्मकता में घिरे हुए रहकर हम सवेरे की शुरुआत करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि एक अच्छा मन, एक अच्छा विचार हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तो बस जहाँ तक हो सके इस नकारात्मकता से हम दूर रहते हैं और सकारात्मकता को अपने जीवन में जगह देते हैं। चलिए अभी के लिए 7:16 हो रहे हैं और अब आपको बताएंगे कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। अभी के लिए सुबह का नजराना चल रहा है। आपके डेडिकेशंस के लिए सवेरे से ही आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस हमें मिल ही रहे हैं 4028085 पर, साथ ही 5251700 पर। और फिर 8 बजे जो है आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 हम लेकर आएंगे आ खेल खेले हम, एक छोटा सा क्विज़ होता है जो हर बुधवार को होता है 8:50 पर किरण जानकी से। आप हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे। 9 बजे होगा समाचार, उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रत्ना। 10 बजे के समाचारों के बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी से। 11 बजे होगा समाचार, उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोसा। दोपहर के 12 बजे विश्मा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सौंदर्य लाहिरी। 12:30 प्रीति की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम। दोपहर के 1 बजे तमिल भाषा में प्रोग्राम प्रस्तुत करेगी पुवाना। 2:15 गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस कार्यक्रम में। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। दोपहर के 4 बजे शिरीष प्रस्तुत करेंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम विविधा। 5 बजे आप खेती बाड़ी नामक कार्यक्रम को सुन पाएंगे फारे द्वारा। 5:15 से रोशन और उषा आपका मनोरंजन करेंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। 6 बजे समय होगा पूरा समाचार का। 6:30 पर यानी कि 6:30 हाका भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे डेविड से। 7 बजे तमिल भाषा में प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे युवराज सेन। 7:30 तेलुगु भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे राजेंद्र की प्रस्तुति में। 7:50 पर मराठी भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे नितिन बापू से गीत गंगा। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे रोशनी से। 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। 9:00 प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम में। 11:00 गिनीशा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे सुनहरे पल इस प्रोग्राम को। और 12:00 से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत नगमे यहाँ चलते रहेंगे। तो चलिए ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की। गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना आप सबके नाम हम करते हैं।

चलिए यहाँ पर अगला जो गाना है लता जी और मुकेश जी की आवाज़ों में है, और हमें पता है कि हमारे सुनने वालों को मुकेश जी की आवाज़ सवेरे सवेरे सुनना बहुत पसंद है। तो चलिए आशिक फिल्म का ये तराना आप सभी के नाम हम करते हैं।

चलिए, कभी कभार कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारी तकदीर में नहीं होती हैं, हमारी किस्मत में नहीं होती हैं, लेकिन जो चीज़ें होती है कभी कभार उसी में संतुष्ट रहना हमें सीखना चाहिए। कभी कभार ज़्यादा की चाह में हम जो कुछ है उसे भी कहीं गंवा न दे, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कभी कभार हमें आसानी से मिल जाती है, कभी कभार छोटी छोटी चीज़ों को जो है पाने के लिए बहुत

संघर्ष करना पड़ता है, और जो भी चीज़ें संघर्ष करके हमें मिलता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो ज़िंदगी में जो है, ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आज हमारे पास जो है अगर उसमें हम खुश हैं तो आने वाले

वहाँ पर अच्छाई होती है, जहाँ अपनापन होता है, वहाँ पर प्यार होता है, सम्मान होता है एक दूसरे के प्रति। चलिए, अभी के लिए ढेर सारा प्यार आपका हमें मिल रहा है आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के ज़रिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

कहते हैं ज़िंदगी के इस सफ़र में जो पल, जो बातें, जो समय बीत जाता है वो लौट कर नहीं आते, तो इसलिए ज़िंदगी के हर एक पल को अच्छे से जीना चाहिए, ज़िंदगी के हर एक पल का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि आज जो है आने वाले कल में क्या हो किसे पता।

जो पल बीत जाते हैं वो नहीं आते, तो इसलिए इस पल को हम इतने आसानी से तो बीतने नहीं देंगे और इन पलों को हम समेट कर रखेंगे, यादगार बनाएंगे। चलिए अभी के लिए डेडिकेशंस का सिलसिला जो है शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए जो हमें हमेशा मिलता है। यहाँ पर उषा जी हाईलैंड से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाता है अश्मित अक्षिता कविश के नाम, सभी कुंज बिहारी परिवार और सभी मोहन सिंह परिवारों के नाम। अभी तो छुट्टियों का वक्त है तो बच्चे भी घर पर है, तो ऐसे अपना अच्छा समय बिता रहे होंगे सभी के साथ मिलकर। और यहाँ पर एक मैसेज आया है, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, यूँ तो मिल जाता है हर कोई मगर आप जैसे दोस्त नसीबों से मिलते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद माला जी इस सुंदर मैसेज के लिए। आपको भी शुभ दिन शुभ सवेरा हम कहेंगे। बिल्कुल सवेरे सवेरे आप लोग इतना टाइम निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4028085 पर, साथ ही 5251700005 पर आप लोगों का साथ हमें मिल रहा है। प्रणाम मेरी बहना फ्रॉम सूरज शर्मा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपको भी प्रणाम। थैंक यू हमारे शो को पसंद करने के लिए और हमारे साथ आप हमेशा जुड़े रहते हैं। गाना जाएगा सभी सजादा परिवार के नाम जो ट्रियोले से हमारा साथ दे रहे हैं। शुभ दिन आपको भी हम कहेंगे। और चलिए यहाँ पर जो है डेडिकेशंस के सिलसिले में कुछ और नाम भी हम जोड़ते हैं। आशा जानू जी कोतेज से साथ दे रही है, सभी बच्चों को सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी हॉलीडेज कह रही है कि हैव अ फैमिली के साथ वो अच्छा समय बिताए खुशियों के साथ, और ख़ासकर उनके नेफ्यू ऋषभ के लिए नानी कुमारी की ओर से, मौसी आशा की ओर से, भाई शुभम की ओर से, मामा आरती है, पापा राज है, सभी जानू परिवार जो उस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी ये खुशियाँ और भी बढ़ जाती है जब अपनों का साथ होता है, और छुट्टियों में तो घूमना फिरना लगा ही होगा, है ना। घूमने फिरने के साथ जैसे कि साथ मिलकर समय बिताना, ये अपने आप में बहुत

चले आपका दामन ही नहीं बल्कि आपके दामन के साथ साथ आपका पूरा जीवन भी खुशियों से भरा रहे। और चलिए आज जितने भी सुनने वाले अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य कोई अपना जन्मदिन मना रहा है और या तो अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। ये जो दिन है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और खुशियाँ इतनी हो कि जो कभी समाप्त ना हो। चलिए यहाँ पर आशना अपना जन्मदिन मना रही है। आशना, आपको जन्मदिन के खास शुभकामनाएं आई है आपकी फूफू सुनीता की ओर से। आपके मामा है बेबी, पापा है सुनील, साथ में आंतिश, आनिश, नकुल, ग्रांगुप से पूरे परिवार ने आपको जन्मदिन की बधाई भेजी है। और यहाँ पर संजना मुर्गावा अपना जन्मदिन मना रही हैं। संजना जी, आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर आपकी मौसी गीता की ओर से। बेस्ट विशेज आपके पति विनय की ओर से। विधि है, वंश है, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपकी सासू माँ सावित्री की ओर से। सभी मुर्गावा और सभी मोहर परिवारों की ओर से हार्दिक बधाई आपको संजना जी। और चलिए यहाँ पर नमस्ते जी MBC से नमस्ते। और इंदिरा लॉटन जी जो है मैसेज भेज रही है, गाना जाता है इनके लंदन में बसे सभी परिवारों के नाम, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ पर ये अगला मैसेज आया है, सुमी जी पत्तों से हो गई है ना, क्या लिखा है मैं मैसेज को समझ नहीं पा रही। चलिए बहुत जो भी मैसेज आपने भेजा है अनीता जी, आपके इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। करुणा जी आपके नाम, अमृता जी, कविता जी और सभी आपके दोस्तों के लिए जो इस समय बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं।

और शिवरानी जी ग्रामबुआ से हमारा साथ जुड़ी हुई है, कह रही है गानों का सिलेक्शन इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये अगला तराना भी खास कर आपके नाम शिवरानी जी और उन सभी के नाम जो आज कोई ना कोई कुछ कोई ना कोई खास अवसर या कोई ना कोई खास बात अपने जीवन में सेलिब्रेट कर रहे हैं।

जी हाँ, अपनों का प्यार क्या कहना, ये प्यार ही है जो हमारी ताकत बनता है, ये प्यार ही है जो हमें सहारा देता है, ये प्यार ही है जो हमारे

आत्मविश्वास को बढ़ाता है और ये प्यार ही है जो हमें एक साथ जोड़े रखता है। चलिए, अभी के लिए आपका ढेर सारा प्यार यहाँ बरस रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग तो मैसेज करके जो है कुछ पंक्तियाँ हमें लिखकर भेजते हैं, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे श्रोता भी है कि दो लाइनें हमें गाकर भी सुनाते हैं या कुछ लिखा हुआ हमें सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि इतना प्यार आप लोगों से मिलता है, इतना आप लोगों का विश्वास है हम पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये प्यार और विश्वास हमेशा यूँ ही बना रहे। अगला गाना शोभा जी आपके नाम हम करते हैं, आपके इस गाने को हम नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। आपकी ओर से गाना जाता है अनुषा और श्रविना के नाम, यही गाना आपके पति के लिए और साथ ही आपके सभी दोस्तों के नाम जिस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शुभ सवेरा लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी इस सुंदर मैसेज के लिए। शुभ दिन आपको भी हम कहेंगे, आज का दिन आपके लिए भी शुभ हो, मंगलमय हो। यहाँ पर अगला मैसेज आया है सुनीता जी की ओर से, जो दागोचिया से हमारा साथ दे रही है। आज का दिन सभी के लिए बहुत प्यार से बीते और खुशियाँ लाए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। गाना जाता है आपके मामा विद्वंती के नाम और ढेर सारा प्यार उनके नाम। चलिए, स्वस्ति जी भी कटरबोन से जुड़ी हुई है। स्वस्ति जी, आपके भी सुंदर पंक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ बांटा। तो चलिए, आप सभी को शुभ दिन हम कहेंगे। इस अगले खूबसूरत तराने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर। समाचारों के उस पार मुलाकात होगी हमारी सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घर ही मिला लजा फजर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। राष्ट्रसभा में काल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल परी बहस चलल आर सांझ ले एकरा पारित करल गल। विधेयक हाल ही में पारित होल डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करेला। एकर अंतर्गत महिला लोग के हत्या और वैवाहिक बलात्कार खातिर सजा आज सख्त करे के प्रावधान बाटे। एकर संगे ही अब कोनो आरोपी अपन विवाहित होए के या धार्मिक स्थिति के बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकी। सरकार सार्वजनिक संस्था और सरकारी कंपनी लोग के आर्थिक स्थिति के लेके चिंता जतावता। वित्त मंत्रालय के अनुसार लोग परी बढ़ल कर्ज राज्य के आर्थिक स्थिति के खातिर एगो बड़का खतरा है और वित्तीय अनुशासन बहाल करे खातिर तत्काल सुधार की आवश्यकता बाटे। जून 2026 के आखिर ले 5 गो सरकारी संस्था परी कुल 18.6 बिलियन आर, जबकि 20 गो सरकारी कंपनी लोग परी कुल 48.9 बिलियन रुपया के कर्ज रहल। इस स्थिति के ध्यान में रख के कई गो सार्वजनिक विभाग लोक पुनर्गठन योजना तैयार करत हों, जहाँ मंत्रालय और सार्वजनिक एजेंसी लोग के अंतर्गत अपव्यय यानी गलत खर्चा और अक्षमता के पहचान खातिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता परी संचालित समिति के गठन करल जाए। जनवरी 2021 से जुलाई 2026 के बीच पुलिस चाकू तलवार या अन्य धारदार हथियार से जुड़ल 731 अपराध की सूचना दर्ज कर ले रहल। राष्ट्रसभा में काल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ई जानकारी देलन। कमिश्नर ऑफ पुलिस देनी से उपलब्ध आंकड़ा के मुताबिक गल 5 वर्ष में इस सब घटना में 697 जना घायल हो लंजा और 40 जना की मौत होल बा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम बतैलन कि एक आदगो खतरनाक हथियार बेचे के रखे के आर बनावे के लेके देश में पहले से ही कानून के तहत रोक और नियम लागू बाटे। उल्लंघन पर 10 वर्ष तक के कैद की सजा हो सकेला। कोई भी बतैलन कि पुलिस जोखिम होला के इलाका पर नियमित रूप से खास ऑपरेशन चलावेला। इस जनवरी से जून 2 महीना के बीच खतरनाक हथियार रखे खातिर 65 गो मामला दर्ज करल गया है। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेलकाल एमवी अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से आनल गल जनावर लोग की संवेदनशील मामला परी प्रेस के संबोधित करलन। ओ गल हफ्ता उतारल गल 547 गो मवेशी के स्थिति परी जानकारी देलन जेकरा क्वारंटीन में रखल गल है। डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार शुरुआती वेटरिनरी जांच से ई पता चलल बा कि पर्याप्त चारा नहीं मिले खातिर आर समंदर में इंतजार के दौरान एगो जानवर के मौत हो गल। शनिवार के खास ट्रक के जरिए आर सख्त सैनिटरी प्रोटोकॉल की पालन करके इस सब जनावर लोग के क्वारंटीन केंद्र में भेजल गल है। आर एगो संवेदनशील पहलू है खून के सैंपल जेकर प्रारंभिक नतीजा के पुष्टि अब दक्षिण अफ्रीका के एगो रेफरेंस लैबोरेटरी देने से देवल जाए। कृषि उद्योग मंत्री बोलन कि इस स्तर पर ही कोनो नतीजा ले पहुंचे खातिर आसान नहीं बाटे। उनकर अनुसार ही मामला में वायु सुरक्षा सबले महत्वपूर्ण है। याद रखे के चाहिए कि जुलाई महीना के शुरू में एमवी अपेक्स जहाज के मॉरिशस के समुद्री इलाका में 300 किलोमीटर की दूरी पर ही रहे के आदेश देवल गल रहल। ओकर बाद परिहार्य परिस्थिति और जनावर लोग के कल्याण के आधार पर ही ओ सब मवेशी लोग के उतारे के जहाज के विशेष अनुमति देवल गल। इस शर्त पर ही कि आयातक सब स्वच्छता संबंधी शर्त के पालन करी और उ भी लिखित रूप से। और दूसर देश की खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर ले हन कि ईरान पर ही हमला अभी पूरा नहीं होल बा। तनाव तब आर बढ़ गल जब तेहरान गल्फ देश पर ही हमला कर लग और ओकर सहयोगी हुती गुट सऊदी अरब के बंदरगाह की घेराबंदी करे की धमकी देलक। तेरा हल भोजपुरी समाचार।

मनी की खबर सुना जा। रॉयल रोड कौन दिमास पावे में, रॉयल रोड कौन दिमास पावे में 86 बरिस के 86 ओं के श्री रोहित गांजो जो ओके नाम से जैसी जान जात रहलन और पहली टैक्सी चालक रहलन गुजर गए हवन उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर बेटा श्री दीप विजय हीरो गांजो के घरे रॉयल रोड कौन दिमास पावे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोवालों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड प्लान मानियों में 74 बरिस के श्वासन कातोजों के श्रीमती शांति मोहन जे देवरानी नाम से जैसी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर भतीजा श्री प्रकाश मोहन के घरे रॉयल रोड प्लान मानियों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हूँ एक श्मशान भूमि ले जाल जाए। शिवालक लेन ग्लैन पार्क में 72 बरिस के 72 के श्री मोहन सोमरा जे देव तातो नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा ऋषि सोमरा के घरे शिवालक लेन ग्लैन पार्क वाकवा से उठावल जाए। रॉयल रोड लियोशे तेरूज में 73 बरिस के 73 के श्रीमती राजवंती रामबन पिताशी नाम जगर सिंह जे राजवन नाम से जैसी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर पति श्री धनेश रामबन के घरे रॉयल रोड लियोशे त्यागूर से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भोले वालिदेपद के श्मशान भूमि ले जाल जाए। एवेन्यू दोदो लेस्पेरेंस पीतों में 80 बरिस के 80 के श्रीमती धर्मनवती सुबरायन पैदाशी नाम रामुदु जी लक्ष्मी नाम से जस्ते जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर बेटा श्री सेगन सुबरायन के घरे आवेन्यू दो लेस्पेरेंस पीतों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कारो मौत है लेस्पेरेंस पीतों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। लतापी रोड बुजे व्याजे में 50 बरिस के सैकड़ों के श्री संजीव राम जतन जे बोब नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के बारह बजे उनकर घरे लतापी रोड बुजे व्याजे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लतापी के श्मशान भूमि ले जाल जाए। मोजो गली बाचीमारे में 79 बरिस के 79 के श्री गोइन स्वामी स्वामीनादेन जे मुगो नाम से जसी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर बेटा श्री स्वामी स्वामीनादेन के घरे मोजो गली बाचीमारे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौन छाप के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड सेंट जुलियन विलेज में 75 बरिस के 75 के बीबी अफरोज करीमन जफरोज नाम से जस्ती जान जात रलन कर इंतकाल हो गल बा उनकर जनाजा आज फजर के 10 बजे उनकर भाई डॉक्टर अब्दुल महबूब करीमन के घरे रॉयल रोड सेंट जुलियन विलेज से उठा के पहले नमाज जनाजा खातिर नूर मदीना मस्जिद ले जाल जाए फिर दफनाए खातिर सेंट जुलियन विलेज बोबालाल माटी के कब्रस्तान। बायाश लॉन्ग माउंटेन में 77 बरिस के 77 के श्रीमती सीता रघुबीर जेंदिरा नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर भाभी श्रीमती सोनी रघुबीर के घरे बायाश मोतालोंग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बामौसों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। सिमेचिया रोड मोतीदा में 73 बरिस के 73 के श्री राम गुगो जे चंद्र

0: नाम से जैसे जाल जात्रा लन गुजर गल हवन उन करमाती आज दिन के एक बजे उन करमाती आज दिन के एक बजे उनकर बेटा श्री केविन गोगों के घरे सिमेचियर रोड मोची दासी उठा के अंतिम संस्कार खातिर में जिनका दिमाग के शमशान भूमि ले जाल जाए स्कूल लेन त्याज में सर सर पर इसकी श्वसन सतों के श्री कृष्ण मेनन मुतुस्वामी श्री कृष्ण मेनन मुतुस्वामी जे गोविंद नाम से जैसे जाल जाथरलन वो गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर घरे स्कूल लेन त्याज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लिसालिन के शमशान भूमि ले जाल जाए माता बदल रोड बुनाकर में 47 बरिस के कौन से तौके श्री सूरज लक्ष्मण जे दीपक नाम से जस्ते जान जात रहलन आर बस चालक रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर पिता श्री बन्नू लक्ष्मण के घरे माता बदल रोड बुनाकर से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए कि श्मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदे पपाई में 70 बरिस के श्वसन जीजों के जनाब नासिम अकबर अली जे नासिम नाम से जस्ती जाल जात रहलन उनकर इंतकाल हो गल बा उनकर जनाजा आज दिन के 2 बजे उनकर जनाजा आज दिन के 2 बजे उनकर बीवी मिसेस आशा अकबर अली के घरे नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदी पापा से उठा के दफना खातिर हुए के कब्रस्तान ले जाल जाए। नंबर 23 डॉक्टर प्याओ स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में 55 बरिस के सकन सकों के श्री धीरज रामधनी जे चीकीवी नाम से जस्ती जान जा थरलन वो गुजर गल हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे उनकर माती आज दिन के 1 बजे लाशा पहला दौत मुगा पिछित हुए से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौन हुए के शमशान भूमि ले जाल जाए। रजी दौ सत्यवती पायदे गादू गांधी रोड ले स्वयं कौचे मिलितिया में 50 बरिस के सैकौतों के श्री वीरा मुरुगन जे वीरा नाम से जैसे जाड़ जा थरलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती कामिनी रेशमा मुरुगन के घरे गजीदों सत्यवती पादिगादू गांधी रोड लिस्वियांस कौचे मिली तैसे उठा के अंतिम संस्कार खातिर लागे मौसम किया के शमशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबड़ी सब परिवार लोग के संगे हमने की संवेदना
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC Radio presents One Day RJ.
0: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए यहाँ पर सुबह का नजराना के सेकंड आवर में दूसरे घंटे में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार एक बार फिर स्वीकार करें। और आ खेल खेले हम इस जिंगल से आपको पता ही चल गया होगा, अब बारी है थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाने की यानी कि जो सवाल हम पूछने वाले हैं थोड़ा सा सोचने की कि जवाब क्या होगा। और अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो हमारी बातों में ही आज के सवाल का जवाब भी है तो थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए और आज बताइए कि आज 22 जुलाई को हर वर्ष एक बहुत ही विशेष दिन मनाया जाता है। 22 जुलाई को हर वर्ष एक बहुत ही विशेष दिन मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य है खासकर हमारी सेहत से जुड़ा हुआ। आजकल मेंटल हेल्थ की हर कोई बात करता है, आजकल मेंटल वेलबींग की हर कोई बात करता है और ये जो दिन है इसे मनाने को शुरू किया, मतलब कि इसे मनाने की पहल की गई थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा। ये हमारे आज का जो दिन है वो हमारे शरीर के एक ऐसे अंग को लेकर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सोचने में, समझने में, याद रखने में और फैसला करने में हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो बताइए आज 22 जुलाई को कौन सा ऐसा दिन मनाया जा रहा है जो हमारी सोचने और समझने की क्षमता को जो है इन्फ्लुएंस करता है। अभी तक एक भी फोन कॉल नहीं आया, लग रहा है कि आप रिसर्च कर रहे हैं चलिए यहाँ पर फोन कॉल की बात की और फोन यहाँ पर बजना शुरू हो गया है, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार
0: जी, नमस्ते, कौन बोल रही है?
1: मैं उमा हूँ, रुसबेल से।
0: जितनी खुशी से आपने उमा जी नमस्कार कहा ऐसा लग रहा है कि जवाब आपके पास है।
1: प्रोग्राम को वेट करती है
0: कैसी है उमा जी, ठीक है आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी है?
0: बिल्कुल ठीक है, बताइए क्या है जवाब?
1: वर्ल्ड ब्रेन डे।
0: चलिए आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है, लग रहा है कि आपने बहुत कसरत की है इस बार, दिमागी कसरत की है।
1: दिमागी वगैरह वगैरह तो ये लिंक है ना।
0: हाँ वही तो।
1: बहुत धन्यवाद, शुभ दिन।
0: बहुत धन्यवाद उमा जी, आपको भी शुभ दिन। चलिए
1: बाय बाय
0: बाय। और ऐसा होता है ना कि कहते हैं ना कि एक दिन में कोई ना कोई एक पजल या कोई ना कोई पहेली, कुछ ना कुछ सुलझाना चाहिए, इससे दिमाग की कसरत होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि दिमाग की जब हम बात करते हैं ना तो बहुत सारी बेकार के ख्याल हमारे दिमाग में होते हैं, कुछ चीज़ नहीं भी हो रहा होता है हम उसके बारे में भी सोचकर परेशान होते हैं, तो बिना वजह परेशान क्यों होना है ना। अगर हम खुश रहने की वजह को ढूंढे तो शायद ज़्यादा अच्छा हो कि परेशान रहे ना, तो खुशी रहे, परेशानी को दूर करे। और चले अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार।
2: नमस्ते सुमित जी।
0: जी स्वस्ति जी, कैसी हैं आप?
2: मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे?
0: बिल्कुल ठीक है जी। और क्या है जवाब स्वस्ति जी आपके पास?
2: वर्ल्ड ब्रेन डे।
0: ओके, कुछ कहना चाहेंगे इस दिन के बारे में?
2: क्या कहेंगे, दिमाग को ठंड रखना चाहिए।

0: चाहिए और उसमें अच्छे अच्छे बातें लाना चाहिए
1: तो
0: और
1: चलिए
0: खुश रहना चाहिए।
1: धन्यवाद स्वस्ति जी, आप भी खुश रहिए और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए।
0: बाय,
1: शुभ दिन। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। आज सेहत को लेकर, हमारे शरीर के एक विशेष अंग को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मनाया जा रहा है, तो जवाब दीजिए क्या है। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्ते
1: जी, आपका स्वागत है। कौन बोल रही है?
2: मैं दीपा बोल रही हूँ कौतूहल से।
1: कैसी है दीपा जी?
2: मैं ठीक हूँ।
1: ओके, और क्या है जवाब दीपा जी?
2: वर्ल्ड ब्रेन डे।
1: ओके, चलिए आपके जवाब को भी हमने नोट कर लिया है और धन्यवाद साथ देने के लिए दीपा जी।
2: थैंक यू, बाय
1: बाय, शुभ दिन। चलिए, यहाँ पर काफ़ी जवाब हमें मैसेज के ज़रिए भी मिल रहे हैं। मीला रामस्वामी हैं, आपको सुन रहे हैं, साथ में है शीला बिमाना जी। ओके, थैंक यू मीला जी हमें सुनने के लिए। यहाँ पर जवाब आया है, यहाँ ये मैसेज हमें अभी क्यों मिल रहे हैं? कुछ तो शायद हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू होगा शायद, क्योंकि 8 बजे के पहले के मैसेज हमें अभी मिल रहे हैं, तो बहुत अफसोस की बात है, इन मैसेज को हम डेडिकेशंस में शामिल नहीं कर पाए। यहाँ पर एक मैसेज आया है मेंटल दिवस, चले आपके जवाब को भी हमने नोट कर लिया है। दीपा है कॉन्टरेल से, आंसर है वर्ल्ड ब्रेन डे। थैंक यू सो मच दीपा जी। और अनीता जी, आपका भी जवाब हमें मिला है वर्ल्ड ब्रेन डे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर माला जी, आपने 8 बजे के पहले हमें मैसेज भेजा था, लेकिन वो मैसेज हमें अभी मिला है, तो चले बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी तो गेम चल रहा है, तो हम डेडिकेशंस को तो शामिल नहीं कर पाएंगे। कटरबोन से सरिता जी हमारा साथ दे रही है, लिखा है कि मेरा जवाब है वर्ल्ड ब्रेन डे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चले एक और कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो, नमस्ते।
3: हेलो, नमस्ते
1: जी, कौन है?
3: हम तारा हैं।
1: कैसी है तारा जी? कैसी है तारा जी?
3: हम ठीक हैं, आप ठीक हैं?
1: जी हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए क्या है जवाब तारा जी?
3: आज के दिन मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन डे।
1: ओके, बहुत धन्यवाद तारा जी। चलिए शुभ दिन आपको हम कहेंगे।
3: शुभ दिन।
1: ओके, एक और कॉलर है। हेलो, नमस्कार।
4: हेलो
1: जी, नमस्ते, कौन है जी?
4: नमस्ते जी, मैं हूँ बसंती।
1: कैसी है बसंती जी?
4: मैं ठीक हूँ।
1: ओके, बिल्कुल ठीक है जी। और क्या है जवाब बसंती जी?
4: जी वर्ल्ड ब्रेन डे।
1: ओके
4: जी, अपना दिमाग को स्वस्थ रखना चाहिए, ठंडक रखना चाहिए।
1: okay.
4: अच्छी दिमाग, अच्छी खान पान से हम okay. स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी ठीक रहेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए, और इतने अच्छे से आपने इसको समझाया, इसके लिए भी धन्यवाद
4: जी।
1: नमस्ते, शुभ दिन आपको। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो, नमस्कार।
5: हेलो, नमस्ते सुमिति, मैं कत्ते साथ जाने बोल रही हूं।
1: कैसी है आशा जी?
5: मैं अच्छी हूं, आप कैसी है?
1: बिल्कुल ठीक है। और क्या है जवाब आशा जी?
5: तो दिमागी कसरत करते हुए मैं भी बोल रही हूं वर्ल्ड ब्रेन डे।
1: ओके, और कुछ जोड़ना चाहेंगे इस दिन के बारे में?
5: जी मैं यही बोलूंगी सुमिति, ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये अच्छा भी सोचता है, यही बुरा भी सोचता है
1: जी,
5: तो और यही सारा काम करता है, तो ज्यादा थक जाए तो दिमाग को थोड़ा आराम देने की भी जरूरत है।
1: बहुत सही कहा आपने जी,
5: अगली बार जब काम करे तो एक फुर्ती के साथ अच्छे तरह से काम करें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपके जवाब के लिए, शुभ दिन आपको भी हम कहेंगे। और एक और यहाँ पर मैसेज के जरिए जवाब आया है इंदिरा जी की ओर से, वर्ल्ड विश्व नहीं, आपका मैसेज हम समझ नहीं पा रहे हैं इंदिरा जी, पर कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, इसके लिए धन्यवाद। तो बिल्कुल, आज 22 जुलाई है और आज वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जा रहा है, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 22 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है 2014 से हुई थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा। और दिमाग की बात करें तो दिमाग को स्वस्थ रखना अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार हम बिना वजह की चिंता परेशानी में इस तरह से अपने आप को घेर लेते हैं कि मानसिक रूप से हम बीमार पड़ने लगते हैं, और जब मानसिक रूप से हम बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे दिनचर्या पर पड़ता है। तो अपने मन को शांत रखना, अपने आप को थोड़ा आराम देना और अच्छी बातें सोचना, कुछ ऐसे एक्सरसाइज करना जो आपके मस्तिष्क को हेल्दी रखने में आप

के लिए कारगर साबित हो। अच्छी नींद लेना, कहते हैं ना कि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये दिमाग को आराम देती है और साथ ही ऊर्जा प्रदान करती है। एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी होता है।

0: थक गए हैं या तबीयत ठीक नहीं है या मन नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम एक जगह पर बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो इससे जो है हमारा मस्तिष्क भी अपने आप में फिर काम नहीं करता है। तो थोड़ा सा चलते फिरते रहना चाहिए और ऐसी चीज़ों को करना, ऐसी चीज़ों को बोलना जो हमें खुशी दे, क्योंकि हम भीतर से खुश होते हैं तो ये खुशी हमारे चेहरे पर झलकती है, ये खुशी हमारे हर एक कार्य में झलकती है। और जो व्यक्ति खुश रहता है वो अपने आप में मतलब कि बीमारियाँ उसे छू ही नहीं पाती है। तो चलिए, इस क्विज़ में आप लोगों ने इतने प्यार से भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहे और इस गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।
1: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

0: जिसे कीमती होते हैं हमारे रिश्ते नाते, हमारे दोस्त, हमारे सखी, हमारी सहेलियाँ, और ये है तो ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ही नहीं महसूस होती है, क्योंकि ये ज़िंदगी की हर कमी को पूरा कर देते हैं।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: जी हाँ, कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज़ की कीमत होती है, लेकिन सब चीज़ की कीमत पैसे से नहीं लगाई जाती। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे पैसे कभी नहीं खरीद सकते। तो चलिए, अभी के लिए 8:50 ऑलरेडी यहाँ पर, और अब बारी है हमारी धरोहर इस प्रोग्राम की। आइए इसे हम सुनते हैं किरण जानकी जी से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। हर 18 जुलाई के नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना

आवल जाला। और ई दिन पर ई जन महापुरुष हवन उनकर द्वारा छोड़ल गल धरोहर पर ध्यान देवल जाला। नेल्सन मंडेला उ हस्ती हवन जे 20वीं सदी के नक्शा बदल देलन और 21वीं सदी के नक्शा तैयार करलन। नेल्सन मंडेला की सबसे बड़ा खूबी है उनकर दृढ़ संकल्प, न्याय, मानवाधिकार और आज़ादी खातिर उनकर दृढ़ संकल्प, हर औरत और पुरुष के समानता और मान सम्मान पर उनकर पूरा विश्वास रहा, हर बाधा के बातचीत और भाईचारा से पार करे पर वो विश्वास करत रहलन। नेल्सन मंडेला एगो महान राजनीतिज्ञ समानता के वकालत करे होला और दक्षिण अफ्रीका में शांति कायम करे के जनक ओकर पिता मानल जालन। नेल्सन मंडेला जिनकर जन्म 18 जुलाई 1918 के होल रहल और देहांत 5 दिसंबर 2013 के वो दक्षिण अफ्रीका के अपाफेट के खिलाफ विद्रोह कर ले रहलन। अपाफेट के मतलब है गोरा और काला लोग के बीच फर्क, दीवार, दोनों के अलग अलग एगो सीमा रहल। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहला काला राष्ट्रपति बनलन। 1994 से 1999 तक वो राष्ट्रपति के रूप में देश के सेवा करलन। उनकर सरकार के पूरा ध्यान अपाफेट के समाप्त करे पर रहल और जातिवाद के खत्म करे पर। उस समय दक्षिण अफ्रीका से जातिवाद यानी रेसिज्म चरम सीमा पर चला रहल और ओके हटावे के जरूरत रहल। काला लोग संगे गोरा लोग बहुत बुरा सुलूक करत रहलन सा, हर रूप में रेसिज्म मौजूद रहल। नेल्सन मंडेला एगो अफ्रीकी राष्ट्रीयवादी रहलन, ठीक वैसे जैसे महात्मा गांधी भारत में रहलन। 1991 से 1997 तक नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में रलन। नेल्सन मंडेला के कैद में रहला एगो ऐसन बात रहल जो जनता के तनको ने पसंद रहल और ई वजह से कहीं गृह युद्ध नहीं छिड़ जाए तो उनकरा इधर से उधर ट्रांसफर करल जात रहल। कबो कबो उनकरा विक्टर वेस्टर कैदखाना में भी भेजल जात रहल। राष्ट्रपति फ्रेडरिक डी क्लर्क 1990 में उनकरा आज़ाद करलन। फिर मंडेला और डी क्लर्क संगे सुलह करलन जा कि अपाफेट के अब समाप्त करल जाए और 1994 में परिणाम स्वरूप अंतरजातीय चुनाव होल और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनलन। एगो बड़ा गठबंधन सरकार कायम होल और नवा संविधान बनल। मंडेला यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर रलन और 1991 में वो पीस प्राइज के लॉरिएट से सम्मानित होलन। यूनेस्को के मिशन से उनकर विचार और संघर्ष एकदम मेल खात रहल। लंबा समय तक शांति और न्याय की स्थापना, बातचीत के बढ़ावा और सब कोई के इज्जत, सब कोई के बराबर देखे के उनकर विचारधारा रहल। आगे चल के रॉबिन आइलैंड जैसे तोहरा बोली एगो विश्व विरासत स्थल बन गए जहाँ पर मंडेला के कैद करके रखा गया रहा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

तो चलिए किरण जानकी जी को धन्यवाद हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए, और साथ ही धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं का भी जो सवेरे से हमारे साथ जुड़े रहे। और जाते जाते इस अंतिम भोजपुरी गीत के साथ हम आपसे विदा लेंगे। बस ऐसे ही साथ देते रहिए, रेडियो मॉरिशस सुनते रहिए। 9 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। ये जो प्रोग्राम है इसका सीधा प्रसारण होगा रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसे आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर और MBC प्ले ऐप पर भी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलेंगे 10 बजे। तब तक के लिए हमारी ओर से नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं अदिति, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते अदिति।

0: नमस्ते रत्ना, श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रीय सभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम इसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए सजा और सख्त किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ अब कोई आरोपी अपने विवाहित या धार्मिक स्थिति को बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। जनवरी 2021 से जुलाई 2026 के बीच पुलिस ने चाकू, तलवार या अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राष्ट्रीय सभा में कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान ये जानकारियां प्रधानमंत्री द्वारा दी गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में इन घटनाओं में 677 लोग घायल हुए और 40 लोगों की मौत हुई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि कुछ खतरनाक हथियारों से के बनाने, बेचने और व्यक्तिगत रूप से रखने पर देश में पहले से ही कानून के तहत रोक या नियम लागू हैं। उल्लंघन पर 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस जोखिम वाले इलाकों में नियमित रूप से खास ऑपरेशंस चलाती हैं। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कल MV अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामले पर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने पिछले हफ्ते उतारे गए 547 मवेशियों की स्थिति पर जानकारियां दी, जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार शुरुआती वेटरिनरी जांच से पता चला है कि पर्याप्त चारा न मिलने और समंदर में इंतज़ार के दौरान एक जानवर की मौत हो गई है। शनिवार को खास ट्रकों के जरिए और सख्त सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जानवरों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। एक और संवेदनशील पहलू खून का सैंपल है, जिसके प्रारंभिक नतीजों की पुष्टि अब दक्षिण अफ्रीका की एक रेफरेंस लैबोरेटरी से की जानी है। कृषि उद्योग मंत्री ने कहा कि इस स्तर पर किसी नतीजे तक पहुंचना आसान नहीं है। उनके अनुसार इस मामले में बायोसिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसके सहयोगी हूती गुट ने सऊदी अरब के बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: 22 जुलाई बुधवार का दिन, आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। बुधवार के दिन हम लेकर आते हैं एक स्वास्थ्य की ऐसी समस्या जो आए दिन हम में से कईयों को ये भुगतना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, 28 जुलाई को मनाया जाएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसी पर आधारित आज का ये कार्यक्रम। और आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर त्रिलोक गुलाब जी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गुलाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार आप सभी लोगों को।
1: और आज का ये कार्यक्रम हम बता दें, रेडियो मॉरिशस पर इसका सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे, साथ ही साथ NBC के तीसरे चैनल पर इस कार्यक्रम को आप देख पाएंगे लाइव। इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर को 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। आपको ये भी बताते चले, तकनीक पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे कादिया जी, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट रहेगी उरुसा और हमारे प्रोड्यूसर रहेंगी रत्नमाला मंगरू जी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आधारित इस कार्यक्रम के साथ। और डॉक्टर जी, हम पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो 28 जुलाई को मनाया जाएगा, तो ये क्यों मनाया जाता है और इसका विशेष महत्व क्या है?
2: जैसे सब लोग जानते हैं, हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस

0: बेइज्जती मनाया जाता है जी। तो उस दिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था बारूच ब्लूमबर्ग, उसका जन्मदिन हुआ था। ये वही आदमी है जिसने हेपेटाइटिस को डिस्कवर किया था और उसके वैक्सीन के क्रिएशन में बहुत योगदान था उसका। तो उस दिन के उसके जन्मदिन मनाने के अवसर पर तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिन मनाया जाता है।
1: तो हाँ जी,
0: इस दिन का उद्देश्य है लोगों में हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच करवाना, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना और हेपेटाइटिस से होने वाली मौत को कम करना। मॉरिशस में अभी एक कैंपेन चल रहा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सहयोग से हो रहा है। उसका जो है हेपेटाइटिस सी को 2030 तक एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो अभी चल रहा है हमारे चार पांचों हॉस्पिटल में। तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बहुत सहयोग हो रहा है,
1: बहुत ही बड़ा योगदान है। ओके, तो यानी ऐसा एक माना जाता है कि 2030 तक उसे इराडिकेट करना। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ा योग है, बहुत ही बड़ा योगदान है और बहुत ही बड़ा कार्य है जिसमें हमारा बिल्कुल हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय जुड़ी हुई है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे विशेषज्ञ इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। और बिल्कुल चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस जो है वो कौन सा रोग है, किस अंग से जुड़ा हुआ रोग है और इसका मतलब क्या है।
0: हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में सूजन होना, इन्फ्लामेशन होना। इसके पांच मुख्य प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सब इम्पोर्टेंट हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होते हैं।
1: और इसके कारण क्यों, क्या है डॉक्टर जी?
0: इसका कारण है क्योंकि ये दोनों क्रॉनिक हो जाते हैं, उसके लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस बी होता है उसे जो लोग पीड़ित होते हैं उन्हें उम्र भर एक मेडिकेशन लेना चाहिए हर रोज़। और जो हेपेटाइटिस सी है अभी जैसे मैंने बताया पहले उसका एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है तो इसका अभी इलाज हो रहा है।
1: अच्छा।
0: लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उन्हें ज़्यादातर ये बीमारी जब लगती है तो हमें बाद में पता चलता है। तो कॉम्प्लिकेशन से पता चलता है,
1: मतलब वो बहुत धीरे धीरे करते हुए
0: बढ़ता है।
1: तो डॉक्टर जी, जब शुरुआत में हेपेटाइटिस होता है तो उसके लक्षण क्या है, पता कैसे चलता है कि एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है?
0: हेपेटाइटिस भी एक उसे साइलेंट किलर करते हैं।
1: अच्छा।
0: वह किस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके लक्षण बहुत कम होते हैं।
1: अच्छा।
0: पता चलता है जब कॉम्प्लिकेशन हो
1: बढ़ने लगता है।
0: तो बीमारी होती हैं जैसे फैटीग होता है, पुआ पेटाइट होता है, फीवर होता है जो अनएक्सप्लेन होता है। फीवर होता है, आता है, जाता है, एक हफ्ते में 2-3 बार आता है। आप डॉक्टर दिखाते हैं, वो कहते हैं जुकाम है, कुछ है, दवाई देते हैं लेकिन कम नहीं होता है। जांच करने पर तब पता चलता है कि हेपेटाइटिस हो जाता है,
1: यानी कंटिन्यूअसली वो बढ़ता जाता
0: और एक
1: है।
0: हाँ, और एक विशेष जो साइंस होता है वो है आंखों का पीलापन होना, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। तो ये लोग जब जॉन्डिस होते हैं तो पता चलता है कि हाँ, लीवर में अभी सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है।
1: अच्छा।
0: तो देखना चाहिए किस प्रकार क्यों हो रहा है, तो ऐसे चलता है।
1: ओके, और डॉक्टर जी, यहाँ मॉरिशस में सबसे ज़्यादा अधिक कौन से हेपेटाइटिस पाए जाते हैं?
0: मॉरिशस में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ज़्यादा पाए जाते हैं।
1: ओके,
0: पाया जाता है। तो अगर स्टैटिस्टिक करें तो मॉरिशस में लगभग 10,000 से 15,000 लोगों को ये बीमारी होते हैं।
1: 10,000 से 15,000
0: होते हैं। और जो लोग होते हैं जो हेपेटाइटिस बी होते हैं पेशेंट, उनको जैसे मैंने बताया था पहले, उनको उम्र भर ये एक दवाई लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बीमारी को जानते हैं, सिवेरिटी को जानते हैं और समझ जाते हैं कि उनको दवाई लेना पड़ेगा क्यों

0: कि उसका ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शुरू करते हैं लेकिन बाद में छोड़
1: देते हैं.
0: हाँ, अभी जब से मैंने शुरू में बताया तो हेपेटाइटिस सी में जो कैंपेन चल रहा है, तो हम जगह जगह जाते हैं, उसका अवेयरनेस करते हैं, बताते हैं लोगों को जांच करो. ज़्यादातर आईवीडीए में ये पाया जाता है. तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं लोगों को बताते हैं कि टेस्ट करो. अभी रैपिड टेस्ट भी हो रहा है. हम मेथाडोन सेंटर्स में जाते हैं, हम प्रिजन वार्ड में जाते हैं, हम डिटेंशन सेल में जाते हैं, वहाँ पर भी जांच कराते हैं.
1: तो एक तरह से ये एक तरह से नियंत्रण लाने के लिए कि ये फैले नहीं, ये जैसे रुक जाए बीच में ही. और जैसे आपने बताया कि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो बिल्कुल डॉक्टर जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस का जो रोग है वो फैलता कैसे है.
0: ये संक्रमित खून, असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित सुई. और जो लोग जिन लोगों ने 1997 से पहले खून लगाया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था, ये माँ से बच्चों पर भी माँ से बच्चों तक भी हो सकता.
1: मतलब माँ से ट्रांसमिट होता है.
0: अगर माँ पीड़ित है तो बच्चों में भी जा सकता है.
1: मतलब ये ट्रांसमिट होता है.
0: ओके,
1: तो ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है. तो डॉक्टर जी, यहाँ पर ये भी मैं पूछना चाहूँगी, आजकल हम मॉडर्नाइजेशन के साथ और आजकल ट्रेंड है टैटू लगाने का, तो और जैसे इंजेक्ट करते हैं कुछ लोग जो नशाखोरी करते हैं वे लोग सुइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये भी एक तरह से ये रोग फैलाने में कोई
0: ये रोग, अगर सुई या टैटू के उपकरण संक्रमित हों या असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने जाएं तो ये हो सकते हैं.
1: अच्छा,
0: तो अगर मैं जैसे मैं बताऊंगा, अगर एक आदमी जाता है, मैंने पहले बताया था कि ये रोग पता नहीं चलता है अगर जांच नहीं करो. अगर वो एक आदमी जो पहले से इन्फेक्टेड था, वो गया वहाँ पर, उन्होंने टैटू किया लेकिन उसको पता नहीं था कि वो संक्रमित है, तो अगर ये अच्छी तरह उसका सुई जो इस्तेमाल किया, अगर फिर से एक दूसरे आदमी पर इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि वो पीड़ित हो जाए.
1: मतलब उनको लग सके, उनको ट्रांसमिट हो सके. यानी मतलब जो लोग टैटू करवाने जाते हैं ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ करवाते हैं, और जैसे जो टैटू करते हैं, जो लोग टैटू करते हैं उन लोगों को भी इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब वे किसी का टैटू करते हैं. तो डॉक्टर जी, क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग टैटू करते हैं या जिनके स्टूडियोज़ हैं टैटू के लिए, तो क्या उनको पेश या जो लोग आते हैं उनको पूछना ज़रूरी हो जाता है?
0: पूछना ज़रूरी है, और ध्यान दें कि वो जब टैटू लगा रहे हैं तो वो सुई उसका जो जब तोड़ते हैं
1: है, हाँ, हाँ
0: जब तोड़ते हैं जो देखना चाहिए कि वो नई सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं. जो स्टेराइज करने के बाद जो सुई वो ठीक नहीं होता है,
1: क्योंकि
0: स्टेराइजेशन जो है वो 100%
1: निकाल नहीं सकते. मतलब उसके माइक्रोब्स जो हैं
0: जो है वो 30 या 1 घंटे तक स्टेराइज करना चाहिए. लेकिन जो लोग करते हैं वहाँ तो वो अच्छी तरह से
1: वो हो सकता है कि अगर कहीं पर भी आपने ढील दे दी तो ये किसी और को लग सकता है. और बिल्कुल, जो इंसान को हेपेटाइटिस की बीमारी नहीं है पर टैटू लगवाया, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको हेपेटाइटिस हो सकता है. अगर उससे पहले अगर किसी को हेपेटाइटिस रहा हो, वही सुई का इस्तेमाल अगर आप पर किया जाए तो हो सकता है. और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स ना भी दिखाई दे, वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं. और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जी ने बताया कि साइलेंट किलर है. तो डॉक्टर जी, हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है?
0: साइलेंट किलर इसे कहते हैं क्योंकि जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाता है.
1: अच्छा.
0: ये 5 या 10 साल पहले हो चुके होते हैं.
1: मतलब इतने टाइम के बाद आपको पता चलता है.
0: कॉम्प्लिकेशन से जाना जाता
1: है. ओके.
0: उसके बाद जांच किया, अगर एक आदमी हॉस्पिटल में आया तो उसका जो सर्जरी चल रहा है तो अभी टेस्ट किया, फिर पता चलता है उसको हेपेटाइटिस सी है. तो अभी उसका वायरल लोड सब करना, अभी शुरू करेंगे उसका ट्रीटमेंट, तो देर हो जाता है. ज़्यादातर लोग जो हैं वो हेमाटेमेसिस के भी आते हैं.

0: जो उल्टी करते हैं खून के, तो उसके बाद हम करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एसोफेजियल वायरसेस हैं, क्यों है। अभी जांच लगाते हैं तो पता चलता है हाँ उसका हेपेटाइटिस सी हो
1: तो
0: रहा है,
1: तो जैसे वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर आ जाते हैं।
0: तो कुछ लोग हैं जो लिवर सिरोसिस हो जाते हैं, लिवर फेलियर हो जाते हैं, लिवर कैंसर भी हो जाते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि उसका जो प्राइमरी था वो हेपेटाइटिस सी थे।
1: तो
0: इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कुछ है आपको कुछ संकेत है, आपको डाउट है, तो आप आए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जांच कराएं, कुछ
1: कोई भी डाउट है तो आप उसे ढील ना दें, बिल्कुल।
0: क्योंकि जब जैसे कहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर शुरुआत में आपको दवाई देंगे ये ठीक हो सकते हैं, ठीक नहीं होंगे लेकिन कंटेन हो सकता है,
1: कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो जैसे डॉक्टर जी आप बता रहे हो तो हम ये समझ सकते हैं कि हेपेटाइटिस को अगर हमने इग्नोर किया या बहुत लेट पता चला तो क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
0: जानलेवा है ज़्यादातर, क्योंकि जब लीवर सिरोसिस हो जाता है ना, सूजन पहले होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, आप दवाई नहीं लेंगे तो ये वो जो सेल्स हैं लीवर में वो मर जाते हैं, तो लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस के बाद कुछ तो बदल जाते हैं, वो लीवर कैंसर में
1: तब्दील हो जाते हैं। तो डॉक्टर जी जब इन्फ्लेमेशन, मान लीजिए इन्फ्लेमेशन अगर आपको है तो क्या पेन फील होता है? मतलब मान लीजिए अगर किसी को लिवर पर सूजन आ गई है तो क्या पेन फील होता है इनिशियल स्टेज पर?
0: पेन फील हो सकता है लेकिन ज़्यादातर लोगों में पेन नहीं होता। पेन जब तब फील होगा जब ये लीवर जो है वो बड़ा हो जाता है,
1: अच्छा,
0: तो लीवर हेपाटोमेगाली हो जाता है तब वो फील करेगा।
1: ओके।
0: लेकिन अगर लीवर हेपाटोमेगाली नहीं होगा तो उसमें फील नहीं होगा,
1: अच्छा।
0: कुछ होगा लेकिन वो गैस्ट्राइटिस बताएगा, वो बताएगा कि पेट में कुछ दर्द है, वो जाएगा डॉक्टर के पास, थोड़ा सा दवाई लेके ठीक हो जाएगा, पैरासीटामोल भी ले सकते हैं वो,
1: लेकिन वो डॉक्टर को दिखाने के बाद आप ले। और डॉक्टर जी मान लीजिए अगर किसी को सूजन है, दैट इज इनिशियल स्टेज पर सूजन है और ये अभी बहुत एडवांस नहीं पहुंचा है या बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हुआ है, तो क्या
0: तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं? अभी मिनिस्ट्री में बहुत सी दवाई है, हमने बहुत बहुत इफोर्ट किया है मिनिस्ट्री ने पहले से भी, लेकिन 2019 से एक जुली एक कैसे कहते हैं एक एसोसिएशन किया था एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, तो यहाँ में फ्री ऑफ चार्ज हेपेटाइटिस सी का जो मेडिकेशन है हमें मिला है, उसका 5,000 डोज मिला था। लेकिन आपको बताएं ये 2019 में हुआ था, अभी हम 2026 बता रहे हैं, 5,000 डोज मिला था, अभी स्टैटिस्टिक है तो सिर्फ 4,000 लोग का हेपेटाइटिस सी इरेडिकेट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग हैं, हम बताते हैं आप आओ मेडिकेशन लो, वो आते हैं मेडिकेशन लेते हैं फिर
1: बीच में छोड़ देते हैं। तो जो हेल्दी नहीं है, बिल्कुल। तो डॉक्टर जी अभी थोड़ी देर पहले आप ये भी बता रहे थे कि माँ से भी ये ट्रांसमिट होता है बच्चे में, तो कैसे पता चले? कि पहले तो जैसे आप बता रहे हो कि डिटेक्ट करना ही ये सबसे बड़ा चैलेंज है, तो अगर माँ मान लीजिए प्रेगनेंसी से गुजर रही है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें पता चले कि माँ को हेपेटाइटिस हुआ है?
0: अभी हर जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो शुरुआत में जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हम जाते हैं एरिया हेल्थ सेंटर में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम हेपेटाइटिस प्रोफाइल कर देते हैं,
1: अच्छा।
0: तो हेपेटाइटिस प्रोफाइल करके देखते हैं हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, कुछ है, अगर कुछ है तो दवाई देने शुरू कर देते हैं। और ये जो है मैंने बताया था ये माँ से बच्चे तक फैलता है,
1: अच्छा।
0: तो अगर हेपेटाइटिस बी होगा तो अगर बच्चे जन्म लेता है तो 24 घंटे से के अंदर में उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाना चाहिए, और कुछ बच्चों को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना चाहिए। लेकिन दुख की बात ये है भी है कि जो बच्चे हेपेटाइटिस बी माँ से जन्म लेते हैं उनका ये बीमारी चल सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है, लाइफ लॉन्ग हो सकता है, तो उन्हें भी दवाई लेना पड़ेगा,
1: मतलब लाइफ लॉन्ग उनको मेडिकेशन
0: लेना पड़ेगा।
1: okay.
0: ये एक सिर्फ एक पिल है, वन पर डे, लेकिन

0: तुम्हें भी लेना पड़ेगा।
1: तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो नवजात शिशु यानी जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनको ये दवाई कैसे दी जाती है?
0: वैक्सीन के
1: माध्यम से।
0: और एक है इम्यूनोग्लोबिन जो इन्फ्यूजन लगाते हैं, इंजेक्शन करते हैं। और मैं जैसे मैंने बताया, इसलिए हर गर्भवती माँ को ये जांच करना चाहिए हेपेटाइटिस है कि नहीं है। अगर है तो ये फैटालिटी नहीं है, अभी दवाई है, हम दे रहे हैं, आप दवाई लो, आप जांच करो, दवाई लो, ठीक हो जाएंगे, बच्चे के रिस्क कम हो जाएगा।
1: डॉक्टर जी, ऐसा भी क्या हो सकता है कि जो गर्भवती माँ है, जब वो गर्भवती हो चुकी यानी अभी बच्चा पल रहा है और माँ को हेपेटाइटिस काफ़ी देर बाद हुआ यानी 9 महीने के अंतराल, तो क्या ऐसा है, हो सकता है कि बच्चे को ना लगे लेकिन माँ को है?
0: हाँ,
1: ऐसा भी हो सकता है।
0: लेकिन इसीलिए जब बच्चे अगर बाद में हुआ तो कोई नहीं, तो बच्चे जब पैदा हुआ तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम कर देते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाते हैं, और वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने बताया वो भी अगर ज़रूरत पड़ा तो वो लिवर फंक्शन टेस्ट पर डिपेंड करता है जो है, तो उन्हें भी दे देते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित हो जाए।
1: और क्या ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर जी कि जन्म के टाइम पर बच्चे को नहीं था पर कुछ समय के बाद?
0: नहीं था तो नहीं होगा,
1: नहीं होगा,
0: नहीं होगा, बाद में नहीं,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जो जांच करते हैं वो दिख जाते हैं है,
1: उसमें है या नहीं है। तो जी हाँ, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और जैसे डॉक्टर ने बताया, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर समय पर उसका डिटेक्शन ना किया जाए, समय पर उसको दवाइयाँ ना मिले, तो हो सकता है कि ये सीवियरिटी जो है वो धीरे धीरे करते हुए बढ़ती जाए। और ये भी हो सकता है कि ये एसिम्टोमेटिक यानी आपको उसके कोई लक्षण नज़र नहीं आते, अगर लक्षण नज़र आते भी हैं तो 5 या 10 साल के बाद, यानी वो जब तक वो बहुत ज़्यादा खतरे के जोन में चला जाता है तब आपको नज़र आता है, और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऐसी बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है जहां पर आप अपने हेल्थ के चेकअप को जारी रख सके, जान सके, और अगर कहीं पर भी आपको ये लक्षण नज़र आते हैं तो अगर समय पर इसका जांच करके इसकी दवाइयां या इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए तो हो सकता है कि ये बीच में ही इस बीमारी को हम रोक सकें। और जैसे 2030 तक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बीड़ा उठाया है कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दें, तो चलिए इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान होना बहुत आवश्यक है। और इसी पर आधारित आज का ये कार्यक्रम हमने रखा है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में सहयोग प्राप्त हो रहा है, टेक्निक पर हमारे साथ कादिया है, और प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा, और प्रोड्यूसर रत्नमाला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ बने रहें, इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं एक गीत के बाद।

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गुलाब, जो बात कर रहे हैं इसी पर। और बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, हमें कहाँ ट्रीटमेंट करानी चाहिए, ये डायग्नोस कैसे किया जाता है, क्या इसका इलाज लाइफ लॉन्ग चलता है, क्या ये खतरनाक हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में इस वक्त आ रहे हैं। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर जानेंगे डॉक्टर गुलाब से कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, खासकर जब हेपेटाइटिस होना होता है तो किन किन लोगों को इसके चांसेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर जी से।
1: रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं कि असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित सुई का इस्तेमाल करना, बिना जांच वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पहले होते थे 1997 से पहले, टैटू लगाना जैसे मैंने बताया था, हेल्थ केयर वर्कर्स में नीडल प्रिक इंजरी होना, और संक्रमित माँ से जन्म लेने वाले बच्चों पर ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं।
0: डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है, किसी को जॉन्डिस यानी आँखों में पीलापन आ जाना, पीलिया जिसे हम कहते हैं, क्या ये हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है?
1: जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर हर आदमी को जो जॉन्डिस से सफर कर रहे हैं उसको हेपेटाइटिस हो। उसका अच्छी तरह से जांच करना चाहिए। कुछ तो है कि ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाते हैं, जो गॉल स्टोन होते हैं, जो गॉल ब्लैडर का बीमारी होते हैं, कोलेसिस्टाइटिस, उनसे जॉन्डिस हो जाते हैं। जॉन्डिस का जो है उसके हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक हेपेटाइटिस सी होते हैं। मैं बता देना चाहता हूं लोगों को कि अगर आपको जॉन्डिस है, ये जरूरी नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस सी हो, ये एक वजह हो सकता है।
0: और जैसे आजकल देखा गया है सोसाइटी में फैटी लिवर, जैसे फैटी लिवर ये शब्द अभी बहुत टाइम से हम सुनने में आ रहा है कि लोगों को फैटी लिवर हो रहा है, तो क्या डॉक्टर फैटी लिवर के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है?
1: फैटी लिवर के कारण हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन जो है वो फैटी लिवर वो एक प्री डायबिटीज डिस्पोजिशन होता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है। वो अगर एक आदमी को मान लो फैटी लिवर है, उसको हेपेटाइटिस हो जाता है, तो ये बीमारी एक्सेलरेट हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो
0: मतलब स्पीड अप
1: हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जो आदमी डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, उनको फैटी लिवर है, तो अगर उन्हें अनफॉर्चुनेटली ये हेपेटाइटिस हो जाता है या हेपेटाइटिस के बीमारी के लक्षण हैं, तो उन्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो दवाई लेना, अच्छी तरह से जांच करना, और हर जैसे उनके फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरिस्ट को दिखाना, ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए।
0: और डॉक्टर जी, जब हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है?
1: डायग्नोसिस जो होते हैं, हम बेसिक टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट जो करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, और खून के माध्यम से जांच करते हैं, और उसके एक है जो हेपेटाइटिस वायरस को डिटेक्ट करता है, उसे यूजुअली हेपेटाइटिस प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफिसिटी होता है, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस ए को जांच करते हैं, हेपेटाइटिस बी को जांच करते हैं, हेपेटाइटिस सी को अलग अलग तरह से

0: जांच
1: जांच
0: किया जाता है,
1: किया जाता है। ये सेंट्रल लेबोरेटरी में होता है विक्टोरिया हॉस्पिटल में। और जो है अभी अगर आप सुबह को खून दें तो शाम तक पता चल सकता है,
0: एक ही दिन के अंदर आपको पता चल जाता है, रिजल्ट आ जाता है।
1: और जैसे मैंने बताया था पहले, हम रैपिड टेस्ट भी कर रहे हैं मेथाडोन यूजर्स के लिए और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्हें हम जांच करते हैं प्रिजन वार्ड में, जहाँ पर डिटेंशन वार्ड में,
0: वहाँ पर भी टेस्ट किए जाते हैं।
1: लेकिन ये कन्फर्मेटोरी, ये रैपिड टेस्ट करें, अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उसका कन्फर्मेटोरी टेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि हम
0: उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। तो डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी को पता चल गया, ओके टेस्ट कर लिए, पता चल गया कि आपको हेपेटाइटिस है, तो किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए?
1: उसको अभी मैं पांचों हॉस्पिटल में ये सुविधा है, हेपेटाइटिस क्लिनिक अभी चल रहा है पांचों हॉस्पिटल में। तो और जो कहते हैं एक जो बुलुक्स हैं जो और जो DCCI कहते हैं, उस जगह पर भी सेंटर हैं जहाँ पर दवाई देते हैं। तो लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पता चला तो अच्छा है, हमने डिटेक्ट किया, अभी ये हो गया, तो अभी दूसरा परन चल रहा है, तो उसको अभी दवाई लेना चाहिए। दवाई लोगे तो अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसका एक ही पिल होगा, तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा उसका। अगर हेपेटाइटिस बी सी होगा तो उसका भी दवाई ले रहे दे रहे हैं। उसका जो है अभी मैंने बताया एक दवाई है जो 3 महीने तक लेना चाहिए, हर रोज़ एक दवाई एक गोली 3 महीने के लिए, और ये 98% तक इराडिकेट हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन का जो है
0: चांसेस
1: कम हो जाते हैं।
0: तो जैसे डॉक्टर जी आप बता रहे हो कि हेपेटाइटिस बी और सी कुछ खतरे के लेवल पर आते हैं, अगर मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ है,
1: हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो ज़्यादातर सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, दवाई देते हैं, वो ज़्यादातर 1-2 महीने के बाद
0: ठीक हो जाते हैं, तो उसकी दवाइयाँ फिर पूरी लाइफ लॉन्ग लेने की
1: नहीं लेना चाहिए, अगर ठीक हुआ तो हो जाए।
0: और मान लीजिए अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ था, ट्रीटमेंट हो चुकी है, ठीक हो चुका है, फ्यूचर में क्या उसे फिर से वो लगने के चांसेस रहते हैं?
1: हाँ, अगर सुरक्षा
0: बिल्कुल ये जो सारी चीजें हैं
1: नहीं लेगा तो हो सकता है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक बार हुआ तो हो सकता है
0: अवश्य। और जैसे आप बता रहे थे, तो क्या ये एक नॉर्मल जो जनरल डॉक्टर होते हैं वही उसे ट्रीट करते हैं या उसके कोई स्पेशलाइज डॉक्टर रहते हैं?
1: ज्यादातर फिजिशियन को दिखाना पड़ता है, जो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं।
0: ओके, क्योंकि
1: जब दवाई देंगे तो उससे पहले उसका पूरा जांच करना चाहिए, उसका अल्ट्रासाउंड लीवर देखेंगे, उसका स्टेजिंग करेंगे, सिरोजिस है या क्या है, उसका जो फिब्रोस्कान करना है अगर करेंगे, उसका जो है हेपेटाइटिस वायरल लोड देखना पड़ेगा, तो सब देख के फिर अच्छी तरह से शुरू करें और उसको सब सलाह दे के उसको बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर दवाई लो जो जो प्रिकॉशन। हाँ, जो प्रिकॉशन।
0: तो डॉक्टर जी मान लीजिए अगर कोई पर्सनली, जैसे मतलब कोई प्राइवेट लेबोरेटरी में जाकर जांच करवाते हैं, तो कौन कौन से उसमें टेस्ट जरूरी हो जाते हैं?
1: जो टेस्ट करते हैं तो वो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है, वो एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी होते हैं, वो एंटी हेपेटाइटिस बी को एंटीबॉडी होते हैं, वो हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA करते हैं, वो हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड भी करते हैं, और अल्ट्रासाउंड जैसे मैंने कहा अल्ट्रासाउंड लीवर का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, और अगर ज़रूरत पड़ा तो फिब्रोस्कान। आप बताएंगे, मैं बताऊंगा, क्योंकि एंटीजन क्या दिखाता है, एंटीजन दिखाता है अगर इन्फेक्शन हुआ, सरफेस एंटीबॉडी वो बताता है कि अगर वैक्सीनेशन किया या इम्यूनिटी है उस हेपेटाइटिस के
0: लिए उसमें, यानी ये सारे टेस्ट में पता चल जाता है। तो डॉक्टर जी हम कैसे माने कि मतलब हेपेटाइटिस जिसे हुआ है क्या ये आजीवन रहने वाली बीमारी है?
1: Unfortunately, for हेपेटाइटिस बी के लिए हाँ रहेगा, वो कंट्रोल हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन का रिस्क, अगर आप दवाई अच्छी तरह से लें तो वो कम हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी का है वो अगर आप

0: दवाई लेंगे 3 महीने के लिए। एक दवाई है जिसका नाम है एपक्लूज़ा, अभी है मॉरिशस में। उसका डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट आता है, लेकिन जो मेन है वही है। लेकिन अगर आप दवाई लेंगे अच्छी तरह से तो वो 98% तक इरेडिकेट हो जाता है, और 100% श्योर है कि कॉम्प्लिकेशन
1: नहीं होगा।
0: नहीं होगा।
1: तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान में रखनी है, और ख़ासकर जैसे हेपेटाइटिस सी है, और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि मॉरिशस में ये बीमारी पाई जाती है हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस सी जो है वो आजीवन रहने वाली एक ऐसी बीमारी है, पर इसका इलाज अगर आप समय सर करवाएँ तो बिल्कुल आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और बिल्कुल हेल्दी रहने के लिए आपकी ओर से ये जिम्मेदारी निभाना ये आपका कर्तव्य है। बिल्कुल आना है और आपको दवाइयाँ लेनी हैं, और जिस तरह से डॉक्टर गाइड करते हैं उस तरह से आपको उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। जी हाँ, अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आज के इस टॉपिक को लगकर है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028085 पर। हमारा कार्यक्रम जारी है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में।

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ, आज की चर्चा का कार्यक्रम आज हमारे साथ डॉक्टर त्रिलोक गुलाब जी जुड़े हुए हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और विक्टोरिया हॉस्पिटल में वे अपनी सेवा प्रदान करते हैं। और आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर बात कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं डॉक्टर जी से कि हेपेटाइटिस एक बार डायग्नोस हो चुका है, टेस्ट आ चुके हैं, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? डॉक्टर जी, इलाज की शुरुआत कैसे होती है?
2: इलाज शुरू होते हैं तो पहले, जैसे मैंने बताया, तो जांच करते हैं, उसका सिवियरिटी जान जाते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेशन हुआ। अगर कॉम्प्लिकेशन तो इस बेस पर दवाई देने शुरू करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का जो इलाज है वो ज़्यादातर आसान है। अगर आपका लिवर फंक्शन ठीक है, आपका जो एको किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो आपका लीवर जो है वो स्वस्थ है, अभी तक पूरी तरह से
1: नहीं हुआ,
2: तो आपको दवाई देंगे। उसका दवाई का साइड इफेक्ट थोड़ा प्रैक्टिकली बहुत कम है, तो उसका दवाई आप ज़रूर लेंगे, हर रोज़ लेंगे। तो एक बात है कि वो हेपेटाइटिस भी जो है वो क्रॉनिक हो जाता है, तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। लेकिन वो दवाई एक सिंपल दवाई, जैसे अब आम लोग अभी मॉरिशस में ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो एक हर रोज़ पीते हैं ना, तो इनको भी एक दवाई लेंगे तो वो हर रोज़ करेंगे। साल में दो बार या तीन बार उसे हॉस्पिटल में बुलाएंगे, टेस्ट कराएंगे, देखेंगे कि कैसा चल रहा है। रूटीन जो है वो अपॉइंटमेंट होगा, वो जब जाएगा तो फिजिशियन के पास जाएगा, वो फिजिशियन देखेगा कि कैसा चल रहा है, प्रगति हो रही है, कैसा चल रहा है, उसका जो लीवर फंक्शन है, टेस्ट है, वो अच्छा है, कुछ नहीं है। साल भर में या दो साल में एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, जैसे जैसे पेशेंट का जो बीमारी का लेवल है
1: जी,
2: तो देखेंगे कैसा चल रहा है।
1: ओके,
2: तो और हेपेटाइटिस सी का जो है वो अभी अगर आप 3 महीने तक दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। उसका जो है हेपेटाइटिस सी वायरल लोड देखेंगे, जांच करने के समय, दवाई शुरू करने के समय इसे पहले लेंगे, और उसके बाद जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद एक और जांच करेंगे, देखेंगे कि वायरल लोड कितना है, वो कम हो जाता है और जो वो एक नॉर्मल लाइफ
1: जी सकते हैं। तो डॉक्टर जी, क्या ये बीमारी छूने से या फिर हाथ लगाने से फैलती है?
2: नहीं, ये बीमारी छूने से, साथ बैठने से, साथ खाने से नहीं फैलती।
1: क्योंकि कई बार ये एक टैबू बन जाता है कि किसी को अगर मान लीजिए परिवार में ये बीमारी हुई है तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसे टेंशन वाली एक सिचुएशन बन जाती है।
2: नहीं, ये सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि असुरक्षित शारीरिक संबंध न बनाए, और अगर उसको गलती से कुछ चोट लगी, उसका खून जा रहा है, तो उसको बंद करके उसका
1: डिस्पोज करना,
2: उसका। और असुरक्षित जैसे मैंने बताया, संक्रमित खून, संक्रमित

0: सुई से उसका रेजर शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर उसको चोट पहुंचाए तो
1: वो फैल सकता है। और डॉक्टर जी, जब हम बात करते हैं तो जैसे अल्कोहल लेना, जो लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, जो सिगरेट लेते हैं, स्मोक करते हैं, क्या उनके लिए रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं?
0: हाँ, रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हो, अगर एक आदमी अल्कोहल ले रहा है तो उसका लीवर जो है उसका सूजन चल रहा है, और सुपर इम्पोज अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो ये एक्सीलरेट हो जाता है, तो ये ठीक नहीं। और आप जानते हो स्मोकिंग भी कितने
1: जैसे कॉम्प्लिकेशंस, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं जी,
0: तो ये भी कॉम्प्लिकेशन को ज़्यादा जल्दी
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, यहाँ पर जब हम फैमिली वालों का बात करते हैं, फैमिली के सपोर्ट की बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो फैमिली का क्या रोल है?
0: फैमिली का बहुत बहुत
1: इम्पोर्टेंट
0: रोल होता है, पर परिवार का सहयोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। मरीज को हौसला देना, दवा समय पर लेना, उनको फॉलोअप के लिए
1: एनकरेज
0: करना, और ज़रूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों को वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए। तो ये जो है उनको ताबू नहीं करना चाहिए, तो उनका हेल्प करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि जाओ, मेडिकेशन हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तुम जाओ। और ऐसा है कि उनको फिर से पीड़ित जैसे कहते हैं री इन्फेक्शन
1: ना होने के चांसेस हो, इसीलिए
0: एक आदमी उन्होंने 3 महीने तक हेपेटाइटिस सी का जो दवाई लिया ठीक हो गया, तो और अभी वो बोलेगा मैं ओके, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं फिर अगर वो फिर से जाएगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
1: बिल्कुल, इसीलिए यानी उनको एक फॉलोअप करते रहना बहुत जरूरी है, और इसमें परिवार को एनकरेज करना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं,
0: तो ये लेकिन मैंने बताया तो हर रोज देखना चाहिए कि उन्होंने मेडिकेशन लिया कि नहीं लिया, अगर कुछ है उसको कमजोरी हो रहा है, पुआ पेटाइट हो रहा है, देखना चाहिए, उसको हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर को दिखाएं, अगर वो बीमारी बढ़ रहा है, स्टेज चेंज कर रहा है, उसका कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो देखना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये अगर परिवार के लोगों का हेल्प होगा तो
1: बिल्कुल। और डॉक्टर जी, इसमें डाइट एक्सरसाइजिंग का क्या रोल है?
0: डाइट और एक्सरसाइजिंग होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर वो उसका लीवर जो है वो इन्फ्लेम्ड है, तो उसका जो है जैसे आपने बताया था पहले फैटी लीवर हो जाता है, अगर वो फैटी लीवर कैसे होता है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो
1: सेडेंटरी
0: लाइफ जो करते हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज कर, आपको हेपेटाइटिस होता है तो पहले से ही वहाँ लीवर सूजन होता है, तो उसके फैटी लीवर अगर होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए अच्छी से खाना खाना, एक्सरसाइज करना, शराब और सिगरेट से दूर रहना, ये
1: बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर जी, हम ऑलमोस्ट आज के इस प्रोग्राम के एंड तक आ गए हैं, तो हमें लास्ट में हम ज़रूर जानना चाहेंगे किन किन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को?
0: मेरे मैसेज हैं कि हेपेटाइटिस से डरना नहीं चाहिए, अभी मॉरिशस में अच्छी तरह से जांच हो रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, सब हैं, तो आप डरिए मत, आप आ जाएं, आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं, 5 सेंटर हैं, आप लोकल एरिया हेल्थ सेंटर में भी जा सकते हैं अगर कुछ है, तो वो आपको गाइड कर देंगे, बताएंगे कि क्या है। अगर आपको ये बीमारी का अगर आपको डाउट है, आपको प्रिक लगा, आपने जैसे इन्फेक्टेड सुई का इस्तेमाल किया, तो टाटू बनाया पहले, आपको डाउट है क्या था कैसा था, तो आप आए, आप आ जाएं, हम टेस्ट करेंगे, ये टेस्ट सब हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज होता है, और ट्रीटमेंट भी फ्री है, तो
1: फायदा उठाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मान लीजिए अगर आपने टैटू किया है या आपको कहीं पर भी ऐसा डाउट हो रहा है, और ये प्रोग्राम सुनने के बाद आपको लगता है कि एक अगर टेस्ट करवाया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है, और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि ये निःशुल्क है, हर हॉस्पिटल में, हर एरिया हेल्थ सेंटर

में बिल्कुल आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो देर ना करें, क्योंकि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में जहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साथ जुड़ा है और ख़ासकर हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बहुत काम कर रहा है, और बस उन्होंने प्रण लिया है कि 2030 तक अगर इसे इरेडिकेट किया जा सकता है तो क्यों ना हो, बस हमें कुछ जिम्मेदारी निभानी है और अपनी ओर से हम अगर इसमें अपना सहयोग देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो जी हाँ, आज का प्रोग्राम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आधारित रहा। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर त्रिलोक गुलाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, और बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में सहयोग मिला हमें। तकनीक पर हमारे साथ बने रहे तकनीक पर थे कादेया, हमारे साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट रही उरुसा, और प्रोड्यूसर रही रत्नमाला मंगरू जी। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी दर्शकों ने, श्रोताओं ने साथ दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। एक पुनः उपस्थित होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: के 10 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कल MV एपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामले पर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने पिछले हफ्ते उतारे गए 547 मवेशियों की स्थिति पर जानकारियां दी, जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार शुरुआती वेटरिनरी जांच से पता चला है कि पर्याप्त चारा न मिलने के कारण समंदर में इंतजार के दौरान एक जानवर की मौत हो गई। शनिवार को खास ट्रकों के जरिए और सख्त सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जानवरों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। एक और संवेदनशील पहलू खून का सैंपल है, जिसके प्रारंभिक नतीजों की पुष्टि अब दक्षिण अफ्रीका की एक रेफरेंस लैब से की जानी है। कृषि उद्योग मंत्री ने कहा कि इस स्तर पर किसी नतीजे तक पहुंचना अभी मुश्किल है। उन

0: के अनुसार इस मामले में बायोसिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। असल में जुलाई महीने की शुरुआत में अपेक्स एम्बियापेक्स जहाज को मॉरिशस के समुद्री इलाके में 300 किलोमीटर की दूरी पर रहने का आदेश दिया गया था। बाद में परिहार्य परिस्थितियों और जानवरों के कल्याण के आधार पर उससे मवेशियों को उतारने की विशेष अनुमति दी गई, इस शर्त पर कि आयातक सभी स्वच्छता और संबंधी शर्तों का पालन करने की लिखित जिम्मेदारी ले। राष्ट्रसभा में कल पीएमक्यूटी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने बताया कि भारत की तरफ से प्राप्त ग्रांट से 19 मिलियन रुपए रोड्रिक्स में मूल ढांचा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट परियोजना के लिए निर्धारित किए जा रहे हैं। ये रकम भारत की तरफ से 2022 में दी गई कुल 400 मिलियन रुपए के ग्रांट का हिस्सा है। इसमें शामिल परियोजनाएं और उनके पूरा होने की तारीख की सूची कल राष्ट्रीय सभा में पेश की गई। अभी तक 18.4 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तेवीन सीतानैन मामले की जांच अभी भी सस्पेंडेड है। कल क्यूपिप की अदालत में सेंट्रल सीआईडी के इंस्पेक्टर सिबालक ने एक बयान में बताया कि पुलिस अभी भी टेलीफोन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हासिल करने के लिए जज के आदेश का इंतजार कर रही है। तथा कथित मेनलो पार्क मामले में तेवीन सीतानैन पर ICTA के तहत अस्थायी आरोप दर्ज है। पिछले साल जनवरी में DPP दफ्तर में दायर की गई मांग अभी भी लंबित है। जांच में इस विकास का जायजा लेने के लिए मामले को अगले 5 नवंबर के लिए स्थगित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ा जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसके सहयोगी हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। अवेन्यू कोर्ट दे गॉड ट्रेफल रोजिल में 81 साल की 81 years old श्रीमती दयावंती राम तोहल पैदाशी नाम तूफानी जो स्वस्ती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ ही आज दिन के 3 बजे इनके बेटे श्री विनय राम तोहल के मकान अवेन्यू कोर्ट दे गॉड ट्रेफल रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिफियो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 3 PM। UDC Balance Road, Plein Manyomé 45 साल के 45 years old श्री देवराज पियती जो चेप नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके भाई श्री देव पियती के मकान UDC Balance Road, Plein Manyomé से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। Impasse Notre-Dame, Maybug में सेफ मैक्स सुपरमार्केट के पास 68 साल के 68 years old श्री ज्ञानदेव पिहारी जो बाबा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पिहारी के मकान एपास नोट्रडाम मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बो वालों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस पर पुनः आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर वंदन स्वीकार करें। नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम को लेकर। हमें भी अवसर मिला है आप लोगों से जुड़ने का। आप लोगों की सेवा में हम आ चुके हैं भक्ति धारा इस कार्यक्रम को लेकर, जो चलेगा अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक। आपको बता दें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। तो चलिए, भगवान गणेश का नाम लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हम

0: चलिए, यहाँ पर ईश्वर का नाम लेते हुए हमने कार्यक्रम का आरंभ किया था और अब समय हुआ है कि हम बढ़े विनय अंजलि इस कार्यक्रम की ओर, और इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
2: प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत है, हम आपका अभिवादन करते हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे पंडित वाल्मीकि महेश जी के गाए हुए एक भजन से। आप इस भजन का रसास्वादन करें।

0: श्रोताओं स्टूडियो में फिर से उपस्थित हुए हैं श्रद्धेया पंडिता प्रेमिला श्रीरतन जी। हम उनका अभिवादन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि एक मंत्र का पाठ करें और उस मंत्र पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय पंडिता प्रेमिला श्रीरतन जी।
1: ओम अभयम कर्तयंतरिक्षभयम् ध्यावा पृथिवी उभे इमे अभयम पश्चादभयम् पुरस्तादुतरादधरात् अभयम् नोऽस्तु द्यौ पृथिवी अन्

अभय हो पथ प्रशस्त, निशा निराशा दूर हो, भय हो अस्त व्यस्त। सम्माननीय श्रोतागण सादर नमस्ते। श्रोताओं, इस शांति मंत्र के अभयकर्ता से हमारी प्रार्थना रहती है कि हमें अंतरिक्ष, द्यौ, पृथ्वी आदि लोकों में निर्भयतापूर्वक जीवन जीने की विनय है, ताकि सभी दिशाएं हमारे मित्र बन अभय प्रदान करें, हम अभयतापूर्वक जीवन तो व्यतीत कर सकें। हम इस शांति मंत्र से निसंदेह धन्य एवं महान बनने की ईश्वर कृपा चाहती हैं। हमारे लिए परमात्मा सदा निर्भयता का पद प्रशस्त करें, ताकि खुशियों की सुंदर झील में निर्भीक जीवन कमल मुस्काएगा। हमारा तो संकल्प, शरीर, धन, कर्म एवं संबंध आपके प्रति अर्पित है। हमारे लिए उभे इमे ये दोनों ध्यावा पृथ्वी, बिजली और पृथ्वी से हमें निर्भय करें, ताकि अंधकार के प्रकोप की निराशा का भय अस्त हो जाए। प्रभुवर, आपके प्रकाश से निर्दयता पूर्वक संबंधों की सुरक्षा, स्नेह, समानता एवं संपूर्ण संपन्नता की प्राप्ति का अनुभव तो होता रहे, इसलिए हम वेद माता के राजपथ पर धैर्यवत गति से निश्चित दिशा में चलती हमारे मन का संकल्प प्रभु के प्रिय बन जाए। जिसका साथी है भगवान, उसे किस बात का डर। श्रोताओ, हमारे मन पवित्र, निर्मल, दर्पण की न्यायी रहे, ईश्वरीय प्रेरणा से पूर्ण दिव्य कर्म, बोझ मुक्त जीवन, शक्तिशाली निष्कपट बुद्धि से अभय प्रभु प्रेम की पात्रता का निर्भीक जीवन महानता से भरे रहे। जैसे प्रहलाद, ध्रुव, नचिकेता आदि अभय होकर प्रसिद्ध प्रभु भक्त कहलाए। भय तो भूत की कमजोरी और अज्ञान के अंधकार से पैदा होता है, जो कष्टों, रोगों, दुखों से भरा मार्ग दर्शाता, पश्चात पीछे से, पुरस्तात आगे से, उत्तरात ऊंचे और नीचे पृथ्वी से। भय अभयम अस्तु न होने के लिए परमेश्वर का वरदान की चाह है। हमें वह मार्ग दर्शाए प्रभु, जिस पर देव, ऋषि, मुनि, विद्वान, महापुरुष निर्भयता पूर्वक चल चुके हैं, जिससे हम भय मुक्त, रोग मुक्त, चिंता मुक्त, सुख शांति, भय रहित परमात्मा बल भरोसे पर पुरुषार्थ कर भय से छुटकारा पा सकते हैं। हमें अखंड जागती ज्योति बनकर आचार, विचार, व्यवहार, चरित्र में दिव्य बल का भंडार से विनय रहती, जो सत्य मार्ग का दर्शन अभयता से करा सके। हम निर्भिक्त जीवन को पाने के लिए पवित्र, शांत

अभा निश्चिंत ज्ञान कर्म स्व मनन चिंतन से विचारों में शुद्ध निश्चय को स्थिर करने का प्रयास करती। श्रोताओ, भगवान हमें द्युलोक, मध्यलोक और पृथ्वीलोक में अभय तो करें, पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाएं हमारे लिए अभय तो हुए। जो डर जाता वह जीते जी अर्थात मृत जीवी हो जाता। इसलिए मंत्र का स्वर्णिम उपदेश है, अभयम नह कर्तयंतरिक्ष भयम ध्यावा पृथ्वी उभे इमे। हे प्रभु, यदि हम सत्य ज्ञान से मन में संयम नियम रखकर श्रेष्ठतम बुद्धि के साथ पूर्ण श्रम से आपकी याद में कर्म करते हैं तो तीनों लोकों में अंतरिक्ष में ध्यव पृथ्वी और सभी दिशाओं में किसका भय, क्योंकि हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है। हम आपकी शुभकामना हमारे साथ हैं, जो अभय की सबसे बड़ी औषधि है, जिसे मानसिक संतुलन नहीं खोती, विषम परिस्थिति पार कर सकते, समस्या का समाधान पा ही लेते हैं, सभी ओर से खरे उतर सकते हैं। इसलिए हमें चारों ओर से अभय दान की प्रार्थना है। हमारा कर्म श्रोताओं भय मुक्त होकर सत्य शांत ओज तेज सुख देने वाला सभी का हितकर हो तो तनाव रहित होकर क्रिया करने से भय कैसा। श्रेष्ठ कर्म करने से पहला तो परमात्मा ही हमें सम्मानित कर देते हैं। शांति का संस्कार ही हमें भय मुक्त रखता। इसलिए हे प्रभु, आकाश रूपी छत के नीचे और धरती की शैया पर ज्ञात अज्ञात से भयभीत होकर मरण से पहले मृत्यु शैया पर पहुंचने से बचाने की कृपा चाहते हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत भय के भूत का साया हमारा पीछा न छोड़ता। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना रहती, हमें तन का मन का दुनियावी कर्मों का लौकिक संबंधों का तथा तमाम कामना का डर लगा रहता है, जैसे हमें परीक्षा में असफल होने का भय, लूट जाने का भय, धंधे में चौपट होने का भय, अपने पद एवं इज्जत बिगड़ जाने का भय, अपनी सीट छूट जाने का भय, बीमारी होने का भय, जानवरों कीट कीटाणुओं का भय, मृत्यु का भय, दुष्ट कर्म का भय से भयभीत रहती है। इसलिए परमात्मा सुरक्षा के लिए निवेदन है, जिसे अपवित्रता रहित निर्विकारी निराकारी निरंकारी एवं निर्भीकता पूर्वक निडर रहने की चाह है, हमें लोक लोकांतर से भय रहित रहने के वरदान से भरते रहे, ताकि काले साये से डरे सहमे न रहें, हम आशा विश्वास से सही दिशा की ओर ले जाने की कृपा चाहते, ताकि प्रकृति प्रकोप से निर्भय रह सकें। सभी लोक अंतरिक्ष द्युलोक एवं पृथ्वी तथा सभी दिशाएं हमें अभय प्रदान तो करें, ताकि जीवन अति सरल स्वच्छ तथा निर्मल बनाकर अभयता से जी सकें। श्रोताओ, अभयम एक तप है, जो मृत्यु पर विजय दिलाकर जिया दान देकर दिव्यता से भर देता। पवित्रता का धर्म ही निर्भयता है, जो विकृत प्रवृत्तियों के जंत्र मंत्र तंत्र के जंजाल में फंसने से बचाती है। अशुद्ध आत्मा भूत प्रेत पिशाच और दूषित वृत्तियों के प्रभाव से रोकने का परम पिता से निवेदन करती, जिसके जाल में अपनी सतीत्व साधुत्व देवत्व को दुष्टगण नष्ट कर डालते हैं। इसलिए मंत्र द्वारा ईश्वरीय आदेश पर चलना ही समय की पुकार है। यह हमारा परम रक्षक हितैषी हमें निर्मल निश्चल निर्वैर तन मन वाले तो बनावे, और दुख अशांति कष्ट के बीच सदा निश्चिंत निर्विघ्न रहने की युक्ति शक्ति एवं कला का विकास तो होता रहे। हम तन मन धन जन से अविनाशी पावनता पवित्रता सुख शांति और आनंद से संपन्न जीवन जीने का अधिकार तो पा सकें। श्रोताओं, परमात्मा की छत्र छाया में निर्भयता के मार्ग सरल सरस निष्कंटक होने के लिए हमारी ललक रहती कि सभी लोकों दिशाओं में

0: आनंदित रह सकें। भगवान हमें दंडित भयभीत न कर हमारे लक्ष्य उद्देश्य के प्रति मार्गदर्शन करे। कर्म सिद्धांत द्वारा दंड का भागीदार हम ही हैं और स्वयं भुगते, क्योंकि आत्मा ही हमारा मित्र शत्रु है। परमात्मा तो अभय करता सुख करता है, उनसे सद्गुण की वृद्धि की प्रार्थना रहती, निस्वार्थ प्रेममय पवित्र जीवन की चाह रहती। भय की उत्पत्ति एवं निर्माण विचारों भावों कल्पनाओं एवं इंद्रिय अनुभवों से होती, जो शारीरिक मानसिक निर्बलताओं से उत्पन्न होता। इसलिए हम आध्यात्मिक आत्मिक बल से समर्थ रहना चाहते और चिंतन तनाव से रोग रहित रहते। श्रोताओं, हम में श्रद्धा आत्मविश्वास के ज्ञान के साथ प्रार्थना सदा रहती कि प्रभु हमारे सहायक रहे। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं, अभी आप पंडिता प्रेमिला जी से रतन को सुन रहे थे। आशा है आपने उनके विचारों से लाभ उठाया होगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में टेक्नीशियन के रूप में साथ दिया है श्रीमती अंजू लक्ष्मण जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आपने सुना, आभार प्रकट करते हैं। अंत में आप प्रदीप जी के स्वर में एक मधुर भजन का रसास्वादन करें और हमें अनुमति दें। हम सेवा में फिर उपस्थित होंगे। नमस्ते।

तो श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर गंगू जी को हम धन्यवाद देते हैं। जीवन में कभी कभार आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस के साथ साथ सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, वहीं पर धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जल्दबाजी में या हड़बड़ी में किया गया कोई भी काम क्या हमें सही दिशा में ले जा रहा है, क्या हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, हमें नहीं पता। इसलिए जिस भी कार्य को हम सच्ची निष्ठा, लगन और धैर्य के साथ करते हैं, तो हम अपने हर एक पग को, हर एक कदम को जो अपने लक्ष्य की ओर उठा रहे हैं, अच्छे से देख पाते हैं, परख पाते हैं, समझ पाते हैं, तब जाकर हम अपने एक एक जो है पग को आगे बढ़ाते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। तो बस धैर्य बनाए रखिए जीवन में, धैर्य से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम।

ईश्वर की पूजा हर कोई करता है, ईश्वर से प्रार्थना हर कोई करता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम सदा ईश्वर से मांगते ही रहते हैं। कभी कभार हमारी प्रार्थनाओं में हमें मांगने के बजाय ईश्वर का धन्यवाद भी करना चाहिए। एक कृतज्ञ हृदय रखते हुए ईश्वर ने जो कुछ दिया है आज तक हमें, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमें मिला है कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा ही है। आज जिस भी स्थिति में है, जो कुछ हमें मिल रहा है समाज से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, जो कुछ हम समाज को बदले में दे पा रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, ये सब कुछ ईश्वर की ही कृपा होती है। कहते हैं ना कि जीवन में कुछ भी ईश्वर की इच्छा के बिना संभव नहीं होता है। तो ईश्वर है तो हम हैं। तो हृदय से ईश्वर का हम भी धन्यवाद करते हैं कि आप हैं तो आज इस सुंदर जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं, और आपकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन पर सदा रहे।

जी हाँ, शांति की इच्छा तो हर एक व्यक्ति को होती है अपने जीवन में। हम जिंदगी के इस दौड़ में कभी कभार दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ऐसा लगता है कि अब और नहीं हो रहा है। तो शांति की आवश्यकता तो सबको पड़ती है, और मन और जीवन में शांति तब हमें मिलती है जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा मन स्थिर होता है। और मन को स्थिरता सिर्फ और सिर्फ ध्यान से मिलती है, मन को स्थिरता प्रार्थना से मिलती है, मन को स्थिरता विश्वास से मिलती है। अपने आप को जब हम ईश्वर को सौंप देते हैं।

है, शांति उसमें हमें मिलती है कि ईश्वर जो भी हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है और तू ही हमें जो है सहारा है हमारा।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, जब भी कभी किसी समस्या का समाधान न मिले तो बस उसे ईश्वर को सौंप देना चाहिए और देखिए किस तरह से समाधान अपने आप ही मिल जाता है। चलिए इसी के साथ समय हुआ है हम बढ़े आज के इस कार्यक्रम के अंतिम भेंट की ओर। इस अंतिम आरती के साथ जो है आज का भक्ति धारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आप सबने इतने प्रेम से आज भी हमारा साथ दिया, बहुत बहुत आभार। 11 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद सैदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। हमारी आपकी भेंट जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। जनवरी 2021 से जुलाई 2026 के बीच पुलिस ने चाकू, तलवार और अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राष्ट्रीय सभा में कल पीएमक्यूटी सत्र के दौरान ये जानकारियां दी गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों से इन घटनाओं में 700 लोग घायल हुए और 40 लोगों की मौत हुई। कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल ने कल एमवी अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामलों पर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने पिछले हफ्ते उतारे गए 547 मवेशियों की स्थिति पर जानकारियां दी। डॉ. अरविंद बुलेल के अनुसार शुरुआती वेटरिनरी जांच से पता चला कि पर्याप्त चारा न मिलने के कारण समंदर में इंतजार के दौरान एक जानवर की मौत हो गई। शनिवार को खास ट्रकों के जरिए और सख्त सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जानवरों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। देविन सीतानंद मामले की जांच अभी भी सस्पेंडेड है। कल क्यूपीप की अदालत में सेंट्रल सीआईडी के इंस्पेक्टर सिबालक ने एक बयान में बताया कि पुलिस अभी भी टेलीफोन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हासिल करने के लिए जज के आदेश का इंतजार कर रही है। तथाकथित मेनलो पार्क मामले में देविन सीतानंद पर ICTA के तहत अस्थायी आरोप दर्ज हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसके सहयोगी हूती गुट ने सऊदी अरब के बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
4: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने खुदा की सिमत भेजा है काली खत, मैंने खुदा की सिमत भेजा है खाली खत, कुछ भी नहीं बताया कि सब जानता है वो, कुछ भी नहीं बताया कि सब जानता है वो। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत क़ुरान पाक, हम्द बयान, नातु सलाम और आपके पैगामात। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल अनफाल की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में बीमारी थी कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जाने निकालते हैं कि उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं अब आग के अजाब का मजा चखो। ये उन अमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजी हैं, और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता।

जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा में उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, सख्त अजाब देने वाला है। ये इसलिए कि जो नेमत अल्लाह किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डाले अल्लाह उसे नहीं बदला करता, और इसलिए कि अल्लाह सुनता जानता है।

जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुठलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया और वो सब जालिम थे।

जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और अल्लाह से नहीं डरते, अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनके पसे पुश्त हों वो उनको देख कर भाग जाएं, अजब नहीं कि उनको उससे इबरत हो।

और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अहद उन्हीं की तरफ फेंक दो कि इस तरह तुम सब बराबर हो जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता, और काफिर ये ख्याल हरगिज न करें कि वो आगे निकल गए हैं, वो हमें आजिज नहीं कर सकते।

और जहां तक हो सके फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है हैबत बैठी रहेगी और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा जरा नुकसान न किया जाएगा।

और अगर ये लोग सुलह की तरफ मायल हों तो तुम भी उसकी तरफ मायल हो जाओ, और अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता है जानता है। और अगर ये चाहें कि तुमको फरेब दें तो अल्लाह तुम्हें किफायत करेगा, वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तकवियत बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी, और अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते, मगर अल्लाह ही ने उनमें उल्फत डाल दी, बेशक वो जबरदस्त है हिकमत वाला है। ए नबी, अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफी है,

पैगंबर को शाया नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके जमीन में कसरत से खून न बहा दे। तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है और अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। अगर अल्लाह का हुक्म पहले न हो चुका होता तो जो फिदिया तुमने लिया है उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। अब जो माले गनीमत तुम्हें मिला है उसे खाओ कि वो तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है।

जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़े वो, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की वो, आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत न करें तुमको उनकी रिफाकत से कुछ सरोकार नहीं। और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और जो लोग काफिर हैं वो भी एक दूसरे के रफीक हैं, तो मोमिनों अगर तुम ये काम न करोगे तो मुल्क में फितना बरपा हो जाएगा और बड़ा फसाद मचेगा।

0: और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इनके लिए अल्लाह के यहां बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं। और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।
1: सदाकल्लाजीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह अनफाल की तिलावत। पाक परवरदिगार हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उसमें अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। कोई ज़िक्र तिलावत कलाम मजीद से ज़्यादा सवाब नहीं रखता, खुसूसन नमाज में कुरान शरीफ की क़िरत का सवाब और उसकी फजीलत इतनी है कि उसको बयान करना नामुमकिन है। कुरान करीम का पढ़ना अल्लाह ताला का क़ुर्ब बख्शता है, क़ल्ब को इरफान इलाही और ज़िक्रुल्लाह से रोशन करता है और क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की बारगाह में शिफात करेगा। अल्लाह ताला हमें हमेशा कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक दे, आमीन।

बहुत कम मिलती हैं जहां दोनों संगम मौजूद हों। ख़ानदान के अतिबार से भी, नसब के अतिबार से भी, सिलसिले के अतिबार से भी, इल्म और इरफान और विलायत के अतिबार से भी, जिस तरफ से और जिस अंदाज से भी आप सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें, आपको भरपूर शख्सियत नज़र आती है और ऐसी जामियुस्सिफ़ात शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी बनाई कि कायनात विलायत में आपको ये मकाम हासिल हुआ कि औलिया इकराम बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े अलकाबात और बड़े बड़े मकाम इल्म और इरफान की दुनिया में हासिल हुए, लेकिन तीन अल्लाह के वली कायनात विलायत में ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम महबूबियत अता फ़रमाया। मुस्तफ़ा जाने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब, प्यारे महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तीन अल्लाह के वली ऐसे हुए जिनको मकाम महबूबियत अता फ़रमाया और ये लकब उनको मिला और इस लकब से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। पहले वली जिनको महबूबियत का मकाम और दर्जा अता हुआ उनको कहते हैं हज़रत सैयदना महबूब सुबहानी, गौस समदानी, किंदील नूरानी, सैयदना गौसुल आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला। दूसरे वली कामिल आपके दादा पीर, परदादा पीर हज़रत सैयदना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रदियल्लाहु तआला। और तीसरे महबूब हज़रत सैयदना महबूब यजदानी गौसुल आलम हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु तबारक व तआला की ज़ाती गिरामी हैं। हमने तज़किरा पीछे ये किया था कि आप जब दिल्ली से जब आप वहाँ से तशरीफ़ लाए समनान से, तो 70 मरतबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपके पीर मुर्शिद हज़रत शेखुल मशाइख शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन पीर कामिल हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी रदियल्लाहु ताला को तशरीफ़ लाएं और उनको बशारत अता फ़रमाई कि बुलंद परवाज़ शहवाज़ विलायत सिमनान से चला है, जमी मशाइख वक्त अपने अपने दामन फैलाए हुए हैं, लेकिन मैं उनको तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, उनकी तरबियत में दरेग़ ना करना और उनकी तरबियत करना। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु ताला की हज़रत शेख जलालुद्दीन अलमुकल्लब मखदूम जहाँ गश्त व दिगर आरिफीन उलामा मशाइख से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ और वहाँ से शर्फ़ हासिल करते हुए मुलाकात करते हुए दिल्ली तशरीफ़ लाए। यहाँ फिरोज़ शाह तुगलक जो उस वक्त का सुल्तान था, उसकी सल्तनत थी और उसकी हुकूमत, और वहाँ से जब आप चले तो बिहार शरीफ का आपने सफ़र किया। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु ताला हज़रत सैयदना शेख शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जनाजे की नमाज आपने पढ़ाई। हज़रत शेख शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये औलिया इकराम का मकाम और मर्तबा है, ये उनकी शान और अज़मत है। आप बताइए आज कल तो लोग अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर निशान लगाते हैं और उनके इल्म गैब पर जो उंगलियां उठाने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए ये अल्लाह के वलियों का इल्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये रूहानी इल्म अता फरमाया। ना कोई सैटेलाइट है, ना कैमरा है, ना मोबाइल फ़ोन है, ना इंटरनेट का ज़माना है। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु ताला चले हैं और हज़रत सैयदना शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह बिहार शरीफ में अपने तमाम अपने अकाबिर और अपने तमाम करीबी अपने तमाम जो मुरीदीन थे और आपके खुलाफा और आपके शागिर थे, हज़रत सैयदना शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनको जमा किया। और ये बात याद रहे और जहन नशीन रहे कि हज़रत सैयदना शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई पहाड़ी पर बैठने वाले बाबा का नाम नहीं है, कोई चलते फिरते पीर फ़कीर का नाम नहीं है, या काले पीले जुब्बे पहन करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने वाले पीर का नाम नहीं है। हज़रत सैयदना याही शरफुद्दीन याहिया मुनीर रहमतुल्लाह अलैह आलिम रब्बानी वहीदुल असर मुहक्किक़ दौरा और अपने वक्त के सबसे बड़े वली कामिल और रूहानी आरिफ बिल्लाह का नाम है और साहिब तसनीफ़ हैं, आपकी किताबें हैं और आप बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे। हज़रत सैयदना शरफुद्दीन याहिया मुनीरी अपनी खानकाह में जमा फरमाते हैं और अपनी

आखिरी वसीयतें फरमाते हैं और उनमें ये भी फरमाते हैं कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जो सही उन नसब सैयद हो और जिसका नसब हजरत मौलाए कायनात तक मिलता हो और जो कुरान पाक के साथ किरातों का हाफिज़ कुरान भी हो, जिसके अंदर ये खूबियाँ हों। आपने फरमाया जब मेरा नमाज जनाजा की तैयारी हो तो ध्यान रखना जिसकी शक्ल ऐसी होगी, इतना नूरानी चेहरा होगा, बादशाहत को ठुकरा करके आ रहा होगा और विलायत की आला मंजिलों पर फ़ाइज़ुल मराम होगा, ये शक्ल होगी, इस तरह की जुल्फ़े होंगी, इस तरह की आंखें होंगी, ये क्वालिटी उनके अंदर होगी, उनसे मेरी नमाज जनाजा पढ़वाना और वो मेरी नमाज जनाजा की इमामत फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग हैरान और परेशान हैं कि हज़रत कैसे बता रहे हैं, हज़रत किसकी निशानदही फरमा रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह वालों का इल्म है और ये हज़रत सैयदना शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह अली का इल्म बता रहा है कि जब ग़ुलामों का ये आलम है तो उनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के इल्म का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब खुद्दाम का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। वो लिहाजा इंतकाल हो गया, आपका सफ़र जारी व सारी है और आप करीब पहुँचने वाले हैं। लोगों ने नमाज जनाजा की तैयारी कराई और कफन दफन इंतज़ाम हुआ, आपको गुस्ल दिया गया और कफन पहनाकर जनाजा गाह में लिटा दिया गया। इंतज़ार हो रहा है, किस बात का इंतज़ार हो रहा है? सफ़े दुरुस्त कर ली जाए, नमाज पढ़ी जाएगी, आपके मुरीद ख़ास और खलीफा ख़ास आगे बढ़े, आपकी वसीयत पढ़कर सुनाई। लोग हैरान और परेशान हैं कि कब तक इंतज़ार किया जाए, लेकिन शेख की वसीयत है, अमल करना ज़रूरी है। इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, इधर कदम आगे उठते चले जा रहे हैं, सफ़र की सरहदें कम होती जा रही हैं, ज़मीन के तनावे सिमटते जा रहे हैं और दूरों दराज से एक काफ़िला, छोटा सा काफ़िला नज़र आ रहा है, कुछ मुसाफिर नज़र आ रहे हैं। लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ कर के देखा तो जैसा शेख ने बताया था वैसा ही चेहरा था, जैसे शेख ने बताई थी वैसा ही हुलिया था, जैसे शेख ने बताया था वैसे ही जुल्फ़े थी। नाम पूछा गया तो बताया मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, नसब पूछा गया तो मेरा नसब हुसैनी सादात में से हैं, और पूछा गया तो बताया मैं समनान का सुल्तान था, उसको ठोकर मार कर आ रहा हूँ, कहाँ का सफ़र है, मैं पंडव शरीफ जा रहा हूँ। पूछा गया कुरान पाक की सात किरातों के हाफिज़ हैं, 14 साल की उम्र शरीफ में आपने जो है तमाम उलूम मुतदावला को अपने सीने में महफूज कर लिया। कहा शेख याहिया मुनीरी ने वसीयत फरमाई थी, सरकार सब लोग खड़े हुए हैं, आपका इंतज़ार है, आप शेख की नमाज जनाजा पढ़ाएं। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व तआला ने तशरीफ लाए, सवारी से उतरे और मुसल्ला इमामत पर तशरीफ़ फरमा हुए और आपने हजरत सैयदना शेख शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई, ये शरफ़ आपको हासिल हुआ। उसके बाद आप पंडव शरीफ तशरीफ़ ले गए, आपके शेख हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका बहुत ज़ोर और शोर के साथ इस्तकबाल फरमाया, बड़ी मोहब्बतें फरमाईं और शेख कामिल ने जो अपने यहाँ अपनी खानकाह में बड़े अजीम और शान तरीके से आपका इस्तकबाल किया। ये कौन है? ये वो अजीम और शान शख्सियत है हज़रत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन्होंने इस्तकबाल फरमाया और अपनी खानकाह में रखा और आपको मुरीद फरमाया। हज़रत खिज़्र अलैहि सलाम ने आपको बशारत फरमाई और आपने मुरीद फरमाया। एक दिन अपने पीर की खिदमत के लिए तैयार हो रहे थे, हज़रत मुर्शिद गिरामी का खानकाह के उस कमरे के करीब से गुज़र हुआ, मुरीद समझ गया कि शेख आ रहे हैं। फरमाया किस काम में मशगूल हो? क्या हुजूर कमर बांध रहा हूँ और इबादत और रियाजत के लिए। मुर्शिद ने फरमाया अगर बांधना है तो दरमियान में कोई चीज़ बाकी ना रहे, मजबूती से बांधना। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बात आपको समझ में आ गई कि शेख ये फरमाना चाह रहे हैं कि इतनी ज़ोर से अपना लंगोट बांधना कि अब शादी की ख्वाहिश ना रहे, तुम्हें शादी नहीं करना है। आपके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मैं शादी नहीं करूँगा तो फिर मैं उसके बाद में मेरा जानशीन कौन होगा, मेरे सिलसिले को आगे कौन बढ़ाएगा? तो मुर्शिद गिरामी अपनी खानकाह
में तशरीफ़ फरमा हुए, मुराकबा फरमाया और मुराकबा फरमाने के बाद आपने अपनी पेशानी को उठाया।

0: और फरमाया मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से फरमाया, मुबारक हो, हमने तुमको फरजंदे मानवी की खुशखबरी सुनाई है। वो कौन है? कुतबतुल आफाक, उम्दतुल इराक, हज़रत सैयदना अब्दुर्रज़ाक हसनी हुसैनी आपके जानशीन होंगे और एक बड़ा ख़ानदान वजूद में आएगा जो हिंदुस्तान और बेरुन हिंदुस्तान सिलसिले अशरफिया को दुनिया में परवान चढ़ाएगा और दुनिया के गोशे गोशे तक पहुँचाएगा। यह आपके मुर्शिद अलाउल हक पंडवी की दुआ का नतीजा है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपके फ़र्जंद मानवी हज़रत सैयदना नूरुल इरफान हज़रत सैयदना अब्दुर्रज़ाक से जो सिलसिला चला आज पूरी दुनिया में उसकी शाखें मौजूद हैं और दुनिया के हर खित्ते और गोशे में सिलसिले अशरफिया का फैज़ान मौजूद है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उलामा और अकाबिर उस सिलसिले की और उस ख़ानदान में खिदमत कर रहे हैं। और आपकी बहुत बड़ी करामत ये है कि आपके मसनद पर आज तक कोई भी गैर आलिम मुतमक्किन नहीं हुआ। अंदाज़ा करें और खानका हैं जहाँ इल्म का सवाल नहीं होता, बड़ा बेटा देखा तो जानशीन बना दिया, लेकिन सिलसिले अशरफिया और खानकाह अशरफिया और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दरबार की एक खसूसियत है कि 700 तकरीबन 600 कुछ साल का पीरियड, 640 साल का पीरियड गुज़र चुका, कितने उलमा उनकी मसनत पर बैठे और ये सिलसिला अल्लाह के फजल से जारी और सारी रहेगा। ये हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दुआ भी है और आपके मुर्शिद गिरामी की दुआ भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आप सबको हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के फैज़ान से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौजूद सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान के ज़रिए आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। आइए बढ़ते हैं एक ऐलान की तरफ। सनीचर 25 जुलाई सुबह 10 बजे शान रसूल मस्जिद लागी लॉज पोर्ट लुइस में आलिमा सैयदा नाज़ा फ़ातिमा की सरपरस्ती में 11वीं शरीफ के ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। और इसी के साथ मौज़ सामीन वक्त कम है, आइए बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। जी हाँ, दस्त मोहम्मद के अम्मी अब्बू भाई और दादी ने उनके लिए बहुत सारी दुआएं और प्यार भेजा है। इसके अलावा हॉलीवुड से शबनम, नुशरीन, अजमल, अनीस, युशरा जो कि इंशाल्लाह ताला उम्र पर जा रहे हैं, उनके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनके उम्र में आसानियाँ अता फरमाए। और इन्होंने दुआएं भेजी हैं, जी हाँ, दुआ शिफा की गुजारिश की है नाहिनी ताहिरा खुदा दीन के लिए। और इसाले सवाब की गुजारिश की गई है मरहूम वालिद अरीफ हुलाश के लिए जिनकी आज बरसी है। उनकी, जी हाँ, उनकी बेटी वाहिदा जीवन कातखबोन से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और इसाले सवाब की गुजारिश की गई है मरहूम अलहाज इमाम जमशीद इसमदो के लिए उनके बेटे मुजम्मिल ने। और एक और इसाले सवाब की गुजारिश है जी हाँ नसरीन और फैमिली जो कि कौंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी वालिदा और वालिद के लिए इसाले सवाब की गुजारिश की है।

मौज़े सामीन, दुआ नज़र तो नहीं आती मगर उसमें इतनी ताकत होती है कि इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाती है। दिल से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है, अक्सर दुआ ज़ुबान पर आने से पहले ही कबूल हो जाती है। बस हमेशा दिल हमारा साफ होना चाहिए। ऐ पाक परवरदिगार, आज के दिन जितने हाथ भी तेरी बारगाह में उठे हैं, तू उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामेईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग,
2: स्वर तरंग। संगीत प्रेमी श्रोतनो नमस्कार, सुस्वागत। मैं आशा करते कि अपन ठीक हाथ मजे तहत एंड चुनी करता हाथ ऑन MBC रेडियो क्या क्षण अर्ध्यता तासा सा कार्यक्रम सुरू होना रही तुम्हारा सगल्यांच्या मनोरंजना साठी एक वाजता पर्यंत रसिक होने हमीस प्रमाणे आमची साथ आपण नक्कीच द्या। तर शुभारंभ करूया आजचा आपला स्वरतरंग कार्यक्रम। मी हमीस प्रमाणे बाप्पाचा जय जयकार करू।

0: काशीराम से बचाओ, अरे विजय से बचाओ, अरे कोली लोगों से बचाओ, मेरी पार्टनर।
1: तरसिको कई शंकना क्या पन्या अर्ध्याता सा कार्यक्रम पूरी पूर आनंद की तहत तरसिको एक्जैक्टली 10 मिनट राहिलेला कार्यक्रम संपण्यासाठी तर आमची साता पंडित रहा 1 वाजता पर्यंत।

आपकी पसंद। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर आज बुधवार 22 जुलाई 2026 से। चलिए इस खूबसूरत कार्यक्रम को आप लोग साथ दीजिए। और यहाँ पर नंबर है 4028085402808 और मैसेजेस आप भेज सकते हैं 5251705। आज का पहला गाना सुनते हैं किशोरा की आवाज़ में।

आपकी पसंद। आपकी पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं और यहाँ पर अगला गाना नजराना फिल्म से लिया गया और ये गाना खासकर हम चला रहे हैं रेहाना जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम नोटरडेम और गाना खासकर वो मांग रही है माला फाउडा और सुरेखा के लिए। चलिए गाना चल पड़ा।

0: आपकी पसंद
1: तो 2:40 हुए हैं और यहाँ पर अगला गाना हम चलाएंगे। ईश्वर जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम नोवेल फ्रांस। और वैसे गाना तो जहर फिल्म से लिया गया, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जी हाँ, श्रेया घोषाल की आवाज़ में। चलिए सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आपकी पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं और यहाँ पर गाना खास कर हम चलाने जा रहे हैं विश्वानी डुमंज के लिए, जो हमें सुन रही है फ्रॉम वाकवा। और गाना खास कर मांग रही है बहन इंदिरा शारहा, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए। कश्मीर की गली फिल्म से लिया गया, जी नहीं, यहाँ पर फिल्म का नाम है दिल ही तो है। दिल ही तो है फिल्म अभिजीत की आवाज़ में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो अभिजीत है वो इस सैटरडे को कंसर्ट दे रहा है, तो चलिए ग्रैब योर टिकट और इस प्रोग्राम को आप लोग मिस ना करें।

2:54 होने को है, श्रोताओं बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं बंधु परिवार फ्रॉम ट्रियोले और गाना वो लोग मांग रहे हैं फिल्म खून भरी मांग से लिया गया। जी हाँ, नितिन मुकेश साधना सरगम की आवाज़ों में हम सुनेंगे और इसी गीत के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद। और साथ ही साथ में ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं या फिर इस समय काम कर रहे हैं। तो आप लोग काम कर रहे हैं तो बस हौसला रखिए और खूबसूरत गाने का मजा लीजिए। चलिए अगला गाना सुनते हैं और इस गाने का

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन एक्ट की धारा 3(9) के तहत आज सत्य व्यास फोगू ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नए अध्यक्ष की हैसियत से गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने स्टेट हाउस रेजी में शपथ ली है। प्रधानमंत्री और विपक्ष नेता की सलाह पर उनकी नियुक्ति की गई। उनकी कार्यावधि 4 सालों की रहेगी। मोजाम्बिक से बैलों के आयात के सिलसिले में मिशन अधिकारी दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला के गहरे अध्ययन के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। एक सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत गए शनिवार को बैल मॉरिशस पहुंचे। उन्हें लाशुमिया में निगरानी में रखा गया। कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान कृषि उद्योग मंत्री डॉ अरविंद बुलेल ने दोबारा पुष्टि की कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशुओं की भलाई के वास्ते स्वास्थ्य कदमों पर बारीकी से अमल किया जा रहा है। मुसन्निफ यानी लेखक मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने प्रेमचंद दिवस मनाया। मौके पर सेयश कोंस्टेंटे थिएटर वाकवा में मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी बूढ़ी काकी को पेश किया गया। अवसर पर प्रेमचंद के परस्तार और हिंदी प्रेमी उपस्थित थे। विदेश में चिली में मूसलाधार बारिश की वजह से कम अज कम 13 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय इलाके में जोरदार सैलाब भी उतर आया है। सड़कों को बंद किया गया। कई घर तबाहकुन हैं। राष्ट्रपति जोसे एंटोनियो कास्ते ने प्रभावित इलाकों में आपात स्थिति की घोषणा की है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोदर्ट में 38 साल के 38 ईयर्स ओल्ड श्री नितिन चौधरी जो नीतीश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनके पिता धर्मानंद चुडकुरी के घर रॉयल रोड रिवियाजू पोस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगाबू रिवियाजू पोस्ट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

3:03 हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। आपके पसंद प्रोग्राम आपके नाम और नंबर है 4028085-4028085। बहुत धन्यवाद आपके फ़ोन कॉल के लिए। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं अनीता जी। जी हाँ, गाना वो मांग रही हैं करुणा अमृता कविता, और वो रहती हैं मॉडल बिया। चलिए गाना सुनते हैं, प्रोफेसर प्यारे राव फिल्म से लिया गया।

जी हाँ, इशारों इशारों। और ये गाना खासकर शिवरानी जी के लिए जो हमें सुन रही है गौवा से, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। ये गाना आप मांग रही हैं एक खास दोस्त के।

बोल मेरे तकदीर में क्या है। जी हाँ, हम सफ़र ये गाना खास कर हम चला रहे हैं माया जी जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम मोताई ब्लॉश। जी हाँ, फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता और गाना उनके लिए और उनके सभी परिवार के लिए।

3:18 हुए और यहाँ पर अगला गाना हम चलाएंगे फिल्म मेरे हम सफ़र. क्या बात है, मेरे हम सफ़र फिल्म से लिया गया. चलिए सुनते हैं ये गाना, और ख़ास कर गाना हम चला रहे हैं शेलू जी जो रहती हैं इक्वायो. गाना खासकर वो मांग रही है अपने सभी दोस्तों के लिए और पेंटाया फैमिली के लिए.

की पसंद। लता जी और उनकी मधुर आवाज। 3:23 हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रही है जी हाँ धनी जी फ्रॉम वाशेरी, और गाना खास कर वो मांग रहे हैं यश और हिमिश के लिए, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन फिल्म का नाम है। अभी इसी फिल्म का एक गाना हम सुनेंगे, जाने बहार हुस्न तेरा बस बेशुमार है।

चलिए आपके पसंद प्रोग्राम, और यहाँ पर हमें सुन रही है बसंती जी फ्रॉम बोबासा। गाना खास कर वो मांग रही है अपने लिए और हमारे सभी लिसनर्स के लिए, उमराव जान फिल्म से लिया गया। चलिए लता जी, आशा जी की आवाज़ में इन आँखों की मस्ती।

की पसंद। आपकी पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं और यहाँ पर अगला गाना दोस्ती फिल्म से दिया गया देव और माहिन जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम मेबर्ग। काफ़ी समय से वो लोग दोस्त हैं और इस दोस्ती के नाम पर हम गाना चला रहे हैं।

चलिए खास गाना हम चला रहे हैं अनीता जी के लिए जो हमें सुन रही है इस समय, गाना उनके लिए और उनके परिवार के लिए।

3:51 हुए हैं दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। और ये गाना जाता है शकुंतला के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम लॉन्ग माउंटेन, गाना उनके लिए और उनके परिवार के लिए। और इसी के साथ मैं उषा आप लोगों से विदा लेती हूँ। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ शाम आप सबको।

आज के गन्ना के खेती कार्यक्रम में आप सब खेतीहर लोगन के स्वागत बा। ई प्रोग्राम आप लोग के भोलानाथ मिस्त्री प्रस्तुत करता मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी के तरफ से। आज के गन्ने के खेती कार्यक्रम में हमनी बात करब जा गन्ने के फसल के अच्छे प्रथाएं पर, ताकि हमनी जोन गन्ना कारखाना इस साल भेजब जा वो गन्ना अच्छा क्वालिटी के रही। खेतीहर लोगन के सूचित करत हई कि इस साल के फसल यानी कि लाकूप वैवेंसिस आलतीओ कारखाना में ले 23 जैन, तेरा में ले 29 जैन और ओमनिकेन में ले 13 जुएत से आरंभ हो गलबा। इस साल के कटनी के लिए हमनी एगो 225,000 टन चीनी के पैदावार के उपेक्षा करत हैं जा। त प्रिय श्रोतागण, इ पैदावार पाए के लिए हमनी के चाही अच्छा प्रथाएं यानी के बेस्ट प्रैक्टिस अपनाए के। एगो अच्छा पैदावार के लिए खाद यानी कि फर्टिलाइजर के इस्तेमाल चाही करे के, वो भी समय के अनुसार, चाहेला अपन गन्ना के खेत में डाल देवे के। अगर आप देर से खाद डलब गन्ना के खेत में तो बहुत संभव है कि वो गन्ना कटनी के लिए समय अनुसार तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो में चीनी के बदले सिर्फ पानी रही। तो बहुत ज़रूरी है कि खाद कम से कम 7 महीना कटनी से पहले चाहे खेत में डाल देवे के। एगो दूसरा चीज़ जो बहुत खास है, वो है आपके खेत चाहेला साफ सुथरा रहे के। खेत साफ सुथरा रही तो कटनी में आसानी हुवेला और गन्ना के साथ बुरा घास भी कारखाना नहीं जाला। और एगो खास बात है कि तू अपन रास्ता के भी साफ सुथरा चाहेला रखे के, और अगर बारिश के दौरान वो खराब हो गलबा तो चाही ओकरा समय अनुसार मरम्मत कर देवे के, ताकि कटनी के समय कोई भी कठिनाई नहीं होई। अगर तू फसल शुरू कर देले हुआ और ट्रक यानी कि कामियों गन्ना नहीं सकता कारखाना पहुंचाई, तो गन्ना खेत में सूखी और फेमौती भी हुई। ऐसन में तोहर गन्ना नुकसान होवेला, गन्ना के वजन कम होवेला और रिसेस भी कम हो जाला। एगो बहुत ज़रूरी कार्य है, जब गन्ना कटल जाला तो ओकरा चाही जल्द से जल्द कारखाना भेज देवे के, क्योंकि गन्ना जैसे कटल तो उ सुखाई लगेला। गन्ना के अच्छा फसल खातिर एगो महत्वपूर्ण फैक्टर जो चाही ध्यान में देवे के, उ है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के मतलब है गन्ना में जब सबसे ज़्यादा चीनी रहेला और गन्ने के रिसेस भी ज़्यादा होवेला। रिसेस के मतलब है कितना प्रतिशत चीनी यानी कि सुक्रोज गन्ने के रस में मौजूद बा। समय रूप से एगो रेपूस के खेत चाही 12 महीना के बाद काटे के, और एगो व्यर्ज के खेत चाही कम से कम 14 महीना के बाद काटे के। एगो पेचित सेजों के खेत जोन रोपल बा जुलाई अगस्त या सितंबर महीना में, ओकरा चाही 14 महीना के बाद काटे के। और एगो घन सेजों के रोपाई के खेत बा तो ऊ चाहेला 16 से 18 महीना पर काटे के। अगर गन्ना के मैच्योरिटी उ पिछले साल के कटाई के तारीख पर ध्यान देब तो तोरा जस्ती तुनाज और एक्सट्रैक्शन से लाभ होई। गन्ना के क्वालिटी बढ़ाए खातिर एगो और अहम फैक्टर है, ऊ है वायती। अपन लोगन के जरूरी बा जाने के गन्ना के अनेक वायते बा जोन अलग अलग समय में फसल के लिए तैयार होवेला। कोनो वायते ढेर फूल देवेला और कोनो वायते में फूल कम रहेला। कुछ वायते बा जोन के शुरू में तैयार होवेला, जैसे कि एम सेकंडू ब 28 बा, एम 13-92 ब 00 बा, और या तो एम 11-76 ब 77 बा। जोन वायते शुरू में तैयार हो जाला जून जुलाई के महीना में, ओकरा चाही कटनी के शुरुआत में काटे के। अगर बखत में नहीं कटब तो ऊ वायतेवा दीपासी हो जाला, ओकर वजन

यानी कि तुनाज और रिसेस बेसे हो जाला। कुछ वायति ऐसा बा जोन अगस्त और सितंबर महीना में तैयार होवेला, जैसे कि वायति एम कातुह 186, एम 335 266 और एम 1999 बुआ 99। इस समय में ये तीन गो वायति वन के रिसेस अच्छा रहेला। अच्छा बा जाने के कि कुछ वायति बा जैसे एस 176 एस 179 जोन की कटनी अंत समय में तैयार हुएला, खासकर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीना में। ई वायति के रिसेस इस समय में अधिक रहेला और समय से पहले काट देब तोहरा कम चीनी मिली, खास करके जोन खेतीहर लोगन के तेज से पागे है। तो तोहरा सलाह बा कि वायति के मैच्योरिटी के पालन करे के, ताकि तोहरा अधिक से अधिक एक्सट्रैक्शन प्राप्त हुई। खेतीहर लोगन, अब एगो और बहुत अहम विषय पर चर्चा करब जा, गन्ने के खेत में आग। खेतीहर लोगन नहीं चाहें अपन खेत में आग डाले के, बिना सोच विचार कर ले, बिना प्रिकॉशन ले ले एगो खेत जलेब तो एकर नतीजा बहुत गंभीर हो सकी। एगो कानूनी अपराध है, तोहर खेत के साथ साथ उ आसपास के खेत भी जल जाला। एकर अलावा गन्ने के खेत के आग एगो बहुत बड़ा खतरा है, आसपास के घर सकी जल जाए और जान भी खतरा में हो सकी, सड़क दुर्घटना भी सकी होई, काहे कि धुआं से रास्ता साफ नहीं दिखेला, हवा के प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन हुएला और सांस लेवे की कठिनाई होला। इस सब के अलावा खेत में जो जीव जंतु है उस सब भी बुरा असर होवेला। एगो खेत जब जल जाला तो ओकर माचिया ऑर्गेनिक भी जल जाला। माचिया ऑर्गेनिक जैसे कि सूखल लपाई माटी में डिकम्पोजे होके माटी के फर्टिलिटी बढ़ावेला और लिमिजिते प्रिजर्वे करेला। एकर अलावा ढेर जगह में खेतीहर लोगन के बहुत कठिनाई होला जरल गन्ना के फसल जल्दी से करे के, खास में जब काम करवा के कमी रहेला। गन्ना जब जड़ जाला तो जल्दी से सूखेला और गाते भी हुएला, वो गन्ना के चाहे जल्द से जल्द कारखाना भेजे के। ऐसा परिस्थिति में अक्सर जोन खेत फसल के लिए तैयार नहीं होलवा, यानी कि 12 महीना से कम बा, वो भी जल जाला। अच्छा बा तो लोग के याद दिलावे के, जब गन्ना के पियती श्वसन दूस देखे से कम रहेला तो कारखाना वो गन्ना के स्वीकार नहीं करी। तोहर सलाह बा जरल गन्ना के 2 या 3 दिन में भेज देवे के, देर करला से जरल गन्ना फेमौते हुएला और कारखाना के काम में रुकावट आनेला। अब एगो और अहम विषय पर चर्चा करब जा, माचिया एतरांजे। गन्ना में माचिया एतरांजे के मतलब है गन्ना के साथ साथ जोन बाहर के सामान कारखाना पहुँचाता, जैसे कि लपाई सापो जोन बुदबलों बोलीला सा गासिन बाबा और पत्थर भी। कानूनी तौर पर गन्ना साफ तब कहलाला जब ई सब माचिया एतरांजे वा नहीं रहेला। कारखाना सिर्फ 12% तक माचिया एतरांजे गन्ना के स्वीकार करेला। माचिया एतरांजे चीनी के पैदावार में नुकसान पहुँचावेला, चीनी के एक्सट्रैक्शन कम होवेला, काहे कि चीनी बगास और मिलास में गंवा जाला। माचिया एतरांजे चीनी के क्वालिटी में भी बुरा असर करेला। तो हमनी के चाहे का चाहेला करेगी, चाहे साफ गन्ना और कम माचिया एतरांजे कारखाना भेजे के, ये हमनी के जिम्मेदारी है। अब चली जा बुदबलों यानी के सापो पर थोड़ा खुलासा करे। बुदबलों यानी के सापो एगो गन्ना के ऊपर होला भाग है रहेला, एकर में बिल्कुल चीनी नहीं है, सिर्फ पानी और बगास है। गन्ना के नीचे के गुल्ली में सबसे अधिक चीनी रहेला। जब ढेर बुदबलों गन्ना के साथ दलब तो एक्सट्रैक्शन पर बुरा असर करेला और तोहरा पड़ेला थ्रांसपो और मजदूर के ज़्यादा पैसा देवे के। तो माचिया एतरांजे से नुकसान बा काहे कि तोहरा चीनी कम मिलेला और खर्चा बढ़ेला। जैसे जाने लगा गन्ना के नीचे के गुल्ली में सबसे अधिक

0: अधिक चीनी मिलेला तो तोहरा सलाबा जहाँ ले सकब गन्ना के नीचे से काटे के ई प्रथा से गन्ना फिर से अच्छा भी उगेला। और एगो अहम बात है जोन गन्ना के जोन बेल से लादी ला जा तो उ सजमो सावधानी से नहीं करब तो ओकर में पत्थर भी साथ चल जाला। ई पत्थर कारखाना के मशीन के बहुत गंभीर नुकसान पहुँचावेला और कारखाना के काम में रुकावट करेला। कारखाना कभी दो तीन दिन से ज़्यादा बंद हो जाला मरम्मत के लिए। एकर परिणाम ई होला कि कारखाना गन्ना के कोटा कम कर देवेला और खेतिहर लोगन के गन्ना खेत में सुखाला। दुर्भाग्य से जोन खेतिहर के खेत ई समय जल जला तो ओकरा ज़्यादा नुकसान होवेला। तो खेतिहर लोगन के चाही गन्ना के लदाई के बखत खेत में देख रेख करे के। प्रिय श्रोतागण याद करिए तोहरा गन्ना के कीमत ओकर चीनी यानी कि एक्सट्रैक्शन पर अधिक होवेला, ओकर वजन यानी कि तुनाज पर नहीं होला। जब कंट्रोल बोर्ड सैंपलिंग द्वारा टेस्ट करेला और लपाई ज़्यादा रहेला तो तोहर रिसेस और एक्सट्रैक्शन कम हो जाला। ऐसन टेस्ट से तोहरा फायदा नहीं हुई। कौन काम के गन्ना की तुनाज जस्ती रही जब तोहर चीनी कम रही। याद करिए कि कटाई लदाई और ट्रांसपो तुनाज से पेये करेला। खेतीहर लोगन एगो संक्षेप यानी कि रेजिमे रूप में तोहरा याद दिलावेला कि साफ गन्ना कारखाना भेजला से देख तोहरा कौन कौन लवताज होवेला। गन्ना के कटाई सजमो और ट्रांसपो के खर्चा कम होला, रिसेस और एक्सट्रैक्शन बढ़ेला और चीनी के पैदावार भी बढ़ेला और आखिर में तोहर फायदा प्रॉफिट जोन बोली ला जा वो भी बढ़ेला। खेतीहर लोगन आज के कार्यक्रम में हमने गन्ने के फसल के अच्छी प्रथाएं पर खुलासा दे लीजा जोन से गन्ना और चीनी के उत्पादन यानी कि प्रोजेक्शन ज़्यादा हुई। एकर मतलब है खेतीहर लोगन के जरूरी बा साफ गन्ना कारखाना भेजे के जोन में बाहर के माचे इतरोंजे जैसे कि बोली ला जा बुदब्लों लापाई बाबा पत्थर इत्यादि नहीं चाहिए भेजे के। ताज़ा ताज़ा काटल गन्ना चाहिए भेजे के जोन वो ये ते तैयार हो गल बा ओकर फसल करे के। गन्ना के नीचे के गुली से काटे के जरल गन्ना के भर सक दो तीन दिन में कारखाना भेजे के। खेतीहर लोगन एगो बात तू हमेशा याद रखिए, गन्ना में जितनी ही चीनी उतना ही ज़्यादा तोहर आमदनी। प्रिय श्रोतागण मॉरिशस केन इंडस्ट्री के तरफ से गन्ना के खेती कार्यक्रम अब समाप्त होता। हमने के आशा बा कि तू इस कार्यक्रम से पूरा लाभ उठाइब। अगर तोरा ज़्यादा जानकारी के ज़रूरत हुई तो तू अपन घर के नज़दीक के फार्मर सर्विस सेंटर में हमने के ऑफिशिये से संपर्क करिए। तोहलोग के ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद और आप सबको प्रस्तुतकर्ता भोलानाथ मिस्त्री का नमस्कार।
1: MBC रेडियो वजह मुस्कुराने की।

0: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 5:15 बजे हैं और आपके लिए प्रोग्राम एकदम है तैयार।
1: अंताक्षरी, अंताक्षरी

जान से प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आपसे एक और मुलाकात के लिए तो हम कब से थे बेताब। बुधवार की है ये शाम, ऊपर से अंताक्षरी प्रोग्राम, बस करना है आप ही लोगों के नाम। आपकी सेवा में उपस्थित है आप ही का सेवक रोशन, लेकर आप ही का साप्ताहिक कार्यक्रम अंताक्षरी। दूर करने आए हैं आप लोगों की बेकरारी। और आज उषा जी यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, तो उनकी ओर से हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए, आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक होने वाला है। अभी अभी आप लोगों ने सुना एक बहुत ही बढ़िया गाना फिल्म जिंदगी न मिलोगी दोबारा, यानी एक स्पैनिश सॉन्ग। स्पेन की जीत हुई थी वर्ल्ड कप के दौरान फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ। क्या मुकाबला हुआ था, तो चलिए एक हसीन मुकाबला दो श्रोताओं के बीच में ऑन एयर, यानी हम लाइन खोलेंगे दो श्रोताओं के लिए और आपस में आप लोग मुकाबला करेंगे, एक हसीन सा मुकाबला जैसे हम कहते हैं। तो चलिए पहला श्रोता, हम उनका स्वागत करेंगे। नंबर वही है 4028085। अगर आप लोग मैसेज भी भेजना चाहते हैं तो 5251705 व्हाट्सएप नंबर है, बेझिझक अपना संदेश व्हाट्सएप के थ्रू भेजिएगा। तो चलिए आपके लिए हम लाएंगे यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त विषय, यानी एक हसीन सा मुकाबला दो श्रोताओं के बीच 4028085। और अभी के लिए ये छोटा सा नजराना आप लोगों के लिए।

0: हाँ जी, हम स्वागत करेंगे पहले श्रोता का। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते श्यामा जी फ्रॉम विल में, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं श्यामा जी। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे श्रोता की ओर। हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा जी।
0: नमस्ते जीवंती जी।
2: और बेटी की भी नमस्ते।
0: हाँ जी, आज तो वो नहीं आई है लेकिन आपको सुन रही होंगी वो।
2: नहीं ये लेकिन हमने के साथ है वो।
0: बिल्कुल, तो चलिए
1: जीवंती जी।
2: नमस्ते बहना जी।
0: हाँ जी, कोई बात नहीं, तो आप दोनों के बीच में छोटा सा खेल होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि श्यामा जी और जीवंती जी आप दोनों के बीच में, तो हम श्यामा जी से शुरुआत करते हैं। ओके श्यामा जी। श्यामा जी नहीं, कोई बात नहीं, एक अक्षर से आपको शुरू करना है और आपके लिए मैं एक छोटा सा टुकड़ा गाऊंगा, जहां पर से समाप्त होता है वहीं से आपको शुरू करना होगा। ओके, तो आप सुनिएगा।

0: है जैसे। स से आपको शुरू करना है श्यामा जी। स से, हाँ जी गाइए स से।
1: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है।

0: हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए श्यामा जी की ओर से बहुत ही सुंदर सा गाना।
1: मुझे तुमसे प्यार,
0: हम जानते हैं कि 100 साल पहले आप लोगों को अंताक्षरी से प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा, है ना?
2: रहेगा। हाँ
0: हाँ जी रहेगा। तो चलिए ग से आपको शुरू करना है जीवंती जी, ग से दूसरा गाना आपको शुरू करना है।
3: मन से नहीं सुना।
0: ग से, ग ग ग ग ग
3: ग,
0: हाँ ग से आपको दूसरा गाना शुरू करना है, आपका पहला गाना लेंगे। बिल्कुल सही।

0: रातें कहीं बीते ना ये दिन,
1: गाता रहे।
2: जी हाँ, आपका दिल गाता रहे जीवंती जी। चलिए, श्यामा जी के पास 10 अंक, जीवंती जी के पास भी 10 अंक। अब हम श्यामा जी की ओर बढ़ेंगे। ओके श्यामा जी।
3: ओके
2: आपने देवानंद साहब का गाना गाया तो जीवंती जी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी देवानंद साहब का ही गाना गाया। तो चलिए श्यामा जी, गाइड फिल्म से लिया गया कोई भी गाना आप गाइए, गाइड फिल्म से। हाँ जी, गाइड फिल्म से जीवंती जी ने गाना गाया, गाता रहे मेरा दिल, तो इसी फिल्म से लिया गया एक और गाना, प्लीज गा दीजिए आप श्यामा जी हम सबों के लिए।
3: वो वही रहमान के हैं।
2: हाँ जी, गाइए प्लीज, गाइए। कहीं बीत न जाए ये समय, आप गाइए श्यामा जी प्लीज।
3: एक दूसरा गाना बोल रहा
2: हूँ। गाइड ही मैं, ये तो पुरानी फिल्म है ना। हाँ जी, तो पुरानी फिल्म तो आपको पता है।
3: हाँ, तो वो गाना मैं
2: कोई बात नहीं,
3: वही रहमान का गाना है तो याद नहीं आ रहा है ना।
2: हाँ,
3: तो उसके गाने न पर से समाप्त हुआ तो न पर से गा दूंगी।
2: नहीं नहीं, ये तो आप तो क्या कह रहे हैं, नियम आप डाल रहे हैं या हम डालेंगे। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आपने कहा वही रहमान न, आज जीने की तमन्ना है।
3: हाँ।
2: ओके गाइए। हो कांटों से
3: खींच के
2: बांध के बंधन बांधे
3: बायल,
2: हाँ। कोई ना रोको दिल की उड़ान को,
3: कोई ना रोको दिल की उड़ान को।
2: अच्छा है, गाइए।
3: आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर
2: मरने का इरादा है। अच्छा है श्यामा जी, आपको मिले हैं 20 अंक, आप बन गई हैं स्टार ऑफ द वीक। बहुत धन्यवाद श्यामा जी, बाय।
3: ओके
2: बाय बाय। तो चलिए जीवंती जी, श्यामा जी तो 2 प्रश्नों का जवाब उन्होंने दे दिया है जीवंती जी। तो चलिए, आपके लिए जो गाना आपको गाना है अभी, देवानंद साहब पर एक और गाना गाइए प्लीज माता जी। हाँ जी, गाइए।
0: छोड़ दिया चल जमाना क्या कहेगा, ओहो छोड़ दिया चल जमाना क्या कहेगा।
2: इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, हो छोड़ दो
0: चल
2: जमाना क्या कहेगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जीवंती जी, आप भी बन गए हैं स्टार ऑफ द वीक, आप तो किसी से कम नहीं निकली हैं। धन्यवाद, ऐसे ही आप भाग लेती रहें। ओके,
3: आपको भी धन्यवाद।
2: धन्यवाद,
3: शुभ
2: रात्रि आपको, आप तो खुश हो गई।
3: नहीं,
2: अब
3: आप भी सुखी रहे।
2: धन्यवाद, बाय बाय। जी हाँ, जीवंती जी तो खुश हो गई और श्यामा जी भी खुश हो गई, दोनों के पास 2-2 गानों के रूप में 2 सही जवाब। हमारे श्रोता तो है बड़ा ही लाजवाब। तो चलिए, अब हम बढ़ेंगे और 2 श्रोताओं की ओर, तो हम उन लोगों का स्वागत करेंगे। पहली आवाज किसकी? हेलो
4: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
2: नमस्ते देवी।

0: जी फ्रॉम हाईलैंड्स।
1: हाँ जी।
0: कैसी हैं आप?
2: हेलो जी।
0: हाँ जी ठीक। तो
2: आप देवी?
0: ओ नीला जी भी हैं। ओ नीला जी,
2: नमस्ते जी।
0: अच्छा देवी जी एक ओर से हाईलैंड्स में और वाकवा से दूसरी ओर नीला जी। हाँ जी, तो अब टक्कर बड़ा ही मजेदार होने वाली है, बड़ी ही मजेदार। तो चलिए देवी जी, आपके लिए पहला प्रश्न। एक छोटा सा टुकड़ा आपके लिए हम गाएंगे।
2: हाँ।
0: जहाँ पर से समाप्त होता हूँ वहीं से आप हाँ। शुरू करना, तब हम नीला जी की ओर बढ़ेंगे। ओके? तो देवी जी आपके लिए पहला प्रश्न इस प्रकार है, आप सुनिए और आपको अक्षर से लेना है। तो हाँ। सुनिए, आप सुनिए।

0: हसे आपको शुरू करना है देवी जी, प्लीज।
1: हसे
0: हसे बिल्कुल।
1: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
0: जी हाँ बिल्कुल, अंताक्षरी के बिना देवी जी कहाँ जी पाएगी।
1: तो हमारी जिंदगी है।
0: हाँ जी बिल्कुल। जी हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बहुत अच्छा, आपके लिए 10 अंक हैं देवी जी। तो चलिए अब हम नीला जी की ओर बढ़ेंगे। नीला जी, हाँ, न से समाप्त हुआ है और आपका नाम भी, और आपका नाम भी न से शुरू होता है और नमस्ते भी न ही से शुरू होता है। तो चलिए न से आपका गाना शुरू होना चाहिए, गाइए।
1: नाना करके प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे। नाना करके,
0: क्या बात है नीला जी, बहुत बढ़िया। एक तरफ देवी जी ने 10 अंक कमा लिए हैं तो दूसरी तरफ नीला जी भी पीछे नहीं है। क्या बात है, बाप रे बाप, आप तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया आप दोनों ने तो।
1: नो, ऐसा मत बोल रहे जी।
0: हाँ जी, तो चलिए ना, जितनी अच्छी तरह से आप दोनों खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी की जीत किसी की हार नहीं होगी। क्या बात है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे देवी जी की ओर। नीला जी ने गाया नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, जब जब फूल खिले फिल्म का गाना है ना। तो देवी जी, इसमें शशि कपूर और नंदा जी थे, तो कोई भी गाना आप शशि कपूर साहब पर गाइए देवी जी। हाँ जी देव गाइए, शशि कपूर साहब पर कोई भी गाना आप गा सकती हैं, बड़ा ही आसान है, बहुत आसान है।
1: हाँ हाँ आसान है लेकिन
0: नहीं आ रहा है क्या?
1: ठीक है, वो आग गले लग जाता।
0: हाँ बिल्कुल, गाइए आग गले लग जा का कोई भी गाना आपने पकड़ लिया, गाइए।
1: हाँ
0: हाँ नहीं आ रहे।
1: हाँ गाइए। मेरे बेटे,
0: क्या बात,
1: सुन मेरा कहना, चाहे दुख हो हंसते ही रहना।
0: क्या बात है, आप तो हंसती रहती है। हाँ जी बहुत, कोई बात नहीं, लेकिन आपने पकड़ लिया देवी जी और आपको मिले हैं 20 अंक। आप भी बन गई हैं स्टॉप द वीक, धन्यवाद आपको। रख दीजिए आप बिल्कुल शौक से। चलिए हम नीला जी की ओर बढ़ेंगे अब। नीला जी, हाँ जी, देवी जी ने गाया आग गले लग जा फिल्म का गाना, जिसमें शशि कपूर साहब और शर्मिला टैगोर जी थे। ओके, तो आपको शर्मिला टैगोर अभिनेत्री पर कोई भी गाना गाना होगा अब।
1: शर्मिला
0: टैगोर जी पर कोई भी गाना, कोई भी गाना आप गाइए जिसमें।
1: ओके सोच रही हूँ।
0: हाँ, शर्मिला टैगोर जी पर कोई भी गाना। कोई भी गाना गा सकती हैं आप शर्मिला टैगोर जी पर। ओ, नहीं याद आया आपको?
1: नहीं आ रही है,
0: लेकिन क्या करें, समय तो समाप्त हो गया। नीला जी, नीला जी, नीला जी, ओ हो हो, ये गाना आपने सुना है, मैं प्यासा तुम सा।

0: जी हाँ, आप श्रोताओं से हमें बेहद बेहद प्यार है और आप पर प्यार बरसाने का मुझे बड़ा ही मन है। तो चलिए हम दो श्रोताओं से मिलते हैं। पहला श्रोता कौन है? हेलो।
1: हेलो रोशन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते मीनाक्षी जी, बोबासे से आप बात कर रही हैं। धन्यवाद, आप यहाँ पर आ गई।
1: थैंक यू।
0: चलिए दूसरी लाइन पर कौन है? हेलो
2: रोशन जी को और पूरे परिवार को, मीनाक्षी जी को, आशा जी।
1: नमस्ते आशा जी।
0: नमस्ते आशा जी, क्या बात है। आज तो एक तरफ देवी जी थी तो दूसरी तरफ नीरा जी, अब आशा जी और मीनाक्षी जी के बीच में टकरार, क्या बात है। रे बाप रे बाप, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
1: किस्मत पर हाँ, भाग्य है,
0: भाग्य की बात पर है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम बढ़ेंगे मीनाक्षी जी की ओर। ओके मीनाक्षी जी, आपके लिए एक अक्षर है, आप जरा गौर से ये गाना सुनिए। जहाँ पर समाप्त होता है वहीं से आपको शुरुआत करनी होगी। ओके ओके

0: ख से मीनाक्षी जी को शुरू करना होगा। ख से। ओके।
1: ख
0: ख
1: ख।
0: हाँ जी, ख से गाइए।
1: कौन?
0: नहीं, ये तो क है। ख से। ख।
1: कब?
0: नहीं, ये तो क है यार। ख ख ख जैसे। हाँ।

0: क्या बात है, आतिश फिल्म का गाना मीनाक्षी जी ने गाया, खाते हैं हम कसम। हाँ जी, आप अंताक्षरी ही को चाहेंगे आप दोनों।
1: जी
0: बिल्कुल। खाते हैं हम कसम आतिश फिल्म का गाना, तुमको ही चाहेंगे। तो आशा जी, आपके लिए गाना शुरू होना चाहिए ग अक्षर से। ग, हाँ
1: गुनगुन
0: जी, गाइए। अरे वाह,
1: क्या बात है। गुनगुन करता आया भवरा भवने सुनाया, बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हो बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
0: क्या बात
2: है,
0: है। बिल्कुल, कुमार सानू और साधना सरगम, फिल्म मुस्कुराहट। तो चलिए, मुस्कुराहट फिल्म का गाना था जिसमें कुमार सानू जी ने गाया, साथ ही साथ साधना सरगम जी। तो एक और गाना हो जाए इन दोनों गायक कलाकारों के बीच।
2: आपके करीब हम गा सकते हो ना?
0: क्यों नहीं गाइए।
2: आप

0: जान की कसम सच कहती है।
1: क्या बात है मीनाक्षी जी, साजन की बाहों में फिल्म का गाना आपने गाया है, आप भी बन गई हैं स्टार ऑफ द वीक।

0: बहुत बहुत बधाई हो, आपको फिर से मुलाकात होगी। बाय
1: बाय
2: बाय आशा जी, आशा जी
1: बाय
2: बाय।
0: चलिए आशा जी अब आपकी बारी है, मीनाक्षी जी तो स्टार ऑफ द वीक बनकर चली गई है, अब आपकी बारी है। तो चलिए, उन्होंने गाया फिल्म साजन की बाहों में से लिया गया ये गाना, जिसमें ऋषि कपूर साहब नजर आए थे ना?

क्या बात है आशा जी, बहुत ही बढ़िया। और आपने क्या गाना गाया, आप भी बन गए हैं स्टार ऑफ द वीक, बहुत धन्यवाद। ओके, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। शुभ संध्या आपको। दर्दे दिल दर्दे जिगर आशिक बनाया आपने, इस गाने को सुनकर डायरेक्टर ने नाम रख दिया 2005 की फिल्म आशिक बनाया आपने। आशिक बनाया हिमेश रेशमिया की आवाज में ये गाना था। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे और दो श्रोताओं से हम मुलाकात करेंगे।

0: जी हाँ, अब हम बढ़ेंगे दो श्रोताओं की ओर। चलिए हम पहले श्रोता का स्वागत करें। हेलो।
1: हेलो भाई जी, नमस्ते।
0: नमस्ते अमृता जी, आप उकुले से बात कर रही हैं, है ना? तो चलिए, एक लाइन पर अमृता जी विराजमान है, तो दूसरी लाइन पर कौन उपस्थित है? चलिए हम।
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते सरिता जी।
2: नमस्ते अमृता जी।
1: नमस्ते आपको भी।
2: मैं सरिता हूँ, कैसरबोन से।
0: हाँ जी, कैसरबोन वर्सेस उकुले, अरे अमृता वर्सेस सरिता जी, क्या बात है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अमृता जी की ओर। ओके अमृता जी, आपके लिए हम एक छोटा सा टुकड़ा पेश करेंगे आपके लिए। आप जरा अक्षर को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करनी पड़ेगी उस अक्षर से। ओके, और आपका गाना इस प्रकार है, जरा आप गौर से सुने, हम आपके लिए एक छोटा सा टुकड़ा अभी गाते हैं, तो आप अक्षर सुनिएगा और उससे उठाइएगा। ओके, तो सुनिए।

0: की। ग से आपको गाना पड़ेगा अमृता जी, प्लीज। ग ग से ग, हाँ जी ग से। ये तो किसी ने गा लिया है, एक और गाना हो जाए।
1: गीत गाया
0: बहुत अच्छा।
1: पत्थरों ने सांसों के ताल पर धड़कन की प्यार से दिल को पुकार ली, रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने।
0: क्या बात है, पत्थर भी गा लेते हैं जब संगीत की बात चल पड़ती है तो, है ना। अमृता जी को मिले हैं 10 अंक, गीत गाया पत्थरों ने। तो चलिए अब सरिता जी, आपके लिए अक्षर है न। न से कोई गाना हो जाए प्लीज।
2: ना ना करते,
0: ये तो किसी ने गा लिया है
2: जी।
0: हाँ जी, किसी ने गा लिया था
2: न तो जमीन,
0: अरे वाह,
2: के लिए है न आसमान।

0: दास्तां के लिए।
1: जी हाँ, न तू जमी के लिए दास्तान फिल्म का गाना दिलीप साहब की आवाज़ की अदाकारी में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। क्या बात है सरिता जी, आपको भी मेरे हैं अमृता जी की तरह 10 अंक। जब हम ताली बजाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं या नहीं? इसीलिए हम ताली बजाते हैं ना, कि अगर नहीं बजाएंगे आप कह दीजिए, अगर आप नाराज हो जाते हैं तो हम नहीं बजाएंगे तब।
0: नहीं, क्यों नहीं?
1: तो चलिए अमृता जी, अब आपकी बारी है। सरिता जी ने दिलीप कुमार साहब पर कोई गाना गाया, तो कोई और गाना आप गाइए जिसमें दिलीप कुमार साहब नजर आते हैं। प्लीज कृपया कोई भी गाना जिसमें दिलीप कुमार साहब नजर आते हैं गाइए।
0: मुझे
1: नहीं, अमृता जी को।
0: ओके ओके
1: अमृता जी। हाँ जी, कुमार जी ऐसा सौतेला गाइए कोई भी गाना। कोई कौन कौन सा गाना गाना चाहती थी आप? मदद कर सकते हैं आपकी। कौन सा गाना?
0: आई लव यू।

0: करते हैं।
1: ओ पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी। अच्छा, लव मी, हाँ जी, सुबह शाम तेरे प्यार में यही गीत दोहराऊं रानी, यही गीत दोहराऊं हर कर्म।
0: रामचंद्र कहे गए
1: ओ
0: सिया
1: ये भी आपने
0: से,
1: गाया।
0: रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अमृता जी। अंत में आपको और 10 अंक मिल गए, 20 अंक के साथ आप भी बन गई हैं स्टार ऑफ द वीक। लेकिन फिर भी आपने कोशिश की, यही तो चाहिए इस प्रोग्राम के दौरान, है ना। धन्यवाद आपको, बाय,
0: धन्यवाद भाजी, बाय बाय, शुभ सप्ताह, शुभ रात्रि,
1: शुभ सप्ताह,
0: संध्या।
1: शुभ रात्रि। तो चलिए, अमृता जी ने तो और 20 अंक कमा के चली गई हैं, स्टार ऑफ द वीक की किताब उन्हें भी प्राप्त हो गई है। अब हम बढ़ेंगे सरिता जी की ओर। ओके सरिता
0: जी
1: जी, और
0: जी
1: उन्होंने गाया फिल्म गोपी का गाना, जिसमें दिलीप कुमार के साथ सैरा
0: जी
1: बानू जी नजर आई थी, है ना। तो चलिए, कोई भी गाना सरिता जी को गाना पड़ेगा जिस गाने में पिक्चराइज हुई थी सैरा बानू जी। गाइए।
0: सारा बानू,
1: हाँ जी, कोई भी गाना।
0: जा जा जा मेरे बचपन कहीं जा।

0: जा जा जा मेरे बचपन, कहीं जाके छुप ना जा।
1: कहीं जा के छुप ना जा। क्या बात है सरिता जी, बहुत ही धन्यवाद इस गाने के लिए। आप भी बन गए स्टार ऑफ द वीक। हमेशा ऐसे ही आप गाती रहें, मुस्कुराती रहें सरिता जी।
0: जी
1: ओके बाय बाय
0: ओके बाय बाय
1: बाय।
0: संध्या आपको
1: आपको भी। देखते देखते 5:43 हो गए हैं और हम यहाँ पर कर रहे हैं एक बड़ा हसीन सा मुकाबला दो श्रोताओं के बीच। चलिए अब हम मुलाकात करेंगे दे और श्रोता से। चलिए देखते हैं कि वो लाइन पर है या नहीं। हेलो हेलो,
0: नमस्ते रोशन जी।
1: नमस्ते शोभा जी फ्रॉम बाकुआ, कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: हम भी ठीक हैं शोभा जी, बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और दूसरी लाइन पर कौन हो सकता है, चलिए मुलाकात करते हैं। ओ हरीश भाई।
2: हरीश।
1: हाँ हरीश भाई,
2: एक शोभा बहन नमस्ते वाकवा के।
0: हरीश भाई को भी नमस्ते मेरी ओर से।
1: देखा
2: आप और मैं हम मिल चुके हैं एनबीसी में।
0: जी हाँ, एनबीसी में मिल चुके हैं जी।
1: ओ क्या बात है, ये तो यादें आपकी ताजा हो गई होंगी।
0: 2023 या 2024 में
2: या दिसंबर
1: दिसंबर। अरे बाप, आपकी यादें तो ताज़ा हो गई। ये एकमात्र प्रोग्राम है जहाँ पर श्रोताओं दो श्रोताओं के बीच में राम सलाम होता है ना। एक दूसरे के आप हालचाल पूछ लेते हैं और गाना भी गा लेते हैं, है ना। केवल यही प्रोग्राम है एमबीसी में, सच या झूठ। ओके तो शोभा जी, चलिए आपके लिए एक गाना हम प्रस्तुत करेंगे। आप अक्षर ज़रा गौर से पकड़िएगा और गाना उसी अक्षर से आपको शुरू करना होगा। ओके और गाना इस प्रकार है। हो सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। हो सजनी रे, रसे आपको शुरू करना है शोभा जी।
0: राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ठीक है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल, केवल यही आप गाएंगी। लेकिन आपने बहुत
0: तो बस इतना ही याद आ गया ना,
1: कोई बात नहीं, लेकिन आपने अच्छा से पकड़ लिया है।
0: ओके
1: बहुत ही बढ़िया। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, बिल्कुल। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे किसकी ओर, हरीश भाई की ओर। धोते धोते, तो त से आपको शुरू करना है हरीश भाई, त से।
2: त
1: त त हाँ, धोते धोते त।
2: तारीफ करूं क्या उसके?
1: नहीं हरीश भाई, ये तो नहीं, ये तो य से शुरू होता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, तारीफ तो बाद में आता है।

0: एक
1: yeah.
0: गाना जो त से शुरू होता है, जैसे तुम, तुझ में, तुम से, ये सब कुछ ऐसा कोई शुरू होना चाहिए, तेरी. ओके हरीश भाई, कोई भी गाना जो इतना.
1: देखा
0: हाँ
1: तुझे चाहा,
0: क्या बात.
1: तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है
0: और खता क्या. क्या बात है हरीश भाई. शोभा जी के लिए और हरीश भाई के लिए जोरदार तालियां. दोनों के पास सही सही जवाब मिलने के उपरांत दोनों को मिले हैं 10 अंक. चलिए शोभा जी आपकी ओर हम बढ़ते हैं. तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, ये हरीश भाई ने गाया और आपने गाया हराम तेरी गंगा मैली. तो चलिए तुझे देखा वाला गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में था ये गाना. कोई और गाना हो जाए रफ़ी साहब की आवाज़ में शोभा जी, कोई भी गाना जो रफ़ी साहब ने गाया हो.
1: लिखे जो खत,
0: अरे वाह,
1: वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए.
0: लिखे जो खत तुझे, क्या बात है. और शोभा जी को मिले हैं 20 अंक. और शोभा जी बन गई है, क्या बन गई है, स्टॉप द वीक. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. तो चलिए अब हम बढ़ेंगे हरीश भाई की ओर. और आप बहुत धन्यवाद शोभा जी आपको.
1: धन्यवाद आपको भी. शुभ संध्या.
0: शुभ संध्या.
1: बाय.
0: ओके तो चलिए अब हम बढ़ेंगे किसकी ओर, हरीश भाई की ओर. तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, और शोभा जी ने गाया लिखे जो खत तुझे. तो हरीश भाई कोई भी गाना गाइए जिसमें ये शब्द आता है खत.
1: खत,
0: हाँ जी, कोई भी गाना जिसमें खत आता है, खत. हाँ जी, खत.
1: दिल में माना कुमार सानू गाना है.
0: हाँ गाइए.
1: कलम उठा के मैंने
0: एक
1: खत लिखा तेरे नाम का.

0: तमाम लिखा,
1: क्या बात
0: कसम
1: है,
0: में तेरा नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा।
1: क्या बात है। हरीश भाई भी बन गए हैं स्टॉप द वीक। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई। ओके
2: थैंक
1: बाय
2: यू।
1: बाय।

0: 4-02-8-08-5 पर आप फोन करें और ऑनलाइन मुकाबला कीजिए। लाइव एंड डायरेक्ट आपका इंतजार कर रहे हैं और व्हाट्सएप के थ्रू और ऐसे मैसेज आए हैं, जैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि अंताक्षरी प्रोग्राम बड़ी बड़ी मस्त और जबरदस्त, बहुत धन्यवाद। और आपने एक गाने की मांग की है, सावन को आने दो फिल्म का गाना, अगर मौका मिले तो हम अवश्य चलाएंगे। और एक मैसेज आया है, रोशन जी आपने तो अपनी पसंद का गाना गाया है, पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी। आप मांग कर रहे हैं कि हम ये गाना अंत में गाएंगे आप लोगों के लिए, देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, शुभ संध्या आपको। हम अगर नहीं गा पाए तो हम अवश्य ये गाना आपके लिए चलाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो रोशन जी, मैं राधा, मैंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है,
0: देखा
1: समझ नहीं आया कैसा है प्रोग्राम।
0: आप अभी और ऑन किया और आपको लाइन भी मिल गई।
1: हाँ, मैं शादी में गई थी ना, अभी मैंने ऑन किया।
0: कोई बात नहीं राधा जी, तो ऐसा है कि आपके और एक लाइन पर एक और श्रोता रहेंगी, दोनों के बीच में एक मुकाबला होगा। ओके चलिए हम देखते हैं दूसरी लाइन पर कौन है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते अनीता जी फ्रॉम ओदाबेया, है ना? तो चलिए अनीता

जी एक ओर से और राधा जी दूसरी ओर से। ओके तो हम बढ़ेंगे राधा जी की ओर। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम बढ़ेंगे राधा जी की ओर। एक गाना हम आपके लिए पेश करेंगे राधा जी, आप ये गाना सुनिए और अक्षर जहाँ से अक्षर समाप्त होता है वहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके राधा जी, और गाना इस प्रकार शुरू होता है, आप गौर से सुने। बहुत ही सुंदर सा गाना है।

0: क्या बात है राधा जी, भक्ति गाना गाकर आपने कमा लिया है 10 अंक, बहुत ही बढ़िया। अब हम बढ़ेंगे आरती, हो माता आरती, तो त से शुरू करना होगा अनिता जी को, त से। ओके अनिता जी, त से।
1: हाँ
0: नहीं, राधा जी ने अंत में गाया आरती, आरती है ना, त त त जैसे, हाँ त, तुम, तुझे, तेरी, ओके, कोई भी गाना तसे। अनिता जी तसे, त, हाँ गाइए। अनिता जी अनिता जी अनिता जी, हेलो हेलो
1: अनिता,
0: ओ, आपकी लाइन कट गई थी।
1: हाँ कट गई है अपनी।
0: ओके ओके ओके, त से आपको शुरू करना है, त से, त,
1: द,
0: नहीं नहीं नहीं, त से, त त त से, त, जैसे जैसे अनिता में त है ना, अनिता में त, हाँ तो त से शुरू करना है,
1: त, त ना बोलते हैं,
0: हाँ त, हाँ
1: अच्छा।
0: अरे वाह,
1: दिल हमारा दिल हमारा,
0: क्या बात है।
1: तुमको राधा कर दो मुझे माफ, तुम
0: हमने आपको माफ कर दिया है अनिता जी, बहुत ही अच्छा। ओके चलिए, आपको भी मिले हैं 10 अंक राधा जी की तरह, और ये गाना फिल्म बोल राधा बोल से लिया गया है। ओके राधा जी, एक गाना था जो राज कपूर ने संगम में, उन्होंने ये इस गाने में वो नजर आए थे जहाँ पर,
1: हाँ जी, और मेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं,
0: नहीं कभी नहीं,
1: नहीं।
0: क्या बात है राधा जी, आप भी बन गई हैं स्टार ऑफ द वीक, बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: आपको,
1: अनिता जी को भी बहुत बधाई,
0: बधाई
1: आपको
0: okay.
1: भी राधा जी,
0: okay.
1: जी धन्यवाद।
0: तो चलिए राधा जी तो स्टार ऑफ द वीक बन गई हैं, एक अंतिम गाना अनिता जी की ओर, और आपके लिए प्रश्न इस प्रकार हैं, राधा जी ने गया फिल्म संगम का गाना जिसमें विजयंती माला जी भी नजर आई थी, है ना, तो कोई भी गाना आप गाइए जिसमें विजयंती माला जी नजर आई थी, कोई भी गाना।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना।
0: क्या बात है अनिता जी, राधा जी की तरह आप भी स्टार ऑफ द वीक बन गई हैं, धन्यवाद आपको, नमस्ते, नमस्ते, बाय बाय
1: बाय
0: बाय। तो ये थी,
2: तुझे देखा तो ये जाना सनम,
0: जी हाँ, आप लोगों को सुनकर मुझे ये पता चला कि आप लोग अंताक्षरी से बेहद ही प्यार करते हैं, और अंताक्षरी के बिना आप नहीं जी पाएंगे। तो चलिए इसी छोटा सा मजेदार खेल के साथ हम आपसे अनुमति चाहें।

0: अब 5:56 हो गए हैं और थोड़ी देर में समाचार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार आप सुनेंगे। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और हमेशा खुश रहिए, तनाव से दूर रहिए और अपने आप पर विश्वास रखें और रेडियो सेट के साथ आप जुड़ते रहें। जो गाना जिसकी मांग की गई थी, दिलीप कुमार साहब का गाना है और फिल्म का नाम है कर्मा। ये गाना हम देवी जी के लिए और सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करेंगे, खासकर ब्रुआशेरी की सुभावती जी के लिए जो इस प्रोग्राम को बेहद पसंद करती हैं, और साथ ही साथ ट्रियोले की प्रेमा जी और श्रद्धा जी फ्रॉम कौंजाब, वो हमेशा इस प्रोग्राम को सराहती रहती हैं, सुनती रहती हैं और आप लोग भी सुनते रहते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आप लोगों को।
1: I love you, हर दिन हर पल यही कहूँ मैं I love you, सुबह सवेरे काम पे जाऊँ I love you।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम की 6 बजे है। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। बंदरगाह में 200 लीटर के रिसाव के संदर्भ में 300 मीटर रसी बोम्स लगाए गए। पर्यावरण मंत्रालय और बंदरगाह के अधिकारियों के मुताबिक तेल को निकाला जा सका है। देश का सबसे बड़ा सड़क मूल ढांचा M4 के निर्माण कार्य इस साल के आखिर से शुरू। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क उत्तर और पूर्व तथा हवाई अड्डे को जोड़ेगी। भारत सरकार की मदद से 30 महीनों की अवधि में ये परियोजना पूरी। 8 सितंबर में सर शिवसागर रामगुलाम हवाई अड्डे पर एमिरेट्स लाउंज को खोला जाएगा। आज एमिरेट्स विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने सरकारी नेता से की रस्मी मुलाकात। विदेश में फ्रांस में सोशल मीडिया के एक्सेस को लेकर 15 साल से कम उम्र वाले नाबालिगों के लिए पहली सितंबर

0: बरसी नई पाबंदी। और अब समाचार विस्तार से। आज दोपहर के 2 बजे के करीब बंदरगाह में तेर रिसाव को रोकने के लिए सफाई अभियान कामयाबी के साथ पूरा किया गया। 300 मीटर सी बोम्ब लगाए गए। पर्यावरण मंत्रालय और बंदरगाह के अधिकारियों के मुताबिक तेल को निकाला जा सका है और इंडियन ऑयल लिमिटेड के एक पाइपलाइन में खराबी की वजह से करीब 200 लीटर रिसाव हुआ था। ज्यादा जानकारी फिर हिमा सिबरन के साथ।
1: इंडियन ऑयल लिमिटेड की 200 मीटर लंबी पाइपलाइन के इसी हिस्से से कल दोपहर करीब 2 बजे हाइड्रोकार्बन का रिसाव हुआ। मैरूज में न्यू ऑयल जेटी के पास समुद्र में लगभग 200 लीटर भारी ईंधन फैल गया। जैसे ही इसका पता चला, बंदरगाह अधिकारियों ने तुरंत ऑयल स्पिल कंटिंजेंसी प्लान सक्रिय कर दिया, जबकि पर्यावरण मंत्रालय को बिना किसी देरी के सतर्क कर दिया गया।
2: Comme nous avons eu cette information, tout le monde s'est mobilisé et on a réalisé que c'était un operational spill.
1: Postmaster Benoît Bobo बताते हैं, जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, सभी लोग तैनात हुए और ज्ञात हुआ कि ये एक operational spill है। पाइपलाइन में छोड़ा हुआ तेल था। ये पाइपलाइन काम नहीं कर रहा था। पोर्ट इमरजेंसी सर्विस की टीम 24 घंटे तैनात है, जिसकी वजह से इस रिसाव पर नियंत्रण पाया जा सका। हाइड्रोकार्बन के रिसाव को रोकने के लिए 300 मीटर लंबे अब्सोर्बेंट बैरियर तैनात किए गए हैं। एक क्लैंप ने पाइपलाइन पर रिसाव को पूरी तरह से रोक दिया। तेल जेटी पर लंगर डाले हुए जहाज MV ऑप्टिमस भी हाइड्रोकार्बन से प्रभावित हुआ था। समुद्र के इस विशालकाय जहाज को रवाना होने से पहले भारी तेल के सभी निशानों को हटाने के लिए एक गहन सफाई से गुजरना होगा। पर्यावरण मंत्रालय के डिविजनल एनवायरनमेंट ऑफिसर लुकमान मागो कहते हैं, मंगलवार से लीकेज रुक गया, उसकी मरम्मत की गई, अब बाकी के तेल की सफाई की जा रही है। जहाज की सफाई करना बाकी है, पर्यावरण पुलिस इस पर जांच करेगी, हम भी फॉलोअप करेंगी। सफाई के इस अभियान के लिए लगभग 15 लोगों को जुटाया गया था, जो 12 घंटे तक चला। ये अभ्यास आज बुधवार दोपहर 2 बजे समाप्त हुआ। नेशनल एनवायरमेंटल लेबोरेटरी द्वारा पानी के नमूने मिल गए हैं, विश्लेषण चल रहा है।
0: देश का सबसे बड़ा सड़क मूल ढांचा M4 के निर्माण कार्य इस साल के आखिर से शुरू किए जाएंगे। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क उत्तर और पूर्व तथा हवाई अड्डे को जोड़ेगी। भारत सरकार की मदद से 30 महीनों में ये परियोजना पूरी होगी। मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद एमिरेट्स मॉरिशस में अपनी गतिविधियां जारी रख रही है और निवेश करती जा रही है। आज इस विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने पोर्टवी में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सचिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एक एमिरेट्स लाउंज को खोलने के सिलसिले में बात की। 8 सितंबर में उद्घाटन किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ संघर्ष में महारत बनता एक जरूरी पहलू है कल पोर्टवी के ट्रेजरी बिल्डिंग में सऊदी अरब की ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के बीच इस सेक्टर में सहयोग मजबूत करने की संभावनाओं पर बातचीत हुई। ज्यादा जानकारी फिर हिमांशी बुरन के साथ।
1: सऊदी अरब के ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के प्रतिनिधिमंडल ने, जिसके नेतृत्व उनके अध्यक्ष माजिन बिन इब्राहिम अल कामूस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष रूप से चर्चा की। इस संगठन के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है। डॉक्टर नसर अबाल खायल बताते हैं,
3: इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज इंस्ट्रूमेंटल in the fight against corruption.
1: भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी लक्ष्य के साथ ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी तथा FCC के बीच एक प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। हमें आशा है कि इससे दोनों संस्थाओं की मदद होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में और सूचनाओं के आदान प्रदान में।
3: Not only on preventing corruption, but also on exchanging intelligence.
1: ग्लोबी नेटवर्क के सदस्यों के रूप में सऊदी एजेंसी और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मादक

0: पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के तत्वावधान से सहयोग कर रही है। सऊदी अरब और मॉरिशस के राजनीतिक समर्थन की बदौलत से हमें विश्वास है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकेंगे। द्विपक्षीय संबंधों या बहुपक्षीय संबंधों के मद्देनजर ये कदम उठाए जा सकते हैं। इस दौरे के दौरान क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अपराधों की जांच पर भी चर्चा की गई।
1: सऊदी डेलीगेशन का मॉरिशस दौरा आज ख़त्म हुआ। अरब सल्तनत की डेलीगेट सकारात्मक है। आज मिशन के मेंबरों ने पर्यटन मंत्री रिशा उजवाल से मुलाकात की। सऊदी और अरब मुल्कों के लिए मॉरिशस को एक मंजिल के तौर पर और ज़्यादा उभारने के लिए डेलीगेटों ने अपनी तसल्ली जताई है। ज़्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
2: मॉरिशस में हफ्ते भर का प्रवास, जिसके दौरान कई लग्जरी होटलों और पर्यटन स्थलों का दौरा किया गया। पर्यटन सेक्टर के कोई 10 पेशेवरों के प्रतिनिधिमंडल ने इस बुधवार को पर्यटन मंत्री रिशा उजवाल से मुलाकात की। डेलीगेशन ने मॉरिशस में पर्यटन संभावनाएं खोजने के अपने मिशन का जिक्र किया।
3: Mauritius, one of the best destination as a family destination, as a honeymoon destination, as a young destination, and the destination for the people who is looking for a luxury and a relaxing destination.
4: Malène bien émerveillé par l'île Maurice et je n'ai émerveillé par la nature, par l'hospitalité ban mauricien et aussi par l'harmonie qui régnait dans nos pays.
2: सऊदी अरब और मॉरिशस पक्षों के बीच बातचीत के दौरान मॉरिशस में सऊदी अरब और खाड़ी देशों से आने वाले पर्यटकों में वृद्धि का जिक्र किया गया।
5: Quand je caravane Maurice, c'est dans le low season pour nous, qui est très important, qui nous gagne dans le low season, au début de l'année, c'est-à-dire à partir d'avril, mai, juin, juillet, où capable de meubler sa low season comme on nous y fait l'année dernière, quand nous gagnons une saison record, nous allons dire avec 1,436,250
2: के लिए पर्यटन एक अहम स्तंभ है। ऐसे में सऊदी अरब और खाड़ी देशों से उच्च कोटि के पर्यटकों का स्वागत करना जरूरी रहता है, जो आरामदेह होटलों के लिए खर्च करने की क्षमता रखते हैं।
1: जैसे टिशोगु ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंस कमीशन के नए अध्यक्ष की हैसियत से स्टेट हाउस रेजवी में गणराज्य के राष्ट्रपति के सामने शपथ ली। उनकी 4 सालों की कार्यावधि होगी। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने अपनी नई जिम्मेदारियों की प्राथमिकताओं को भी आम किया। और गैर कानूनी तस्करी, अवैध मछली मार और समुद्री प्रदूषण समुद्र के खतरे सरहदों के पार जा रही है। इन सब का सामना एक ही हल के जरिए किया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में आज से आते 24 जुलाई तक हिंद महासागर आयोग ने यूरोपीय संघ के सहयोग से ईयू मैरीटाइम सिक्योरिटी वीक का आयोजन किया। पोर्ट में इलाके के राष्ट्र प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने के लिए एकत्र हुए। जरा जानकारी इस रिपोर्ट में।
0: अपने विशाल समुद्री क्षेत्रों के साथ हिंद महासागर के देश कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध रूप से मछली पकड़ना, समुद्री प्रदूषण। 2025 में इस क्षेत्र में 1100 से अधिक समुद्री घटनाएं दर्ज की गई थीं। ये ऐसे खतरे हैं जो हर देश के भीतर कई सेवाओं और एजेंसियों को सक्रिय करते हैं, लेकिन इनके लिए इलाकाई स्तर पर भी सहयोग की आवश्यकता है। हिंद महासागर आयोग के महासचिव डॉक्टर इब्राहिम नोबिया रिशाओ ने कहा, समाधान है राज्यों के बीच सहयोग। कोई भी देश अकेले इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। आईयूसी का लक्ष्य है इलाकाई सहयोग को बढ़ावा देना। एक विशाल समुद्री क्षेत्र से घिरे द्वीप राष्ट्र मॉरिशस के लिए ये निगरानी बेहद जरूरी है। ये सीमाओं, समुद्री संसाधनों और समुद्र से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों की रक्षा करने में मदद करती हैं।
6: 2.3 मिलियन किलोमीटर।
0: मंत्री धनंजय रामफल बताते हैं, 2.3 मिलियन स्क्वायर मीटर का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इलाके के सभी संबंधित देशों को सबसे पहले अपने कानूनों को रेगुलराइज करनी चाहिए और अपनी संस्थाओं को मजबूत करनी चाहिए। यूरोपीय संघ कई दशकों से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता को मजबूत करने में आईओसी

0: और इलाके के देशों का साथ दे रहा है। ये सहयोग पहले ही परिणाम दे रहा है।
1: Il y a une architecture maritime qui a été créée grâce à la COI et à l'Union européenne, où on a deux centres de coordination, un à Madagascar, autre à Maurice. On voit des résultats, on voit des saisies sur des trafics de drogue ou autres. Je pense qu'il y a, il y a un engagement politique de tous les pays de la région, avec notre appui, pour continuer à renforcer ces résultats.
0: कार्यशाला 24 जुलाई तक जारी रहेगी ताकि राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और परिचालन साझेदारों को अपने कार्यक्रमों और कार्रवाइयों को बेहतर ढंग से समन्वित करने की अनुमति मिल सके।
2: लेखक मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने प्रेमचंद दिवस मनाया। मौके पर से अशकोंसौतन थिएटर वाकवा में मुंशी प्रेमचंद की लिखी बूढ़ी काकी को पेश किया गया। अवसर पर प्रेमचंद के प्रशासक और हिंदी प्रेमी उपस्थित थे। जैसे कि हम बता रहे थे, मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद एमिरेट्स मॉरिशस में अपनी गतिविधियां जारी रख रही है और निवेश करती जा रही है। आज इस विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
0: पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और एमिरेट्स एयरलाइंस के कई अधिकारियों के बीच मैत्रीपूर्ण मुलाकात हुई। इस दौरान मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव से घिरे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में मॉरिशस और दुबई के बीच विमान सेवाओं पर चर्चा की गई। वेस्ट एशिया इंडियन ओशन एमिरेट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऐसा सुलेमान अहमद बताते हैं,
3: वी केम हियर जस्ट टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड जस्ट टू थैंक हिम फॉर ऑल द सपोर्ट इवन विद एवरीथिंग दैट वाज गोइंग अराउंड ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। You know, we were always here at the forefront and we've had great support from the island. And we also made sure that, you know, even when the Honorable Prime Minister had called us and asked us to make sure that we do have flights that will come back to the island carrying Mauritian nationals from all across the world, we were there, we made sure that we are committed. We went immediately from the daily flight that we had, now we have a double daily flight into Mauritius.
0: सर शिव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए एमिरेट्स लाउंज के जल्द खुलने पर भी चर्चा हुई। ये लाउंज कंपनी की नई प्रीमियम अवधारणा का हिस्सा होगा।
3: One of the new investments will be a new dedicated lounge at the airport. That's going to be the first of its kind, specifically for Mauritius and even for us, for all the network and all the lounges that we own all across the world. This is going to be the new standard. So we're very excited about it. Hopefully September it should be ready.
0: ये निवेश मॉरिशस में अपनी उपस्थिति को स्थायी रूप से मजबूत करने की एमिरेट्स की इच्छा की पुष्टि करता है। इस एयरलाइन ने 2002 में हमारे यहां परिचालन शुरू किया था।
2: और आज सतीश वगु ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नए अध्यक्ष की हैसियत से स्टेट हाउस कजवी में गणराज्य के राष्ट्रपति के सामने शपथ ली। उनकी 4 सालों की कार्यावधि होगी और पूर्व अटॉर्नी जनरल ने अपनी नई जिम्मेदारियों की प्राथमिकताओं को भी आम किया। जरा जानकारी इस रिपोर्ट में।
4: सत्यावेयास फगू, हैविंग बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन,
5: सतीश फगू की एक प्रमुख जिम्मेदारी होगी पुलिस फोर्स पर जनता का भरोसा फिर से बहाल करना। उन्होंने बताया कि हर साल संस्था द्वारा करीब 750 शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इनमें ज्यादातर पुलिस बर्बरता और अधिकार के दुरुपयोग से संबंधित हैं।
6: Une faire bonne étude, quand ils trouvaient que moi j'ai à peu près 50% la population, je te manque confiance dans la force policière. Et aussi, elle manque de respect, de deux côtés. Donc, nous avons été qui m'a hier pour faire des sautes qui. Justement pour renforcer sa relation entre public et la police. Et ça, c'est peut-être bizarre au niveau training qu'on recrutait même au début.
5: 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त सतीश फगू पूर्व जज दिव्यानी बिसुंडयाल की जगह इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नेतृत्व का भार संभालेंगी।
2: विदेश में फ्रांस ने जनवरी 2027 से 15 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने का कानून पारित किया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर नौजवानों को ब्लॉक करने वाला

वो पहला यूरोपीय देश बन गया है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर एक्सेस पाने के लिए फ्रांस में बसने वाले सभी लोगों को अपनी उम्र बतानी पड़ेगी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस कदम का स्वागत किया है। भारत में शिक्षा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन के संदर्भ में विपक्ष नेता राहुल गांधी को रिहा किया गया है। छात्र प्रदर्शन कारी संसद के सामने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। परीक्षाओं में लीक संबंधी समस्या के चलते ये स्थिति पैदा हुई है। करीब 2 मिलियन मेडिकल छात्रों को फिर से इम्तिहान देना पड़ा। देश विदेशी खबरों के बाद आइए मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण की तरफ पाए जा रहे सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश के दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। कल दोपहर बाद के समय उत्तरी इलाकों पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। कल सूर्योदय 6:43 पर होगा।

0: तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: रॉबिन्सन रोड क्यूपिप में, रॉबिन्सन रोड क्यूपिप में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री रविंद्रनाथ बख्तावर, श्री रविंद्रनाथ बख्तावर जो बेबी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनके घर रॉबिन्सन रोड क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। नंबर 23 बाउंड्री स्ट्रीट रोजल में, नंबर 23 बाउंड्री स्ट्रीट रोजल में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मीन पुराऊ पैदाइशी नाम आकालू और जो लक्ष्मीन लोलुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनके घर नंबर 23 बाउंड्री स्ट्रीट रोजल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडुगाव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। रॉय रोड रिविया जुपस में 38 साल के 38 ईयर्स ओल्ड के श्री नितिन चौधरी जो नीतीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके पिता श्री धर्मानंद चौधरी के घर रॉय रोड रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौहाबो रिविया जुपस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एम्पास नोत्र दाम माइबो में सेव मार्क्स सुपरमार्केट के पास 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री ज्ञानदेव पिहारी जो बाबा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पिहारी के घर एम्पास नोत्र-दाम माइबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोवालों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन Tomorrow at 11 AM. EDC Balance Road, Plan Magnon, 45 years old, के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री देवराज पेयती जो शेप नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10

0: अजयगढ़ दिन के 10 बजे उनके भाई श्री देव पयाती के घर ओडीसी बैलेंस रोड पे प्लानमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। रू लुई लाजर ओकुलेमी, रू लुई लाजर ओकुलेमी 92 साल की, 92 years old की श्रीमती साबित्रा हिराला, श्रीमती साबित्रा हिराला जो चाची साबित नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री आनंद हीरालाल के घर रू लुई लाजर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट थ्रोंगबॉमी, नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट थ्रोंगबॉमी 60 साल के, 60 years old के श्री मुगम गोविंदन गुंदन, श्री मुगम गोविंदन गुंदन जो नंदा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के दस बजे उनके भाई श्री धर्मारा जैन गोविंदन गुंदन के घर नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट थ्रोंगबॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रोंगबॉ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shudrandariki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
9: सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। बजले प्रभु का नाम एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं आपका ये मनपसंद कार्यक्रम को लेकर। चलिए आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं।

उठाओ। और इस शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें और निष्ठा के साथ आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान गणेश का नाम लेंगे।

भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं श्रोताओं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। वैसे श्रोताओं, आध्यात्मिक मार्ग पर निष्ठा वह दीपक है जो साधक को हर परिस्थिति में प्रकाश देता है। जब मन ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है और जीवन में सत्य, प्रेम तथा सेवा का मार्ग अपनाता है, तब निष्ठा भक्ति का आधार बन जाती है। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे निष्ठा का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि हर कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करना है। सच्ची निष्ठा हमें धैर्य सिखाती है, अहंकार से दूर रखती है और यह विश्वास देती है कि ईश्वर का समय और उसकी योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है।

भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं श्रोताओं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। कहते हैं जब भक्ति में निष्ठा होती है तब प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन जाती है। सेवा केवल कर्तव्य नहीं रहती बल्कि ईश्वर की उपासना बन जाती है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पर।

श्रोताओ, ईश्वर का प्रकाश जो है किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, वह हर जीव, हर प्रकृति और हर शुभ कर्म में अनुभव किया जा सकता है। जो स्वयं के भीतर इस प्रकाश को पहचान लेता है, वह दूसरों के जीवन में भी प्रेम, शांति और प्रेरणा का दीप जला सकता है। भजले प्रभु का नाम। हम इस कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। वैसे अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहिए, अपने रिश्तों के प्रति सच्चे रहिए और अपने जीवन को सकारात्मक कर्मों से सार्थक बनाइए। तो चलिए, कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। हमारे तकनीकी सहायक अंजू को हम धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

चोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा।
1: गमचवा जारी बा। जी हाँ, यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन भोजपुरी तड़का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे रहते हर अपन एमबीसी रेडियो रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर। मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमाव काज जाओ दे विद जाओ विद सैंक काज जाओ दे विद जाओ विद सैंक पर। आज है बुधवार की रात, बुधवार 22 जुलाई साल 2026। आशा करते हैं कि आज की दिन अच्छी तरह से बीतल हुई और आज की रात भी अच्छी तरह से बीती। सब भोजपुरी लवर्स के स्वागत करते ही जा और पहल का गाना तो लोग नाम राजकुमार चिंतामणि की गावल गीत हेलो हेलो। चलो एक साथ सुने की तो हेलो हेलो।

0: गया।
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
2: डोंट मिस इट।

रात के 9:25 हुआ था और दूसरा तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन, रेडियो मॉरिशस 719 किलो हर्ट्ज़ और रेडियो मनोरंजन 94.95 और 98.2 FM पर IMFM दोनों पर चलाता है प्रोग्राम। और बेशक हमने यहाँ तो के साथ देवा थी जहाँ भोजपुरी तरह का कार्यक्रम में मन करता को भोजपुरी गीत सुने के नंबर वक में यह काजे विद सैंक पर अगला गाना अंजू की आवाज़ में अप एंड डाउन गीत चलावती सा चाची ललिता कुशल के नाम रहे रंथियोली चाचा आत्माराम फिर चित्रा और ज्ञान विश्राम हदालबे की हवंजा फिर कमला दिनू कर चीजों फो आरोही खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत साइडन की ओर से कर नेफ्यू माधव के नाम और माधव अपन चाचा जान से बहुत प्यार करे रन है गीत साइडन की ओर से कर पत्नी रानी बेटी परी और सब परिवार खातिर है गीत रेणुका की ओर से अमृता और रीता खातिर और है गीत चली जितना कोई भी रात की उनकी सुनता चाहे तू घर पे हो घर से बाहर हो या विदेश में हो हम किस्मत हुआ था गीत तोहर नाम अप एंड डाउन अंजू की आवाज़ में।

बुद्ध के रात है तो कैसे गमत नहीं हो, कैसे जलसवा नहीं कर अब सर अमित, जलसा सब मजा कर ले मेरी जवान, फिर से ना होगा जवान, बुरा बुरा मत करो, बुरा है शैतान, गांधी जी के तीन को बंजर जाने ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, तो सब को अगर है तीन को चीज जो नहीं फॉलो करी तो दुनिया एक जोरी पास ही चाहिए कि अगला गीत मजा कर ले मेरी जान, लाल के आवाज़ में है गीत चरावती सा, खास हम खास बिना के और से को दुगो बेटा आपका घर वाला आपका सब परिवार के नाम, और है गीत हमने चरावती सा कनाडा के रहे वाला दीपा तिवारी दुखित के नाम कर पति केविन बेटा और सब तिवारी और दुखित परिवार के नाम, साथ में है गीत चरी शोभा जी के नाम वाकवा से प्रेमी ना काटो बोन से वन, और है गीत चरावती स खास हम खास स्वीति स्वीनी खातिर, और है गीत हमने चरावती सब भोजपुरी प्रेमी के नाम, सब चाचा चाची दादा दादी नाना नानी सब पुराने लोगन के नाम जो अभी रात के मन की सुनता मचा कर ले मेरी जान।

रात के 10 बजे तक और तुसनो तो भोजपुरी तरका प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और अब हमने तो लोग के सुनाओ जाएगो जोलीसन कहानी। कहानी के शीर्षक है लालची पत्नी। हाँ, लालची जो पत्नी लालच करे रहा और हर्ष कुंची हो रहा। तो बहुत समय पहले की बात है, कोई छोटा सा गांव में मोहन और उकर पत्नी राधा रहता। तब मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार किसान रहल, पर राधा बड़ी गुरमा बड़ी लालची औरत रहल। वो हमेशा बोलतल हमने के धन चहला, हमने के घर चहला, हमने के सोना चांदी चहला, ओके कबो कोनो चीज़ बसवे नहीं हुई। एक दिन मोहन के नदी किनारे एगो जादुई साधु मिलल। वो साधु चमत्कारी घड़ा दिलक और बोलक मोहन के कि उचित और आवश्यक वस्तु तू मंगब ते घड़ा थोड़ा धे, पर लालच करब त देखिया कौन ची होई। तो शुरू में पति पत्नी अनाज मंगलक, कपड़ा मंगलक, घर के लिए जरूरी सामान मंगलक घड़ा से, तो लोग के जीवन सुखी हो घड़ा वो लोग के दिलक। लेकिन राधा के लालच बढ़ते गल। वो सोना मंगलक, हीरा मंगलक और ढेर कुछ महल सब मंगलक, फिर भी ओकर मन नहीं भरल। अंत में वो बोलक हमके एगो राज्य के रानी बना दे। तो जैसे ही वो इच्छा करलक घड़े से तेज प्रकाश निकलल और वो घड़ा गायब हो गल और ओकर सारा महल धन सब पल भर में गायब हो गल। मोहन और राधा फिर से अपन पुरानी झोंपड़ी में रहे लगा। राधा अपन गलती पर पछतावा करलक और वो समझ दिला कि लालच के फल बहुत बुरा होला। तो ये कहानी के शिक्षा मोहाल कौन ची है कि लालच के अंत हमेशा बुरा होला। जिंदगी में चहला हमने की ढेर चीज पर लालच नहीं करिए। जी गुरमा करब लालच करब तो सब कुछ खो दी बजा। ऐसे में सुनब जाएगो बहुत ही प्यारा संगीत मंगा द सोना के हरवा। विशाल बिशेसर लाफलोरा से हवन ओकर धर्मपत्नी ओकर बेटा और सब बिशेसर परिवार के नाम है गीत जाते। और विशाल इस समय एम्बेसी से निकल के घर ही जाता। बन रोत बोलते सब बन रोते। और है गीत विशाल बिशेसर खासम खास तोहर खाते तोहर पत्नी तोहर लड़का और तोहर सब परिवार के नाम। मंगा द नौला के हरवा। और देखो हमने की टिकटॉक पेज पर अभी देखा था रात के समय रेडियो मॉरिशस के तैसन बा शोभा दुकोरन हेलो, फिर राइजिंग स्टार हेमा, फिर हवन शरद, बबीता बुलाकी, मोतिया विनेश, शालिनी, हेमंता राणा और शामिला के साथ देवोतन, कृष्णा जीता नमस्ते, हम अच्छा है तू कैसे हो भैया, राज ठाकुर, वैष्णव, प्रीति, कृष्णा जीता, सिल्वीना। तो जितना कोई अभी हमने की रात के देखा था टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के है गीत खासम खास दिलों के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ। और हई गीत हमने चलाओ तैसा कलकतिया परिवार जो नये थ्रियोले जिराखंड परिवार हरकू परिवार थ्रियोले से अवन चाचा माराम चाची प्रभावती नोसे। और हई गीत संगीता मीरन सब मोहन परिवार कर्मा दान आजी बहन शांति हेमा रन वंशिका रक्षिता और जितना भी रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के श्रोता में किसी गीत लोग के नाम मंगा द नौ लाख के।

मंगादा मंगादा हमर 9 लाख के हरवा, इतना महंगा के हार, काश थोड़ा कोई इतना महंगा के हार दे दी तो जीवन भर तो कर गुन गई बा। हाँ कि नहीं। और अब हमनी तो के बताओ जो अदरक है, जो अदरक है ओकर कौन तत्व है, ओकर वर्चूज कौन छ अदरक जैजाम जिंजर। तो अदरक जो है को प्रसिद्ध मसाला और औषधीय पौधा है, एक वैज्ञानिक नाम है जेंजिबेया, जेंजिबेया ऑफिसिनाली। और अदरक में ढेर मना पौष्टिक तत्व है, विटामिन बेसिस, विटामिन से, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फो, फाइबर है। और अदरक के प्रमुख सक्रिय यौगिक जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण बा, ये डाइजेशन में मदद करेला, गैस उपच और पेट फुलाई से बचावेला, और उल्टी जो नदमी की धीरभूमि लगेला तो लोग अदरक खाला तो लोग उल्टी ना होला, सर्दी जुकाम से हमने के राहत पहुँचावेला, और हमने के इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बनावेला, हमने के हृदय हमने के लेके खातिर अच्छा है अदरक, और रक्त संचार खातिर अच्छा है, ब्लड प्रेशर जो कि हाई बीपी रहेला उसे की अदरक खाए रोज के गो पीती बुत अदरक। यहाँ ओकर गुड़ थोड़ा तीता रहेला पर का करब परेला खाए के। तो अदरक ढेर मना तरीका से ओकर उपयोग होला, अदरक के चाय बनेला, अदरक वाली चाय,

सब्जी में उसका प्रयोग होगा, दाल मसाला में, काढ़ा में, अचार में, चटनी में, सूप और अन्य व्यंजन में भी। और ढेर अधिक मात्रा में खाइबा तो मुँह में जलन होला, पेट में जलन भी होला। तो ढेर अदरक नहीं खा के एक छोटा सा टुकड़ा सगबा खाए भी, जैसे लीविया करता तो और एक हमने के खून पतला करेला अच्छा है अदरक खाल, पर ढेर नहीं खाइया तो जानी जा सक कि गु उतना उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रहेला। पर अदरक जो है बहुत अच्छा है हमने के इम्यून सिस्टम के, हमने के डाइजेशन के अच्छा है और हमने के शरीर के मजबूत बनावेला। और अगला गीत धनाजी नावजी गायले वन मोटका पानी है गीतवा चलावत ऐसा सब सीनियर सिटीजन लोग के नाम, हम की दादा दादी नानानी चाचा चाची लोग खातिर, साथ में धीरमा संगतिया वन मोहताबासे स्टीव माना, राज माना, संजीव चिबुक, नानो लोंग, श्याम मंगल, प्रवीण भैरव राजा, रिवेली जोंगी की प्रवीण बुधन, उनकर माता पिता सब बुधन परिवार के नाम। और है गीत वीना कुपुस्वामी खातिर मे बग सेवन, लेखराज रघु, करतीन गोलेका कर पत्नी सुलमान दुखी, तो कर शोहर लाखोजा से विश्वानी बाबूलाल और कर पति और सास से बनवाली हमने के संगत यावन जो अक्सर रेडियो पर हमने के साथ देती रहेलन है गीत और नाम गणेश वरुण है गीत और नाम कमला दीनू कर चीजों फारोही मुकेश गंगा उदय धनी राम किशन गुड़िया प्रीतम राज्य में लाग बेचपुर से सब बच्चन परिवार और गाँव बेसे रतन निहाल फिर ओकर सब परिवार आशा जानू को तेज सेवन शुभम दिद्यारती जीजा जी और सब परिवार खातिर। और है गीत चलावती सब खासम खास ई सब श्रोता के नाम जो नमी की दिखत हवन टिकटॉक पर बीना भैरव ओकर घरोला ओकर दुगो बेटा और अरुणा सब गणपत परिवार जन प्लान मायों से हवन झमन गीत और नाम मेधा सुकन पोल मविन शामिला हेमा बाबिता और हई गीत चली बिजाई के नाम बिजाई के नाम और राइट। और अभी सुनीता भी उनके साथ देवत हवन सुनीता वन थ्रियोले से और बेशक जितना कोई नींद नहीं लगा था फिक्र नहीं करिए अभी और 50 मिनट ले हमने तिलों के साथ रह जा रात के 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम है भोजपुरी तर का जहाँ पर ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट भोजपुरी गीत चलाई ला सकता। चल अभी धनाजी नावजी के गीत चलाओ सब मोटका पानी। आजकल उतना पानी नहीं बरसता पर प्रार्थना करब सकी पानी बरसी कह के पानी चेहरा उनकी जलाशय खातिर। और देमिल वैंसैंग से देमिल वैंसिस ले उतना पानी नहीं बरसलबा कहे कि सिक्लोन उक्लोन नहीं आलबा तो वो खातिर चेहरा प्रार्थना करे कि जमी पानी बरसे और चारों ओर हरियाली हरियाली। शमीला बोलता है वो गीत चलाए के गोर की सवर की खोजब जा भी है गीत। और ज्योति लोबिन भी उनके साथ देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमने के टिकटॉक पर फॉलो कराता हुआ और रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन सुनाता हुआ। जितना कोई खुशिया भोजपुरी गीत सुने के है गीत तो लोग नाम मोटका पानी।

जरा बच के रहिए जा संगत्या लोग, गई दुनिया में सब कोई थोड़ा नहीं चाहला, कुन कुन व्यक्ति से तो और खुशी दिखल नहीं जाला, ये खातिर अपन दिल की बात अपन घर की बात सब कोई के नहीं बताइया बताइया जेके तू कॉन्फिडेंस करेला ओकर से सगो बोले कहे कि आजकल ढेर मुबेद में बाप है दुनिया में बच के रहना, अरे बाबा बच के रहना रे। और इस समय ढेर कोई हमके साथ होता री द्वेश दत्तू हवन सेंटोबेस एसएस के स्टूडेंट गाद से ट्रूज में और पढ़ाई करेला और हमके साथ होत हवन त री द्वेश दत्तू है गीत हर खातिर और गाद से ट्रूज सेंटोबेस एसएसएस कॉलेज के सब संगत यालो के नाम और आस्था में की साथ होत हवन। हेलो आस्था और संजय यादव सुनीता राजन भी हमने के साथ देवत हवन। अब एगो गीत चलाओ, अब से गीतवा में सब कोई के चेहरा हमारे संगे गावे के और नाचे के, कहे कि प्रोग्राम है मस्ती करे के नाचे के गावे के धमाल करे के। स्कूल के छुट्टी बा प्रोफेसर जरे सब कोई घमट करता था, चल हमने घमट कर से अरे संगे संगे गैया जाए जोड़ी छोकरी से प्यार करीरा कुणाल हिलाल की आवाज़ में

0: प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जील कैसे बदला बुके कैसे समझा बुके कोई ना कोई बताए दे हमको छोकरी से प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जील कैसे बदला बुके कैसे समझा बुके कोई ना कोई बताए दे हमको फोन लगावा
1: एसएमएस करा
0: कोई बतावा

सब जोली छोकरे खातिर रहेगी तो अच्छा लगा ए हे सब जोली जोली मामजेल खातिर सब जोली मैडम लोग खातिर आहा जोली छोकरी से प्यार करी रॉबर्ट गीत और खातिर हाई नॉनसेंस

संगठन लोग तो कभी विदेश गलवा अगर नहीं गलवा तो एक दिन जरूर जाइए घूमे ढेर मना जोरी जोरी देश पर जैसे दुबई भारत बैंकॉक चाइना सिंगापुर दुबई और कनाडा ये सब जो देश अब बड़ी जोरी बा तभी लड़का लोग कौन से में बाप अगर माँ बाप लोग कौन से ले तक सर पर लड़का के लेके जाए घूमे दुबई दुबई बड़ी जोरी बा है एकदम चकाचक देश और बहुत धनी देश है दुबई कनाडा भी बहुत धनी देश है सुंदर देश है और अभी अगला गीत चली मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार है गीत अनिता लाल जी के नाम हवन मॉडल बेस से अनिता अफ्रीकन फ्लैग से आफेज लावेनिया से पी से और संगीता मिरन हवन लागोजा से कर भाई दान आजी कर माँ कास्तेल रहेरन वंशिका रक्षिता हिमा और शांति खातिर मैं जबीन प्लान बेस से रोजीदा हाइडन से वन उनके साथ वतवन प्रवेश के जन्मदिन बात प्रवेश हैप्पी बर्थडे अगला गीत आशा की ओर से को सब संगत या के नाम जो इन काम करने को सुबह मौसे में सुबह मौसे के नाम नहीं बोला वरना रिक्लाम हो जाए दिल कुमार श्रेष्ठ है गीत और नाम और लक्की वुमन ने गीत और नाम रॉबर्ट है गीत और खातिर तो और संगत या खातिर अंदा रुगा है गीत और नाम ननसो आशा गीत और खातिर और दत्तू रिद्वेश है गीत और नाम और जितना कोई अभी हमने की रात के सुना था तब बेशक है गीतों के नाम ई वक्त ढेर कोई नाइट शिफ्ट में काम करते हवन हमने की पुलिस ऑफिसर हवन ला पुलिस लोग और पुलिस पोस्ट एम्बेसी में यहाँ पर ला पुलिस लोग बा साथ में डिफरेंट स्टेशन में ला पुलिस लोग काम करता है SMF लोग SSU के लोग फिर दमकल विभाग फायर सर्विसेज मेट्रो स्टेशन गौतकोट लोग काम करता था और गोडशूम लोग काम करता है प्रिजों सब में और कॉल सेंटर में अस्पताल क्लिनिक में डॉक्टर नर्स FME लोग काम करता था तो जहाँ कहीं भी लोग काम करते हैं इस समय हमने बोला सब बोकवाज और है गीत तो लोग के नाम मार ताली मार ताली हमर संगी मार ताली मार ताली मार हमर संगी है गीत छाया लक्ष्मण जी के नाम और सब परिवार के

नाम छाया लक्ष्मण कहाँ से हुआ नहीं बोला कहाँ से हुआ काफ़ी नए छाया लक्ष्मण है गीत तोहर खातिर और तोहर सब परिवार खातिर कुमार श्रेष्ठ है गीत तोहर नाम फिया फिया डुबोरी है गीत तोहरो खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ अंजल दर्शनी है गीत तोहरो नाम

संगतियाँ लोग की दुनिया में सब कुछ पाए कि मुश्किल बा नामुमकिन है कोई नहीं सकी बड़ी सौ पूसाओं के सब कुछ मिल बा दुनिया में भगवान जब विदा कर रखबा तब कोनो न कोनो चीज अधूरा छोड़ दिला बा सबके जीवन में तो सब कोई कभी कभी प्लानिंग वाला कि हमारे लगे हाई नहीं बा हमारे लगे हाउ नहीं बा कम से कम हमारी बुलब सा तोहर लगे रोटी कपड़ा मकान बा दुगो हाथ बा दुगो गोर

बा एगो भेजा दिलक भाई भेजा से सोचते ही सा तो बेशक प्लेयर नहीं हो भगवान से खाली झगड़ा करी रह सा कि भगवान तुमने के है नहीं दिला भगवान तुमने के हाउ ऊ सोच भगवान हम की कौन चीज दिलक बा है भगवान हमने के अच्छा स्वास्थ्य दिलक बा काम करत है सा अपन परिवार के पोसत है सा हमने के लेकर हमने क्यों के सामने बा ये जरूरी है हो कि नहीं तो सब कोई के सब कुछ नहीं मिल रहा दुनिया में वो चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो हाउ जन व्यक्ति के लोथ मिलल बा है मिलियनेयर ओकरो जिंदगी में कोनो न कोनो कमी बा तो हर इंसान के जिंदगी में कोनो न कोनो कमी रहेला मौकमो रहेला है कोई नहीं सी बोली सौ पूछ हैप्पी बा 100% झूठ ये बात झूठ है जो व्यक्ति बोली कि हम सौ पूछ के सब कुछ मिलल बा हम नहीं समझते क्या कि भगवान जब हमने की दुनिया में बिजा कर लगबा तक कोनो न कोनो कमी रखे ये खातिर हम भगवान के याद करी सर शायद भगवान इसे बने रहा ताकि हमनियों के याद करब सर सकेला अगला गीत जलसा लाल बा किशोर खिमिया के गावल गीत और है गीत चाहते सर कुमार जी के नाम शीला सीताराम है गीत हो खातिर फिर नवीन है गीत और नाम दिनेश हरी रिवेद जो पाओ के सब संगत्यालो के नाम वहाँ से हवन छाया लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद उनके साथ दी खातिर फिर है गीत चली मुसाफिर ललिता नेऊ रामगतिया मंजूला खातिर भी और है गीत हमने चलावत ईसा देविका चंपा रामगतिया के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ भाई काशी हवन मातावा से और बेटा उत्तम काशी और बहू और पत्नी माया और सब काशी परिवार के नाम फिर रंभा बालमुकुंद हवन सैंपल से फिर मिसेस द्वारका वेजपर्स देविका हवन न्यूग्रोव से विद्या हवन मोतावा से तो ये सब संगत्या लोग खातिर गीत चली साथ में है गीत चली रीता की ओर से कर दुगो बहिन अमृता रेणुका खातिर पति जनुष्का सब परिवार के नाम और बेशक कई बखत जितना कोई हमने के सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई टिकटॉक पेज पर हमने के देखा था गीत तो लोग के नाम भी जलसा लाल बाप का इतना लाल बाप जलसा चल एक साथ सुनब जा।

गीतन सुन के सब कोई दीवाना हो गल बा। इंदिरा जी गीत मांगले वन राजेश उगर जी के नाम और यूजर 98 बोला था हमने कि क्या गीतों में सच्चे बोला तू अंके दीवाना कर दे रे और ढेर कोई ये गीतवन के दीवाना हो गल बा। आय हाय हाय हाय बंती चेतमु कैसे बा नमस्ते सुस्वागत है मगला गीत और खातिर और जिंदगी में इसे हंसते गाते रहिया नचते रहिया गमत करते रहिया काहे कि दो दिन की जिंदगी बा भैया चोला के ठिकाने बा जैसा काल का जनी के रही कि नहीं तो जहाँ ले सकबा हंसिया गैया हमेशा खुश रहिया हाँ कि नहीं तो चला भी सुनब जाएगी तो अगला गीत रोशन सरा सिंह की गावल है भोजपुरी गमत।

हाथों में हाथ बिस्वानी दीपा के गावल है गीत के संगे भोजपुरी चरका प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ था। सांझ के 6 बजे से अभी लिए हमने के साथ दिला जा बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों के फ़ोन कॉल्स लोग के SMS और उनके टिकटॉक पर फॉलो कर ला बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमने के तो लोग के साथ अच्छी तरह से बीतल हो तो अच्छा लगल हमने के साथ देखिए हम तक खूब गमट करी तो के संगे संगे खूब बतेरी से खूब गमट करी सा। ठीक 11 बजे रात के तू सुन बजा अगला प्रोग्राम सुनहरे पल और बाद रात के 12 बजे से कल फजीर के 5 बजे तू सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तरह आने और हमने की औरतों की मुलाकात हुई अब सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे रेडियो मॉरिशस पर और सामदी के सांझ के 5 बजे से रात के 9 बजे रेडियो मनोरंजन पर। तब तक हमने की इजाज़त अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभरात्रि लव यू और बाय टेक केयर नमस्ते शुभरात्रि बाय।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आप सभी लोगों का गिनिशा का प्रणाम और स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से सफर में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। वैसे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ना कि वक्त जो होते हैं कभी वापस नहीं आता, लेकिन मैं कहती हूँ एक अच्छा गीत वक्त को ना ज़रूर वापस लेकर आता है। एक ही पल में हम फिर से स्कूल के दिनों में पहुँच ही जाते हैं, या किसी शाम को, बड़ी खास शाम को, या किसी सफ़र या किसी खुशबू को फिर से हम जी लेते हैं। और इसीलिए तो हम सब पुराने गीतों से इतना प्यार करते हैं। तभी तो गिने चुने नगमे को लेकर हम आए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए सुनहरे पल में। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है?
2: कह

0: कभी तो हंसाए।
1: वैसे आपने सोचा है कि अगर कभी बारिश हो, हाथ में चाय हो और बैकग्राउंड में पुराने बॉलीवुड के गीत, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल दोस्तों, सच बताइए, इससे ज्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। तो चाहे आज मौसम कैसा भी क्यों ना हो, हम आपके दिल का मौसम जरूर सुहाना बना देंगे और सुनहरे पल में बस बड़े शिद्दत से आपका साथ देंगे। आप भी बने रखें हमारे साथ और बैठ जाइए आराम से हमारा साथ देने के लिए। इन खूबसूरत नगमों के जरिए आपके दिल का हाल हम जरूर बयां करेंगे।

वैसे जिंदगी में नए लोग मिलते रहते हैं। बिल्कुल जी, जिंदगी में तो नए लोग मिलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं ना जो बचपन से लेकर आज तक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जब भी दिल उदास हो या खुशी को और बढ़ाना हो, बस एक पुराना गीत चला लीजिए और देखिए कैसे दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। और आपके दिल को हल्का करने के लिए एक ऐसा गीत हम पेश करना चाहेंगे जो शायद हो सकता है आपके फेवरेट हो। तो चलिए, ये अगला नगमा गिनिशा की तरफ से आपके नाम, आपके उन खूबसूरत यादों के नाम।

वैसे एक जमाना था जब लोग कैसेट रिवाइंड करके अपना फेवरेट गाना दोबारा सुनते रहते थे। और आज प्लेलिस्ट में हजारों गाने होते हुए भी दिल वही पुरानी मेलोडीज ढूंढता है ना, क्योंकि असली म्यूजिक वही होता है जो सालों बाद भी दिल में उतर जाए। और आज हम वही अनमोल नगमों को लेकर आए हैं आपके लिए सुनहरे पल में।

दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं है, ये सफर है अपने बचपन से मिलने का, अपने यारों से मिलने का और उन लोगों को याद करने के लिए जिनके साथ आपने ये गीत कभी गुनगुनाए थे। तो जहाँ भी हैं, मुस्कुराइए, आप दिल खोलकर मुस्कुराइए और दिल खोलकर सुनिए और हर गीत को अपनी कहानी का हिस्सा बना लीजिए। हम हैं गिनिशा और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये खूबसूरत खूबसूरत गाने जो हमने पेश किए आप लोगों के लिए सुनहरे पल में? अच्छा लगा ना? वैसे और भी खूबसूरत गाना अगर ऐसे ही आपको सुनना है, अपनी यादों में फिर से डूब जाना है, तो हम आपको फिर से रेंडेवू देते हैं एक और खूबसूरत सुनहरे पल में, रोज़ रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना।